दोस्तों वाकई में ही ऊपर वाले का तो जवाब ही नहीं है। और हम उस बात के लिए ईश्वर का शुक्र नहीं करते जो हमारे पास होती हैं। हमारा ध्यान केवल कमियों की तरफ ही जाता है। दोस्तों बीते पल कभी वापस नहीं आते, ये बात सभी जानते हैं, लेकिन जहां हम रह रहे हैं या किसी के साथ रह रहे हैं, खिलते और महकते फूलों की तरह अगर हम रह

बात बिल्कुल सच है कि जो पल गुजर जाते हैं कभी नहीं आते, जो आज है वो कल बन जाएगा और कल परसों बन जाएगा, और जो पल चल रहे हैं वो अच्छे से निकल जाने चाहिए। दोस्तों, एक बात हमेशा मन में ध्यान रखिए कि खूब मस्ती करें लेकिन किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए, और आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ ही भोर सुहानी कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

दोस्तों, जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी, वक्त थमता नहीं है ना किसी का इंतजार करता है। और इसके साथ ही आज का भोर सुहानी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। और अब सुनिए वंदे मातरम।

नमस्कार, ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 जून 2026। सुबह के 5:53 और 36 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते

श्री रामचरित मानस गान होगा 6:44 से 6:55 तक। उसके पश्चात संस्कृत में समाचार होंगे। सात बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में।

7:10 से आप सुनेंगे योग पर आधारित विशेष श्रृंखला में आज का आसन सेतुबंध आसन, एक विशेष कार्यक्रम होगा।

8:30 पर उर्दू में समाचार होंगे। आठ बजकर 8:45 पर कार्यक्रम होगा म्यूजिकल दिल लगी, प्रस्तुति रहेगी मुक्ता की, और 9 बजे हिंदी में समाचार होंगे और 9:05 पर अंग्रेजी में। ये थी सुबह के कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में

0: चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की और सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। भारत और मोरक्को के बीच आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण तथा बेहतर कार्यप्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। यह पोर्टल नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि यह पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों तथा हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई थी और 9 अन्य घायल हो गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, Prime Minister said the country's achievements over the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
2: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
1: Highlighting the government's 12 years in office, Prime Minister said initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embraced the spirit of nation building. Mr. Modi said nearly 25 crore people had moved out of poverty in recent years, leading to the emergence of a large new middle class and boosting economic activity. He stressed that empowering the poor and middle class remained a key priority, citing a affordable housing initiatives, tax reforms, healthcare schemes, and improved urban infrastructure. Taking swift action after the tragic fire incident in Lucknow, which claimed the lives of 15 students, the police registered a case against six individuals and arrested four of them last night.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: माँ कौन बा

0: कांप रहा है, हर कसरे सलातीन जमन कांप रहा है, सब एक तरफ चरखे कौन कांप रहा है। शमशीर बकफ देख के हैदर के पिसर को, जबरी लरजते हैं समेटे हुए पर को। हैबत से हैं नूह कल्ले अफलाक के दरबान, जल्लाद फलक भी नजर आता है नजर बंद। वाह है कमरे चर्ख से जूजा का कमर बंद, सैयारे हैं गलतां सिफते तायरे पर बंद। अंगुष्ट अतारुद से कलम छूट पड़ा है, खुर्शीद के पंजे से अलम छूट पड़ा है। खुद फितना वो शर पड़ रहे हैं फातिहाए खैर, कहते हैं अनल अब्द लरज कर सनम उद्दैर। जान गैर है तन गैर, मकीन गैर मकान गैर, नए चर्ख का है दौर न सैयारों की है सैर। सकते में फलक खौफ से मानंद जमी है, जुज बख्त यजीद अब कोई गर्दिश में नहीं है।
1: करबला
2: हक़ व सदाकत की दास्तां, सब्र व रज़ा का पैकर,
1: वो एक सजदा के जिस पर ये कायनात निसार, वो एक सजदा के जिसने दीन को संवार दिया।
2: हुसैन अलैहिस्सलाम का इस्तिक्लाल, सर कटा दिया मगर झुकाया नहीं।
1: हुसैन अलैहिस्सलाम ने जीने का ढंग सिखा दिया। करबला की हकीकत,
2: कत्ल हुसैन असल में मरगे यजीद है,
1: इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।
2: आकाशवाणी श्रीनगर 7:35 हेतन सपदन वल बोजो गशरन खबरन हन बुलेटिन।
3: आदाब, ये आकाशवाणी सुबह दून 8 मुबशर रुफाइनि जवि बूजो खबर गोड खास खास खबरन पे अख नजर। वजीर अजम नरेंद्र मोदी वोनमुत भारत तेजी सान तरक्की करन वोल मुल्क बनोमुत। कॉपरेशनिक वजीर अमित शाह करन आज नवी दिल्ली में नेफेडुक ऑक्शन पोर्टल लॉन्च। बचाव वजीर राजनाथ सिंह वोनमुत भारत जईद अखत मुल्क दिफाई साजो सामान बरामद करान। हज कमेटी ऑफ इंडियन हज 2017 पॉलिसी हुंद ऐलान कोरमुत। तो उत्तर प्रदेश पुलिसन अलीगंज नारा वारदात के सिलसिलस में 4 नफर गिरफ्तार करमित। खबर तफसील सान, वजीर अजम नरेंद्र मोदी वोनमुत भारत तेजी सान तरक्की करन वोल मुल्क बनोमुत, यह भरोस वोल इकतसदी ताकत बनान। नवी दिल्ली रात अक प्राइवेट मीडिया हाउस के अहतमाम मुनद कर आमच अकिस तकरीबी तकरीर करान वोन तमो पतमें 2 वर्यन दौरान मुल्क अंदर तरक्की हिंद वारिया प्रोग्राम शुरू कर आमित, तो नेशन फर्स्ट किस तस्वुरस गोड अनवर दिन यवान।
4: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है, और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
3: कॉपरेशन के मरकजी वजीर अमित शाह करन आज नवी दिल्ली अंदर नेशनल एग्रीकल्चरल कॉपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया याजे नेफेडुक ऑक्शन पोर्टल लॉन्च। यह कदम नीलमी में शचर पद करनस तो यह अमल मजीद मुस्तकम तो सहल बनानस में सठा अहम मान यवान। अमित शाह करन अमे अलाव नेफेड कन वारियन किसान दोस्त डिजिटल प्रोग्रामन हुन ते आगाज, तिम करन नेफेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चे मीटिंग हिन सदारत ते। बचाव वजीर राजनाथ सिंह वोनमुत भारत हथ पेठी मुल्क दिफाई साजो सामान बरामद करान, तो मुल्क अत सेक्टरस मं खुद कफील बनान। नवी दिल्ली रात अकिस तकरीबी खिताब करान वोन तमो ऑपरेशन सिंदूरस दौरान कोर भारतीय हथियारबंद फौजन फकत तिमन पेठ जवाबी हमले, यम भारतीय शहरियन पेठ हमले के जिम्मेदार ऐस। तिमो वोन मजीद से सरकार चे सलाहियतन तो कल्चरस कुन जोन दित बाई इख्तियार भारत तमीर करने किस इरादस पेठ कायम। अकलियती मामलन हिंद वजारत 2017 च हज पॉलिसी हुंद ऐलान कोरमुत। मरकजी वजीर किरन रिजिजुवन वोन रात यह पॉलिसी रिलीज करने पते भारतीय हज कमेटी ख्वाहिशमंद अज़िमन निश दरख्वास्त तलब करान। ख्वाहिशमंद अज़िम हेकन हज कमेटी ऑफ इंडिया च वेबसाइट hajcommittee.gov.in या हज सुविधा एपस पे दरख्वास्त दित। हज 2017 बाबत आसन हज कमेटी ऑफ इंडिया निश 1,02,514 निशस्त, ये जन प्राइवेट सेक्टर किन इदारन 52,507 सीटें दिन। तमो वोन सरकार करी हज

0: 5 बजे। देहाती भाई अपना प्रोग्राम सुनेंगे शाम 6:05 पर। हालात व वाकयात की जानकारी आपको मिलती है प्रोग्राम शहरबीन के जरिए शाम 7 बजे। प्रोग्राम वादी की आवाज़ का वक्त नशरिया है रात 8 बजे। और रात 8:30 पर गुलाम नबी शेख, शमीमा देव और वहीद जिलानी नोहा पेश करेंगे। समीन, ये हैं अब के बाद हमारे यहाँ से नशर होने वाले प्रोग्राम।
1: बेहोश है बिजली पे सुमंद उनका है होशियार, खौबीदा है सब ताले अब्बास है बेदार, पोशीदा है खुर्शीद अलम उनका नमूदार, बेनूर है मुँह चांद का रुख उनका जियाबार, सब जुज्व हैं कुल रुतबे में कहलाते हैं अब्बास, कौनैन पियादा है सवार आते हैं अब्बास, चमका के महो खुरजर व नखरा के असा को, सरकाते हैं पीरे फलके पुष्ट दुता को, अदल आगे बढ़ा हुक्म ये देता है कजा को, हाँ बांध ले जुल्मो सितमो जोरो जफा को, घूट ले बुग्जो हसदो किस्बो रिया का, सर काट ले हिरसो तमाओ मकरो दगा का, राहत के मोहल्लों को बला पूछ रही है, हस्ती के मकानों को फना पूछ रही है, तकदीर से उम्र अपनी कजा पूछ रही है, दौज़ख का पता फौज जफा पूछ रही है।
0: यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। सुबह के 8 बज रहे हैं। अयब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में खबरें सुनते हैं।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान एलएनजी विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
3: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा

0: वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
1: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: नैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूड़ी का ही होता है, तो मरूड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास कर।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन

0: अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
1: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेनस्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता, बातचीत सका

सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई। जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया। बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले छठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज

0: पेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया, बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले छठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए एसआईटी गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अलंकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीटर 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। आप सुन रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पयामे सुबह। मोहर्रम अलार्म महज तारीख के अवराक में बिखरे कुछ वाकयात का नाम नहीं, बल्कि एक दायमी कश्मकश का इस्तारा है जो हर दौर में हर इंसान के ज़मीर के सामने एक सवाल बनकर खड़ा होता है। ये वो महीना है जो हमें ये बावर कराता है कि ज़िंदगी सिर्फ सांस लेने का तसलसल नहीं, बल्कि एक ऐसा इंतखाब है जो इंसान के किरदार को हमेशा के लिए मतईन कर देता है। आइए एक बातचीत सुनते हैं। मौजू है शहादत और हलाकत। पेश करेंगे राजा तस्लीम।
3: इस्लाम से पहले शहादत जैसे मुकद्दस लफ्ज का वजूद कहीं नजर नहीं आता। दुनिया के लोग सिर्फ मौत, अजल, कजा और हलाकत से वाकिफ थे, लेकिन इस्लाम ने अल्लाह की तौहीद का खालिस तसव्वुर देते हुए यह भी बताया कि अल्लाह की राह में मौत आने को शहादत कहा जाता है। इससे जाहिर हुआ कि मौत या हलाकत से शहादत के माने जुदा हैं। मौत का मतलब यह है कि जो पहले जिंदा था वो अब जिंदा नहीं है, और शहादत का मतलब यह है कि जो पहले जिंदा था वो मरने के बाद भी जिंदा है। मौत दुनिया की हर जिंदा चीज के लिए लाजमी है, लेकिन यह लाजिम नहीं है कि शहादत भी हर चीज को मिल जाए। शहादत का मफहूम बहुत वसी है, यानी यही मौत किसी अहम मकसद अल्लाह की रिजा और नियत कुर्बत से हो तो शहादत बन जाती है, और अगर ये मौत सिर्फ मौत ही हो तो हलाकत की मंजिल से आगे नहीं बढ़ पाती। ये फलसफा शहादत और हलाकत अल्लाह के दीन के मानने वाले खास बंदे हर जमाने में मानते रहे हैं, ताकि उनके बड़े मकासिद दुनिया व दीन के लिए नमूना अमल बन जाएं, और हक बातिल पर, नेकी बुराई पर, सच झूठ पर और रोशनी जुल्मत पर फतहयाब होती रहे। 61 हिजरी में करबला का अजीम वाका भी हक और बातिल, नेकी और बुराई, सच और झूठ, रोशनी और जुल्मत को एक दूसरे से अलग करके शहादत का आईना दिखाता है। इस वाके में सिर्फ आह, आंसू, गम, मातम, मसाइब व परेशानी ही नहीं, बल्कि सदाकत, हक्कानियत, रास्तबाजी, अदल व इंसाफ और दीन व ईमान की रहमतें भी हैं जो खुशबू की तरफ फैलती और बिखरती हैं, और शहादत के हवाले से एक ऐसी रोशनी भी उभरती है जो तारीकियों को नाबूद कर देती है। करबला में खैर और शर की दोनों अलामतें एक दूसरे के सामने सफ बस्ता थीं, एक मौत की नुमाइंदा, दूसरी शहादत की सफीर। यजीदी लश्कर सरासर मुनकर इस्लाम और ईमान और हुसैनी काफिला बारगाह वहदानियत में सरब सजूद। उस तरफ शर अपने नापाक अजाई में मुत्तफिक, तो इस तरफ खैर अपने मुहतरम मकासिद में मुत्तहिद और शीरो शकर था।

0: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। सुबह के 8:30 हो रहे हैं। आइए अब आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू में खबरें सुनते हैं।
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ में नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में आग लगने के वाकये के सिलसिले में 4 ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया है। 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। कीमियावी खाद लाने वाले 4 बहरी जहाज आबनाए हुरमुस को पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहे हैं। कतर के हुक्काम ने रास लफान LNG धमाके में 12 भारतीय शहरियों की मौत होने की तस्दीक की है। और US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट आज कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारतीय चैलेंज की कयादत करेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। नई दिल्ली में एक प्राइवेट मीडिया हाउस के जेर एहतमाम एक समिट से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि गुज़श्ता दहाई के दौरान मुल्क की कामयाबियां भरोसे, इस्तेकाम और आलमी सतह पर वसीतर बहबूद के तई अहद की बदौलत हासिल हुई हैं।
2: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
1: G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस में हालिया शिरकत का तस्किरा करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आलमी रहनुमाओं ने मुल्क के मफादात को मुकद्दम रखने के तई भारत के पुख्ता अज़्म को तस्लीम किया है और ये एक ऐसा फलसफा है जिसका मुल्क की पॉलिसियां और तरक्याती एजेंडा तय करने में अहम रोल रहा है। सरकार के गुज़श्ता 12 साल को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी के फरोग और मकामी अशिया के लिए हिमायत जैसे इकदामात इसलिए कामयाब हो सके कि लोगों ने मुल्क की तामीर के जज्बे को अपनाया।
2: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर

0: मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
1: जनाब मोदी ने कहा कि हालिया बरसों में तकरीबन 25 करोड़ अफराद गुर्बत से बाहर आए हैं, जिससे एक नया बड़ा मुतवस्सित तबका उभरा है और इक्तिसादी सरगर्मियों को तकवीयत मिली है।
0: 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, न्यू मिडिल क्लास में आए हैं, तो इसका फायदा केवल उन परिवारों तक नहीं रहता बल्कि मिडिल क्लास का भी इसमें फायदा होता है, क्योंकि ये नया कंज्यूमर है जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है, उसे अल्टीमेटली मिडिल क्लास के लिए अवसर बनते हैं। यानी गरीबी कम होना केवल वेलफेयर का ही विषय नहीं है, यह अवसरों के विस्तार की गाथा है, नई एस्पिरेशन की प्रेरणा है।
1: सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाजात तकसीम करने की तकरीब के दौरान पद्म अवार्ड्स 2026 अता करेंगी। पद्म अवार्ड्स 3 जुमरों, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में अता किए जाते हैं और मुल्क के आला तरीन शहरी एजाजात में शामिल हैं। आज मुनक्किद होने वाली इस तकरीब में सदर जमहूरियत 65 पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस साल हुकूमत ने कुल 131 पद्म अवार्ड का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड्स शामिल हैं। अवार्ड्स हासिल करने वालों में 19 खवातीन शामिल हैं और 16 अफराद को बाद अजमर्ग ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। टेनिस के सरकर्दा साबिक खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूती, फिल्म गुलूकारा अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा उन 56 शख्सियात में शामिल हैं जिन्हें सदर जमहूरिया आज पद्म अवार्ड्स से नवाजेंगी। इन अवार्ड्स की शुरुआत 1954 में की गई थी और हर साल योम जमहूरिया के मौके पर इनका ऐलान किया जाता है। मज़कूरा अवार्ड्स गैर मामूली काम के एतराफ में तफवीज़ किए जाते हैं और आर्ट, समाजी काम, अवामी उमूर, साइंस, इंजीनियरिंग, तिजारत व सनत, अदविया, अदब व तालीम, खेल, सिविल सर्विस जैसे मुतअद्दी शोबों में ये अवार्ड्स अता किए जाते हैं। आकाशवाणी न्यूज दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: आकाशवाणी का खबरों का शोभा आकाशवाणी पर पीपल्स पद्मा की सीरीज के तहत खसूसी प्रोग्राम नश्र कर रहा है। इस सीरीज के तहत पद्म अवार्ड्स याफ्ता शख्सियात की जिंदगी और खिदमात पर मबनी एक बसीरत अफरोज प्रोग्राम पेश किया जाता है।
3: मैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये प्रोग्राम आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 पर सुबह 9:10 से सुना जा सकेगा। इसके अलावा आकाशवाणी के ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी दस्तियाब रहेगा। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने लखनऊ में पेश आए आग लगने के हादसे के तनाजुर में रियासती हुकूमत के 4 ओहदेदारान को मुअत्तल कर दिया है। मस्कुरा हादसे में 15 तलबा हलाक हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 6 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया है और इनमें से 4 अफराद को कल रात गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
5: रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी आग बुझाने वाले महकमे और बिजली महकमे के 4 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने 6 नामजदों मुलजिमों और दीगर कसूरवार अफराद के खिलाफ BNS और उत्तर प्रदेश फायर सर्विस एक्ट के मुतालिका दफात के तहत FIR दर्ज की है। आग लगने के इस वाक़े की आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है और खसूसी जांच टीम बनाई गई है जो 7 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कल सपहर आग लगने के इस सानहा में कम अज कम 15 अफराद की मौत हो गई। थी जिनमें बेशतर 16 से लेकर 25 साल की उम्र के तलबा थे। 9 तलबा जख्मी हुए।

0: ने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में दाखिल किया गया है। बेशतर अमवाद दम घुटने की वजह से हुई। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के वजीर अमित शाह आज नई दिल्ली में भारत की कौमी जरई इमदाद बाहमी मार्केटिंग फेडरेशन नेफेड के नीलामी पोर्टल का आगाज करेंगे। नीलामी के अमल में शफाफियत को मुस्तहकम बनाने और कामकाज को सहल बनाने की समत ये एक अहम कदम है। उम्मीद है कि मजकूरा पोर्टल से नीलामी से मुतालिक सरगर्मियों को मजबूत करने और किसानों, मेंबर इदारों और मुतालिका फरीकों के मफाद में नेफेड के मजमुई कामकाज को वसत देने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म फराहम हो सकेगा। बाद में जनाब अमित शाह नेफेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अरकान के साथ एक मीटिंग की सदारत करेंगे। इस मीटिंग में नेफेड अपनी सरगर्मियों और पेशरफ्त के बारे में एक प्रेजेंटेशन पेश करेगी। नेफेड का मुस्तकबिल का खाका भी पेश किया जाएगा। केमिकल्स और कीमियावी खाद महकमे की वजारत ने कहा है कि यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट, डीएपी और सल्फर की खेप लाने वाले चार मालबरदार बहरी जहाजों ने गुज़श्ता हफ्ते आबनाए हुरमुज़ को कामयाबी के साथ पार कर लिया और अब ये मुल्क में अपनी अपनी मुकर्ररा बंदरगाहों की तरफ जा रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा में पारादीप बंदरगाह और गुजरात में मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। वजारत ने कहा है कि कीमियावी खाद की इस दरामद से मौजूदा जरई जरूरियात की तकमील को मजीद तकवियत मिलेगी। वजारत ने यह जानकारी दी है कि मुल्क में कीमियावी खाद का मजमूई स्टॉक 196 लाख टन है, जबकि पिछले साल की इसी मुद्दत में ये 168 लाख टन था। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने चीन के वजीर खारजा वांग यी के साथ कल नई दिल्ली में बातचीत की, जिसमें बाहमी ताल्लुकात को मामूल पर लाने में पेशरफ्त समेत दोतरफा रवाबित के अहम पहलुओं पर तवज्जो मरकूज की गई। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों के मीटिंग के मौके पर यह बातचीत हुई। जनाब डोभाल ने मीटिंग में इस बात पर जोर दिया कि मुस्तहकम और तामीरी दोतरफा ताल्लुकात से तरफैन के दरमियान बाहमी एतमाद और बेहतर मुफाहिमत कायम करने में मदद मिलेगी। दोहा में भारतीय सिफारतखाने ने यह ऐलान किया है कि कतर के हुकाम ने इस बात की तस्दीक की है कि इतवार की रात को रास लफान में हुए हादसे में 12 भारतीय शहरी हलाक हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सिफारतखाने ने सोगवार खानदानों से ताजियत का इजहार किया और महलुकीन के लिए दुआ की। पोस्ट में मजीद बताया गया है कि कतरी हुक्काम ने तस्दीक की है कि हादसे में जख्मी होने वालों की हालत मुस्तहकम है और वो जेरे इलाज हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस हादसे में होने वाले जानों के जिया पर दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि दोहा में वाकई भारतीय सिफारत खाना इस हादसे से मुतासिर होने वाले भारतीय शहरियों के खानदान की मदद के लिए कतरी हुकाम के साथ करीबी इश्तराक से काम कर रहा है और उनके राबते में है। कतर के सबसे बड़े गैस के मरकज में हुए धमाके के बाद कम अज कम 13 अफराद हलाक और 16 जख्मी हुए हैं। दाखिली उमूर की वजारत ने बताया कि दोहा में रास लफान जोन में वाकई शहर के अहम रकीक कुदरती गैस एलएनजी की प्रोसेसिंग के मकाम पर ये तकनीकी हादसा पेश आया। कतर के तवानाई के वजीर ने कहा कि इस धमाके से मुल्क की बरामदात मुतासिर नहीं होंगी। यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। इसमें सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारतीय चैलेंज की कयादत करेंगे। मर्दों के सिंगल सुमरे के पहले राउंड में आलमी नंबर 14 लक्ष्य सेन का मुकाबला बेल्जियम के जूलियन काराजी से होगा, जबकि किदाम्बी श्रीकांत चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू का सामना करेंगे। मिक्स डबल्स में ध्रुव रावत और मीनाक्षी की जोड़ी इंडोनेशिया के वीरावन एहसान आदम और सेरेना कानी के खिलाफ मैच के साथ अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। मर्दों के एफआईएच हॉकी प्रो लीग के इफ्तिताही मैच में आज भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। चीन के हुलुम्बियर में मुनक्किदा एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ये पहला मुकाबला होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
2: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि भारत एक काबिल भरोसा मईशत के तौर पर दुनिया में तेजी

0: से उभर रहा है। पिछले 12 वर्षों में शुरू की गई फलाही स्कीमों से आवाम को फायदा पहुंचा है। वजीर खारजा और डॉक्टर ए जयशंकर ने मंगोलिया के अपने हम मनसब से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तालीम और सकाफत और कई तरक्याती प्रोजेक्टों समेत अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। इस खबर को आज के अखबारों ने नुमाया किया है। अजीत डोभाल की सदारत में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मशीरों की दो रोजा मीटिंग कल नई दिल्ली में शुरू हुई। कौमी सिक्योरिटी की बदलती हुई सूरत हाल और सिक्योरिटी खतरात के तनाजुर में नई टेक्नोलॉजी के रोल पर हुई बातचीत, ये खबर भी आज के अखबारों ने खुसूसियत के साथ शाया किया है।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में आग लगने के वाकये के सिलसिले में 4 अहदेदारों को मुअत्तल कर दिया है। 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। कीमियावी खाद लाने वाले 4 बहरी जहाज आबनाए हुरमुस को पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहे हैं। कतर के हुकाम ने रास लफान LNG धमाके में 12 भारतीय शहरियों की मौत होने की तस्दीक की है। और US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट आज कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारतीय चैलेंज की कयादत करेंगे। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम 268.8 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 8:45 हुए हैं।
3: समीन पेश खदमत से प्रोग्राम हम सफर। ये प्रोग्राम जो तहता वातनावान हम सफर मैरिज काउंसलिंग सेल वाका दारुल उलूम रोड बागे सुंदरबाला छत्सबल श्रीनगर ब्रांच ऑफिस शेखुल आलम रोड करनगर श्रीनगर।

0: यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। मीडियम 268.8 यानी 1116 किलोहर्ट्ज और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 9 बज रहे हैं। समाप्त करें मकामी रोजनामों से ली गई आज की सुर्खियां।
1: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं होंडा, प्याजो, एक्साइड, इशर, निसान और TVS कंपनियों के बा इख्तियार डीलर, कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।
0: आज मंगलवार है, 2026 के माह जून के 23 और मुहर्रमुल हराम 1448 हिजरी की 7वीं तारीख। श्रीनगर से आज शाही अखबारों में शामिल आम खबरों की सुर्खियां लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जमीन रोजनामों में मुख्तलिफ मौजूआत की खबरें शाया हुई हैं और चंद अहम खबरों ने अखबारात के पहले सफात पर जगह बनाई है, जिनको लेकर आज के सुर्खियां तरतीब पाई हैं। एक उर्दू रोजनामे की सुर्खी यह है, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अवाम का एतमाद और शराकत दारी नहायत अहम, अवामी एतमाद अच्छी हुक्मरानी का सबसे बड़ा सरमाया, शहरियों की जिंदगियों में मजीद बेहतरी लाने के लिए मुस्तकबिल में भी ऐसे इकदाम करेंगे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी।
2: एक उर्दू अखबार मेरे हाथ में भी है रूफ, इसकी शेष सुर्खी है, खीर भवानी मंदिर में ज्येष्ठ अष्टमी की सालाना तकरीब, हजारों कश्मीरी पंडितों का मजमा, 1990 के बाद सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडितों की शिरकत, अमन व हम आहंगी का होना लाजमी, मनोज सिन्हा, पूजा पाठ में LG भी शरीक।
0: मुल्की या दाखिली मसाइल को देखना हमारा काम नहीं है क्योंकि हम खारजा अमूर की कमेटी से वाबस्ता हैं। दौरे का मकसद कश्मीर वादी के अंदरूनी हालात की पड़ताल नहीं, हिंद पाक तालुकात, हिंद चीन तालुकात और पासपोर्ट दफातर की कारगर्दी का मुताला, मकसद शशि थरूर।
2: अमरनाथ यात्रा 2026, DG का सिक्योरिटी तैयारियों का जायजा, बाहमी तालमेल पर जोर।
0: एक और रोजनामे की शेष सुर्खी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने माता खीर भवानी मंदिर में हाजिरी दी, अमन व खुशहाली के लिए खसूसी दुआ, पंडितों की फलाह बहबूद, सलामती और सहूलियत के लिए तमाम जरूरी इकदाम जारी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा।
2: हज पॉलिसी 2027 का ऐलान, हज कमेटी ऑफ इंडिया के आजमीन से दरख्वास्तें तलब।
0: जम्मू कश्मीर के कैद खानों की सिक्योरिटी का मामला, मजीद 5 हसास जेल CISF के हवाले करने का फैसला, खिलाफ वर्जियों को रोकना और चौकसी को मजीद बढ़ाना मकसद।
2: कुलगाम और त्राल में शदीद जालाबारी, शमाल व जनूब में बारिशें, शहर के कई इलाके ज़रआब।
0: श्रीनगर समेत वादी के दीगर इलाकों में शदीद जलाबारी और कहर अंगेज बारिशें, लालचौक और दीगर इलाकों में सड़कें डूब गईं, लोगों का उबर मरूर हुआ मुश्किल।
2: एक और सुर्खी है हमारे यहाँ के इस उर्दू अखबार में, वादी के लोगों की दिली ख्वाहिश, कश्मीरी पंडित वापस आए, कश्मीरी पंडित आगे बढ़े, माजी के कैदी बनना बंद करे।
0: मरकजी वजारती दाखिला की जानिब से

0: एक और खसूसी हुक्मनामा जारी। जम्मू कश्मीर के 5 जेलों की निगरानी और हिफाजत का काम CISF को सौंप दी।
1: इसी उर्दू अखबार से एक और सुर्खी है, हाई ब्लड प्रेशर की शरह में 10% इजाफा। जम्मू कश्मीर में मर्द व खवातीन मुतासरीन का बढ़ता रुझान इंतहाई तशवीशनाक।
0: इंडस वाटर ट्रीटी माहिदे को मुअत्तल रखने में भारत सरकार का मौकिफ वाजिया, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, राजनाथ सिंह।
1: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में काबिल तलबा को एजाजात से नवाजा। तालीम में जिद्दत, AI और मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निमटने के लिए क्लासरूम्स में तब्दीली की जरूरत पर जोर दिया।
0: मेला खीर भवानी के मौके पर वजीर आला की पंडित बरादरी को मुबारकबाद।
1: सकीना इत्तू ने पहलगाम में श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्तलिफ महकमों की जानिब से की गई सेहत, लॉजिस्टिक और दीगर तैयारियों का मुआयना किया।
0: कश्मीरी पंडित बरादरी माजी को बुलाकर मुस्तकबिल की जानिब देखें। कश्मीरी पंडितों को मुनासिब सहूलियात फराहम की जाए ताकि ताल्लुकात बहाल करना आसान हो सके, महबूबा मुफ्ती।
1: अमरनाथ यात्रा के लिए बिजली की तैयारियों का जायजा, मुकम्मल बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 रोजा दौरे पर जाएंगे। दो तरफा बातचीत के दौरान इलाकाई और बैनुल अक्वामी अहमियत के मौजूदात पर तबादला ख्याल होगा।
1: शुपया में खेत बचाओ मुहिम के तहत जरिए आगही पर प्रोग्राम का इनेकाद मुकम्मल।
0: सुर्खियां अभी और भी हैं, हमारे साथ रहिएगा।

0: HJK से हटा और इंस्टॉल करके रजिस्टर हो जाइए। ये ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, नजदीकी हॉस्पिटल ढूंढ सकते हैं, ऑनलाइन सलाह और मेडिकल रिपोर्ट्स देख सकते हैं, एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं, दवाइयों की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, ब्लड बैंक इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और सरकारी हेल्थ स्कीम्स के बारे में भी जान सकते हैं। और साथ ही साथ आप प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस भी बुक करवा सकते हैं। इस ऐप में AI सिम्टम चेकर चैटबॉट भी अवेलेबल है। चाहे आप मरीज हो, डॉक्टर, स्टूडेंट या एक आम शहरी, JK सेहत ऐप सबके लिए है। इट्स सिंपल, सेफ और आपके लिए।
1: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नेशनल हेल्थ मिशन JNK।
2: मकामी रोजनामों की सुर्खियां बराह रास्त आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। अब दीगर सुर्खियों पर एक नजर। बगावत का जुर्म, जनूबी कोरिया के साबिक वजीर इंसाब को 25 साल कैद की सजा।
3: लैवेंडर के खेत अपने अरूज पर, बुनेरा पुलवामा का तहकीकी मरकज, कश्मीर में जामने इंकलाब का मुहरिक।
2: तेल बरामदात पर पाबंदी खत्म, लबनान जंग के खात्मे की तरफ बड़ी पेशरफ्त, अब्बास अरगची का एतराफ।
3: श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान, इकबाल पार्क के बाहर मसरूफ सड़क पर कॉरपोरेशन की गाड़ी ने कचरा उंडेल दिया।
2: मर जाएंगे मगर इसराइली फौज में नहीं जाएंगे मुजाहिरीन।
3: SCO वुशु चैंपियनशिप से कबल इंडिया वुशु टीम की वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात।
2: जवेदार ने रामबन में तरक्याती कामों का जायजा लिया।
3: जम्मू श्रीनगर शहरा पर अहम टनल ट्रैफिक के लिए खोलने का फैसला।
2: एक और सुर्खी है, सागर ने गौसिया अस्पताल में जदीद लेप्रोस्कोपिक निजाम का इफ्तिताह किया।
3: नायब कदल श्रीनगर में बारिश के दौरान बिजली पोल में करंट जानलेवा साबित, 60 बरस की खातून ने सहारे के लिए पोल को हाथ लगाया कि झटके से जान भाग हो गई।
2: आयतुल्ला सईद अली खामनाई के अलविदाई मरासिम और नमाज जनाजा का आगाज 19 मुहर्रम हराम को तेहरान में होगा।
3: मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा है, इसकी सुर्खी है, heavy downpour leaves a trail of damage across Kashmir. एक और सुर्खी इसी अखबार से, AI presents opportunity to shape the future, LG मनोज सिन्हा।
2: चीन ने 10 अमेरिकी फौजी कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। जर्मनी ने आबनाई हरमूज की बंदिश का जिम्मेदार ट्रंप को करार दे दिया।
3: अंग्रेजी रोजनामे की एक और सुर्खी है, श्रीनगर जम्मू हाईवे ओपन फॉर टू वे ट्रैफिक, मूवमेंट स्लो ड्यू टू कंस्ट्रक्शन वर्क।
2: अमेरिका ईरान मुजाकिरात के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गईं।
3: 35 लॉस्ट मोबाइल फोन्स वर्थ ₹6.5 लाख रिटर्न टू ओनर्स इन रामबन पुलिस।
2: शामी सदर हिजबुल्ला के खिलाफ कार्रवाई करें ट्रंप, शामी सदर ने फौजी मुदाखलत के इम्कान को मुस्तरद कर दिया।
3: LG लद्दाख VK सक्सेना लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ कंट्रीज हाई ऑल्टिट्यूड फ्लावर फील्ड।
2: समीन, ये थी मकामी रोजनामों से ली गई आज की सुर्खियां।
4: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे होंडा, प्याजो, एक्साइड, ईशर, निशान और TVS कंपनियों के बाइख्तियार डीलर, कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।

जम्मू कश्मीर स्टेट हज कमेटी की एक इतला के मुताबिक हज 2027 के लिए ख्वाहिशमंद आजमीन अगले महीने की 20 तारीख तक ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। ये फॉर्म www.hajcommittee.gov.in पर दस्तियाब हैं। इसी दौरान अकलेती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कल हज पॉलिसी 2027 का ऐलान किया। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात ने एक मीटिंग के दौरान श्री अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में किए जा रहे सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। इस मीटिंग में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और मुख्तलिफ अजला के एसएसपी ने शिरकत की। डीजीपी ने तमाम एजेंसियों पर जोर दिया कि वो यात्रा के आसन और पुरमन इनका के लिए मुतहरिक रहे। केपीडीसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर महमूद अहमद शाह ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने यात्रा के तमाम पड़ावों पर सोलर लाइट्स, जेनसेट्स और दूसरे रोशनी के आलात नस्ब करने के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने हिदायत दी कि यात्रा के दौरान 24 घंटे बिजली फराहम की जाए। पुलिस ने कल फौज के 50 आरआर और सीआरपीएफ के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा

0: के रास्तों पर मॉक ड्रिल्स का एहतमाम किया, जिसका मकसद किसी भी हंगामी सिक्योरिटी सूरतहाल से बरवक्त निमटना है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में एक तकरीब पर 65 शख्सियात को पद्म अवार्ड अदा करेंगी, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। टीआरसी टर्प ग्राउंड श्रीनगर में कश्मीर चैंपियंस फुटबॉल लीग शदोमत से जारी है। इस टूर्नामेंट में अब तक 10 मैच खेले जा चुके हैं। शायकीन की एक बड़ी तादाद मुकाबलों को देखने के लिए स्टेडियम में आई है। आखिर में दर्जे हरारत, श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 14.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
1: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं मीडियम 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह। आज मुहर्रम हराम की 7 तारीख है। आज से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत पर पानी बंद कर दिया गया था। करबला का जो फलसफा है, बज़ाहिर प्यास, जंग और कुर्बानी का एक ऐसा मंजरनामा है जो आंखों को अश्कबार करता है, मगर इसकी गहराई में उतरें तो ये इंतखाबे आज़ादी का एक सबक है। एक तरफ वो ताकत हैं जो खौफ और दुनियावी मफादात के गिर्द घूमती है, और दूसरी तरफ वो इस्तेकामत हैं जो उसूलों के खातिर सब कुछ लुटा देने का हौसला रखती है।
2: करबला का फलसफा महज एक तारीखी वाक़ा नहीं, बल्कि हक पर डट जाने, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने और अल्लाह की रजा के लिए अपनी हर मता कुर्बान कर देने का एक दायमी सबक है। आज के दौर में जब हम हर तरफ मसलहतों की चादर ओढ़े हुए हैं, मुहर्रम हमें अपनी जात में झांकने का मौका देता है। ये महीना हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमने अपनी अना को हकीकत के ताबे किया है, क्या हमारे पास वो जुर्रत है कि हम सच के लिए तन्हा खड़ा हो सकें।
1: बिल्कुल तस्लिमा, मुहर्रम की असल रूह बेज़मीरी के अंधेरों में शऊर का चिराग जलाना है। यह हमें सिखाता है कि जब हक और बातिल का मौरिका बरपा हो तो खामोशी भी एक फरीक बन जाती है। लिहाजा हक की हमायत में खड़ा होना और बातिल के सामने सर न झुकाना ही इस महीने का सबसे बड़ा पैगाम और सबसे बड़ा सबक है।
2: ये हमें सिखाता है कि इंसान जिस्मानी तौर पर मغلوب हो सकता है, लेकिन इसके ख्यालात, इसके असूल और इसकी हक परस्ती कभी शिकस्त नहीं खाती। ये अयाम हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी का हुस्न इसमें नहीं कि हम कितनी आसानी से जीते हैं, बल्कि इसमें है कि हम किन इकदार के लिए खड़े होते हैं।
1: करव अर्जा तिमिस शाहे मदीनस, करव अर्जा तिमिस शाहे मदीनस, जिनाबे रहमतन लिल आलमीनस। ये क्या उम्मत करान सत नूर तुहंदी, ये क्या उम्मत करान सत नूर तुहंदी, ये किस तमील सबदान हुक्म दीनस।
2: करव अर्जा तिमिस शाहे मदीनस, जिनाबे रहमतन लिल आलमीनस।

0: आइए वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। मदीना मुनव्वरा की गलियों में जहाँ शेर खुदा हज़रत अली अलैहिस्सलाम इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम अपने लाल अब्बास की तरबियत फरमा रहे हैं। अब्बास अलैहिस्सलाम का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। उन्होंने आँख खोलते ही अपने बड़े भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतराम करना सीखा। वो उन्हें भाई नहीं बल्कि हमेशा अपने दौर का इमाम और आका कहते थे।
1: रवायात कहती हैं कि जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो रहे थे तो उन्होंने अब्बास अलैहिस्सलाम का हाथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ में दिया और फरमाया, अब्बास, करबला के मैदान में मेरा हुसैन अलैहिस्सलाम अकेला होगा, वहाँ अपने भाई का साथ मत छोड़ना। अब्बास अलैहिस्सलाम ने इस वसीयत को अपनी ज़िंदगी का वाहिद मकसद बना लिया।
0: और फिर साल 61 हिजरी आया। करबला का तप्त हो मैदान, 3 दिन की प्यास, खेमों में मासूम बच्चों बिलखसूस सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम की प्यास की पुकार की सदाएं। जब अब्बास अलैहिस्सलाम ने बच्चों को प्यास से तड़पते देखा तो उनका शेर जैसा दिल खून के आंसू रो दिया। उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इज़्तिहाद मांगा, लेकिन इमाम ने फरमाया, अब्बास, तुम मेरी फौज के सालार हो, तुम चले गए तो मेरी फौज बिखर जाएगी, तुम सिर्फ बच्चों के लिए पानी का बंदोबस्त करो।
1: अब्बास अलैहिस्सलाम ने हाथ में खाली मशकिज़ा लिया, कलम संभाला और फुरात की तरफ बढ़े। चारों तरफ दुश्मन का घेरा था, लेकिन अब्बास अलैहिस्सलाम की हैबत के सामने कोई ना ठहर सका। वो दरिया पर पहुंचे, पानी पर काबू पाया, प्यास शदीद थी, चलो मैं पानी उठाना शुरू किया, लेकिन फुरात के ठंडे पानी को देखकर अब्बास अलैहिस्सलाम को अपने प्यासे भाई हुसैन अलैहिस्सलाम और मासूम बच्चों की याद आ गई।
0: अब्बास अलैहिस्सलाम ने पानी वापस दरिया में गिरा दिया और खुद प्यासे रहकर मशकी जबरा। कायनात की तारीख गवाह है, ऐसा प्यासा दुनिया ने कभी नहीं देखा जो दरिया पर काबू पाकर भी प्यासा लौट आए, क्योंकि वो जानते थे कि भाई हो तो ऐसा जो खुद तड़प जाए लेकिन भाई से पहले पानी न पिए।
1: लेकिन फरात से खेमों तक का सफर कठिन था, दुश्मनों ने छुप कर वार किए, अलमदार अलैहिस्सलाम के दोनों बाजू कलम हो गए, लेकिन उन्होंने मशकिज़ा को दांतों से पकड़ लिया। अफसोस, एक जालिम का तीर मशकिज़े पर लगा, पानी बह गया और अब्बास अलैहिस्सलाम की उम्मीदें टूट गईं। जब अब्बास अलैहिस्सलाम घोड़े से ज़मीन पर आए तो इन्होंने ज़िंदगी में पहली बार पुकारा, ए मेरे भाई, अपने भाई की खबर लीजिए।
0: इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए मक्तल में पहुँचे, अपने भाई का कटा हुआ सर गोद में लिया। इमाम अलैहिस्सलाम के अंदर एक गम बरपा हुआ। तारीख लिखती है कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने रोकर फरमाया, अब्बास, मैं बहुत तुम्हारी कमी महसूस कर रहा हूँ, कमर में खम महसूस हो रहा है और मेरी तदबीर ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गई। एक भाई ने दूसरे भाई के आगोश में आखिरी सांस ली। वफादारी की ऐसी मिसाल कायनात ने शायद कभी न देखी हो।

0: आकाशवाणी श्रीनगर का प्राइमरी स्टेशन मीडियम वेव 268.81 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 103.0 पर आप समाप्त कर रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पयामी सुबह। मैं हूं आपकी मेजबान तस्लीमा अख्तर और मेरे साथ हैं
1: रूफ अली।
0: मुदा उसका है वो सजदा शब जो रहा है हमेशा ताबो तब।
1: खून हक की कहानी है हुसैन, एक अब्धि निशानी है हुसैन।
0: मक्तल में तशना काम लब आब आ गए, तूफान जुल्म में वो गुलाब आ गए। ढूंढेगी करबला जिसे सदियों तलक सदा, तारीख के वो रोशन बाब आ गए।

0: दरिया भी हट गया था किनारे को छोड़ के। छाया था सब पे रौब अलम दारे नौजवान, तस्लीम को झुके हुए थे फौज के निशान। गोशा अमां का ढूंढ रही थी हर एक कमां, तरकश भी थे हिरास में खोले हुए दहां। तीरों का बेगुमा था इरादा गुरेज का, मुंह कुंद हो गया था हर एक तेग तेज का। हलचल ये थी कि गर्द सवारी आया हुई, गोया चमन में बादे बहारी आया हुई। आमद खुदा के शेर की सारी आया हुई, आप आए क्या कि कुदरते भारी आया हुई। रोशन था शम्मे दूर से परतो हुजूर का, खिलत मिला जमीन मुकद्दस को नूर का।
1: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, सुबह के 10 बज चुके हैं। अब पेश है एक खसूसी गुफ्तगू, मौजू हुसैनियत एक लाही हयात। शुरका हैं शबीब रजवी, प्रोफेसर मोहम्मद जमान आजुर्दा और सैयद शमसुद्दीन रहमान। पेश करो मेज़बान तला जहांगीर रहमानी।
2: अस्सलामु अलैकुम सामईन मोहतरम। ये अय्याम हैं मुहर्रमुल हराम के, और तारीख इस्लाम में इस हवाले से वजाहतों की कोई ज़रूरत नहीं है कि इस एक महीने को कितनी अहमियत इस्लामी तारीख में इब्तिदा से आज तक हासिल रही है। बिलखुसूस जब हम आशूर की बात करते हैं, शहदाए करबला से जुड़े उस वाक़े की बात करते हैं, तो फिर तो वजाहत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती। अब इस मुहर्रम में रेडियो की एक कोशिश रही कि हम उलमा को, असातिज़ा को अपने स्टूडियो में बुलाकर मुख्तलिफ मौजूआत पर बात करके उनसे कुछ फैज़ हासिल करने की कोशिश करेंगे या हकाइक को समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारी एक कोशिश, और मैं मशकूर हूँ कि हमारी दावत पर जनाब शबीब रिजवी साहब, प्रोफेसर मोहम्मद जमान आजुर्दा साहब, सैयद शमसुर रहमान साहब तशरीफ़ लाए हैं। और मौजू जो हमने आज इस मुबाहसे के लिए रखा हुआ है वो है हुसैनियत एक लाहिए हयात। तो पहले सब मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूँ हमारे स्टूडियोज़ में, और शुक्रिया भी कि आप तशरीफ़ लाए। और रिजवी साहब, सन 60 से आगे यहाँ तक हर साल मुहर्रम में मुहिब्बान और आशकान अपनी तरफ से मोहब्बतों का इजहार करते हैं, आज़ादार अशकबार रहते हैं, और इसमें एक इस्तलाह हम सुनते आए हैं हुसैनियत। मेरा आपसे सवाल, मुझे समझाइएगा कि ये हुसैनियत से मुराद क्या है, क्या होती है हुसैनियत?
3: तला साहब, हुसैनियत मज़हब से कोई अलग चीज़ नहीं है, ठोस या जामिद एक हकीकत बनकर जो उभरी है वो करबला के बाद उभरी है
2: जी।
3: उससे पहले जो कुछ था यानी 50 साल तक, वो वही लाए है अमल था जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया था, और जिसको उनके बाद वालों ने अपने अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की थी। दरअसल हुसैनियत जो है वो करबला के बाद से शुरू हुई है कि 50 साल तक जो कुछ हुआ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो कुछ हुआ था, उसमें दीन और हक की सूरतें जो थीं वो किसी हद तक वो नहीं रही थीं जो उनके दौर में थीं। और अगर ये बात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम महसूस न करते, और बल्कि मेरा तो ये ख़्याल ही है कि ये अहकाम खुदावंदी, मंशाए खुदावंदी था कि ये वाकया हो ताकि
2: दीन को बका मिले,
3: ताकि दीन को पनाह मिल जाए,
2: पनाह मिले
3: दोबारा, और असर नो उसका एहया हो सके। चुनांचे उनका जो लाहे अमल था यानी मदीने से लेकर के मक्के तक और मक्के से लेकर करबला तक जो कुछ भी लाहे अमल था, कदम कदम के ऊपर वो एक अखलाकी दर्स था, वही मजहबी दर्स था जो उनके नाना के वक्त में मौजूद था, जो बाबा के वक्त में मौजूद था, या और अहले बैत अतहार के ज़माने में जो कुछ था वही लाहे अमल जो था। तो करबला तक ये जो कुछ लाहे अमल पेश किया गया है, दरअसल ये हुसैनियत की इब्तिदा थी।
2: अच्छा।
3: जो इंतहा आशूर ही को नहीं हुई बल्कि आशूर के बाद उनकी बहन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने उसकी तकमील की। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक हुसैनियत का तसलसल था जो इमाम हुसैन सलाम के नाम से मंसूब होकर के दुनिया में आज तक पेश

0: हो रहा है।
1: मैं ये समझा, अगर मैं सही हूं, कि दौरे नबुवत के बाद 50 साल और उस बीच अगर कहीं से कुछ इन्हराफ हुआ या कुछ, उसको समेट कर शरीयत को अपनी असल सूरत में पेश करने की एक जो मुनज्जम कोशिश इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफाका ने की, और जो उसूल वहाँ वज़ा हुए, उनको हम हुसैनियत कहते हैं। ये दीन की अमली एक सूरत है, ये शरीयत की अमलन एक सूरत बनती है, ये मुराद है इससे।
2: बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, हुसैनियत की जो ये इस्तिलाह जो पड़ी है, मैं उसका जिक्र कर रहा था, वरना सब कुछ तो वही था जो दीन था और जो हक था और जो कुछ पेश किया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सब कुछ वही था। ये इस्तिलाह इसलिए हुई, इसका मतलब नाम यूं पड़ा कि इमाम हुसैन सलाम ने ये बेड़ा उठाया था।
1: जी,
2: अगर कोई दूसरा शख्स भी, मिसाल के तौर पर जैसा कि इमाम हसन ने किया अपने ज़माने में, और फिर एक सुलह की उन्होंने, लेकिन यह कि ये ज़्यादा नुमायाँ और उभर करके हुसैनियत आई,
1: इसलिए नाम से ये जुड़ा। मकसद वही था, कारवां वही था।
2: हुसैनियत कोई अलग चीज़ नहीं है,
1: उस मज़हब नहीं है, शरीयत की एक
2: उसका निफाज
1: उसका है,
2: वो इन्होंने कराया।
1: जमा साहब, आपसे जानना चाहूँगा वो कौन से उसूल हम ज़रा गिने, किस चीज़ को हम फिर आगे जाकर कहेंगे कि हुसैनियत, या यही है लाह अमल, यही मुसलमान की ज़िंदगी है जो ज़िंदगी जीली इमाम हुसैन ने और उनके रफ़क़ाए-कार ने करबला में, और करबला से पहले। करबला में भी हम नहीं मानते कि उनकी मौत हुई, बल्कि हयात ही थी वो भी, वो ज़िंदगी जो उन्होंने करबला में जी और वो ज़िंदगी जो उन्होंने करबला से पहले। वो अकायद क्या थे, वो उसूल क्या थे, एक शागिर्द क्या समझे।
3: शुक्रिया तलहा जहांगीर साहब। जो शबीब भाई ने फरमाया कि उस वक्त तक 50 साल तक इस्लाम ने जिस लायह अमल को पेश किया था, उसकी अहियाई नौ के लिए जहां कहीं कोई तब्दीली लाने की कोशिश की गई थी, जहां कुछ उसूलों को भूल गए थे लोग, जहां रस्मों ने बाज हकायक को दबा दिया था, सप्रेस किया था, उनको असर नौ ताज़ा करने के लिए वाकई करबला वजूद में आया। असल में कुरान जो है, अकवाल नबी जो हैं, उनकी हैसियत थेरी की है, और वाकई करबला की हैसियत उसके एप्लीकेशन की है। थेरी के साथ एप्लीकेशन जो है, ये कहीं भी जो कुछ आप पढ़ाते हैं फिर अमलन उसको समझाना पड़ता। जैसे हम लेबोरेटरी में, साइंस की क्लास में, छोटी क्लासों में हम कोई केमिकल बनाना या उसका वो जिक्र करते हैं, फिर उनको तजर्बागाह में ले जाते हैं और कहते हैं कि यूं इसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि यूं ऑक्सीजन बन सकती है, यूं कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है, या और चीज़ें। इसी तरह से वाकई करबला जो है वो एप्लीकेशन है इस्लाम की थेरीज का।
1: जी,
3: ये एप्लीकेशन जो है इस्लाम की थेरीज का, अब इसमें जो चीज़ें सामने आ गई कि असल इस्लाम है क्या, यानी सबसे पहली बात ये कि मुसलमान को सच से कभी इन्हराफ नहीं करना चाहिए, झूठ को कभी अपनाना नहीं चाहिए, और दूसरी बहुत अहम बात कि खालिक ने हमको खल्क किया है और कुछ अमानतें हमको सौंपी हैं, हमारे पास जो चीज़ है, जो इनायत है, वो उनकी है। उसने हमें जान दी है, ये उसकी है,
1: अमानत है।
3: उसने हमें दिल दिया है, ये उनका है, ज़बान दी है, ये उनकी है, दिमाग दिया है, ये उनका दिया हुआ है। इसलिए जब तक हम उनके उसूलों पे, उनके उसूलों के मुताबिक सोचते रहेंगे, उस वक्त तक हम अमानतदारी कर रहे हैं। फिर बज़ाहिर जो लगता है कि हमारे कब्ज़े में हैं चीज़ें, जैसे जान है हमारे कब्ज़े में नहीं है, कब निकल जाए, दिमाग है कब बदल जाए, ये हमारे असल कब्ज़े में नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें इंसान के अपने कब्ज़े में होती हैं। जैसे मेरे पास खाने का ज़खीरा है, मेरे पास पानी का ज़खीरा है, बज़ाहिर लगता है कि ये मेरा अपना है, लेकिन इसके लिए भी उसूल वाज़े हैं। पानी पर उसका हक है जो प्यासा है, खाने पर पहला हक उसका है जो भूखा है। और ये हक करबला ने इन्हें इस तरह से इसकी अमानतदारी करना सिखाया कि हुसैन के पास पानी है, जब हज़रत हुर की फौजें उनको रोकने के लिए आती हैं, उनके सिपाही, उनके घोड़े, सवारी के जानवर सब प्यासे हैं, ज़बानें निकल रही हैं मुँह से, तो इमाम क्या करते हैं, उनके रफ़का क्या करते हैं, पानी से भरे हुए तश्त घोड़ों के सामने भी रखते हैं, और जब तक घोड़े सैर होकर के ख़ुद मुँह उठाएं उस वक्त तक उनके सामने से हटाते नहीं। اور یہی

0: जिंदगी कोई मानी नहीं रखती, अगर देने की जरूरत है
1: जान
0: बने किसी वो दे दी, बच्चों की कुर्बानी देनी है तो देनी है, क्योंकि हक ताला के सामने और हक बचाने के लिए इन चीजों की कोई बात नहीं है। इसको बाद में हमने इस पूरे मजमुए को जो है उसको हमने हुसैनियत कहा। आज की तारीख में आज के नौजवान के लिए, आज की उम्मत के लिए, आज खुदा के बंदों के लिए ये हुसैनियत एक लाह अमल है। अगर है तो किस तरह इसको सही सूरत में अपनी जिंदगियों में लाया जा सकता है?
2: देखिए, उसूल हमेशा जिंदा रहते हैं और उन पर सिर्फ निफास की बात जो है वही कही जा सकती है कि उसका निफास कैसे हो
0: जी।
2: जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उसूल थे वही इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी उसूल रहे हैं और उसके बाद भी जितने भी अच्छे लोग गुजरे हैं उनके सामने वही उसूल हमेशा रहे हैं। अब सिर्फ यह है कि उनका निफास कैसे हो। मिसाल मैं आपको देता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

0: जी
1: जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उसूल थे, वही इमाम हुसैन सलाम के ज़माने में भी उसूल रहे हैं और उसके बाद भी जितने भी अच्छे लोग गुजरे हैं उनके सामने वही उसूल हमेशा रहे हैं। अब सिर्फ यह है कि उनका निफास कैसे हो। मिसाल मैं आपको देता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह कहा गया कि तुम हमारे बुतों को बराना कहो, उन्होंने इनकार किया कि नहीं हम ज़रूर कहेंगे, इसलिए कि अल्लाह जो है वो एक है, वाहिद है, वो ला शरीक है और हम बुतों को उसमें नहीं शामिल कर सकते हैं, न उसमें यह ताकत है, न वो समी है, न बसीर है, पत्थर का बुत है, कुछ नहीं है। यह इनकार जो था किससे था? कुफ्र से था, उस लाए अमल से था जो वो लोग पेश कर रहे थे, उस उसूल से था जो सदियों से वो अपनाए हुए थे। इमाम हुसैन सलाम ने भी इनकार किया, इनकार बैत किया, इसलिए कि जैसा कि अभी मौलाना शम्स ने कहा कि वो सब चीज़ें पामाल हो रही थी, चीज़ें मस्ख हो रही थी, दीन जो था उसकी शक्ल धुंधली हो गई थी, उन्होंने इनकार करके उसको फिर जिंदा करना चाहा। उन्होंने बुतों से इनकार किया था, उन्होंने यजीद की बैत से इनकार कर दिया कि नहीं हम नहीं करेंगे, इसलिए कि यजीद में वो तमाम खराबियाँ मौजूद थीं जो इस्लाम में नहीं थी, वो सारी खराबियाँ उसमें मौजूद थी, उन्होंने इनकार कर दिया। फिर एक और भी बात यह है कि सिर्फ इतना ही नहीं कि कोई चीज़ किसी चीज़ का इनकार करके उसकी हकीकत को साबित किया जाए, बल्कि इकरार भी किया जाए। सिर्फ इनकार नहीं, इकरार किन चीज़ों का? वही इस्लामी उसूल, वही अखलाक, वही आदाब, वही तहजीब, वही तमद्दुन। और जब ये सब इसका इकरार कर लिया जाए और उसका अमल भी किया जाए, उसका निफाज भी हो जाए, तो फिर वो बढ़ करके वही चीज़ जो है वो आला अकदार की हामिल होती है। आप मुझे ये बताइए, किसी भी किताब में जैसा कि आपने फरमाया कि हुर की फ़ौज को इमाम हुसैन ने पानी पिला दिया था, ये जोहसम की पहाड़ियों के पास करबला से कुछ पहले का वाकया है, तो उस वक्त हुर के दिल में वो नर्म गोशा पैदा हुआ और उसने बिल्कुल इमाम हुसैन की इक्तदा में नमाज जमात भी पढ़ी, खुद उसने और उनके
0: सिपाहियों ने,
1: लश्कर ने पढ़ी,
0: लश्कर ने।
1: ये एक अखलाकी दर्स था वहाँ के ऊपर जो पेश किया गया। अब मुझे आप ये बताइए कि जब चार मुहर्रम को वहाँ से खैमे उठा दिए गए हैं नहर के किनारे से ज़बरदस्ती जबरन, और सात मुहर्रम से पानी वो बंद कर दिया गया, दस मुहर्रम तक जो सबसे आखिर में जो जिसने शहादत पाई वो सबसे ज़्यादा प्यासा था, और फिर जो बच गए थे खैमे के अंदर समझे वो उससे भी ज़्यादा प्यासे थे, उसमें छोटे बच्चे भी थे,
2: कम से
1: हज़रत अब्बास का 4 साल का बच्चा था। इमाम हुसैन की बेटी सकीना बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे किसी भी मक्तल में कुतुब मकातिल में जो अबू मखनफ या हबीब हमीद इब्न मुस्लिम के मकातिल हैं, किसी किताब में दिखा दीजिए आप कि किसी बच्चे ने ये कहा हो कि हमने तुम्हें पानी पिलाया था।
2: हाँ,
1: इस पर
2: क्या खूबसूरत नुक्ता निकाला है,
1: कहीं भी नहीं,
2: कहीं नहीं है
1: ये चीज़। ये एक अखलाकी दर्स था और हम इसी को हुसैनियत कहते हैं, जो बाद में जिसका अहया हुआ।
2: डॉक्टर साहब, बातों में शबीब रिजवी साहब ने कहा, एक तो ये वाज़ह बात है कि दीन के उसूल तय हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सिखाया और जब उनको बिगाड़ने की कोशिश हुई तो जान देने से भी जानिसारों ने
0: गुरेज नहीं किया।
2: और एक अमली नमूना, अमल का बेहतरीन नमूना पेश किया करबला के रेगजारों में हजरत इमाम हुसैन। अब एक नुक्ता आया कि इनकार बातिल से, कुफ्र से, शिर्क से, उन तमाम चीज़ों से जो इंसानियत के खिलाफ हैं, बकाए इंसानियत के उनसे इनकार, लेकिन इनकार काफ़ी नहीं है। आपसे भी इस पे कोई दलील सुनना चाहेंगे ताकि सुनने वालों को और लुत्फ आ जाए आज के।
0: देखिए, इस्लाम की बुनियाद ही इसी पे है, पहले इनकार फिर इकरार। कलमे को दोहराइए, ला इलाहा इल्लल्लाह। और हक ये है कि देखिए, इकरार और इनकार की बात क्या होती है, झूठ जो है वो कई हो सकते हैं, सच एक होगा। इसलिए जो झूठे हैं वो यहाँ एक बात कहेंगे, वहाँ दूसरी बात, वहाँ तीसरी बात, और हकीकत यह है कि इससे इख्तलाफात, इससे फसाद, इससे फितना बपा होता है। और जब आप हक के साथ हैं वो एक होगा। इस तरह से हमारे यहाँ इनकार के बाद जो इकरार होगा उसकी एक हैसियत बनती है, और इस्लाम की बुनियाद ही इस पर है। और बड़े बड़े फ़लसफ़ी जो हैं, इकबाल ने रूमी का वो कोट किया है, गुफ्त रूमी हर बिना

0: एक उन्हें कहा बात है खुन मीनदानी अवला बुनियाद रावीरा को, जब तक के जूट की बुनियाद को, खराबे की बुनियाद को मुनहदम न किया जाए, आप सही तामीर नहीं कर सकते। इसीलिए पहले आप अपने बुतों को जो आपके दिल में हैं, आपके दिमाग में हैं, तसव्वुर के बुत, उनको जब आप तोड़ेंगे तब आपको सही शक्ल नज़र आएगी। दूसरी बात यह, इसके साथ, इस इकरार के साथ, फिर ये सिर्फ इकरार नहीं है, फिर उस पर कायम रहना। और ये इकरार सिर्फ ज़बान से नहीं, सिर्फ दिल से नहीं, हर एक अदा से, हर एक हरकत से इसका इजहार होना चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ कि आपने समाज के हवाले से भी बात की थी कि आजकल का इंसान जो है, आजकल का यूथ जो है, अगर वो सही मानों में वाकई करबला पे नज़र करेगा, और उसके लिए जो सबसे बड़ा दर्स जो है हिफ्ज़ मरातिब का, वो हिफ्ज़ मरातिब का दर्स उसको शायद किताबों से उस तरह से नहीं मिलेगा। मिलेगा तो थ्योरी में कि दर्जा बदर्जा, पहले अंसार, उसके बाद अपने जो अजीज़ हैं उनमें भी दर्जा बदर्जा किस तरह से इमाम आखिर में शहादत पाते हैं, उससे कुछ पहले हज़रत अली असगर
1: जी।
0: एक तो ये दर्जा बंदी हिफ्ज़ मरातिब, और दूसरी बात ये जो आपने पहले ही कहा था कि एक इनकार और इकरार। देखिए इकरार की हैसियत ये होती है कि एक तो ये कि जो शबीब भाई ने अभी फरमाया कि किसी ने ये ताना नहीं दिया कि हमने आपको पानी पिलाया था, हम पे आपको
1: आपने बंद कर दिया।
0: इस्लाम का जरूर कहा, मेरे नाना का कलमा पढ़ते हैं, मेरे नाना ने ये कहा था, वो अलग है, लेकिन इस तरह के जाती एहसानात जो हैं उनमें से किसी को नहीं गिनवा। असल में क्या है, वो जाती एहसानात बुनियादी तौर पर जाती एहसानात नहीं है, बल्कि वो उन पर फर्ज था, उनको अमानतदारी करना थी, उनके पास पानी था और जो प्यासे थे उनके पास नहीं था, तो वो एक अलग एक मसला है। और इसी तरह से जब अमली एतबार से हम देखें, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि सच एक होगा, झूठ कई होंगे, यही वजह है, क्योंकि वो सच के पैरोकार थे, सदाकत के पैरोकार थे। शशमाह बच्चे की जबान से भी वही निकलता, वो भी लब्बैक कहता है जो अंसारों में हबीब इब्न मज़ाहिर जैसी उम्र के आदमी भी वही कहते हैं, इसलिए कि सच एक है और सच सबके लिए अपील रखता है।
1: सैयदुर्रहमान शम्स साहब, आपकी तरफ आता हूँ
2: जी,
1: कि वाक़े करबला जो हम आज याद कर रहे हैं, मुहर्रम की जो अहमियत और अजमत की बात हम आज कर रहे हैं, आज के दौर में, आज के इस वक्त जब मैं हूँ, बहुत सारे हैं मुझ जैसे, मैं हुसैनी हूँ, मैं हुसैनी हूँ, इस दावे को साबित करने के लिए क्या समझते हैं आपकी शर्तें हैं, या सिर्फ एक तो मोहब्बतों तक हमने रख दिया, जुनून तक रख दिया, या फिर अमलन भी आप समझते हैं कि अगर उस घर से, उस खानवादे से मुझे रिश्ता जोड़ना है,
2: सही
1: अमलन क्या तकाजे हैं?
2: जज़ाकुमुल्लाह। दरअसल इस्लाम अमल का ही दीन है, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है वो अमली तालीमात हैं। और मैं ज़िमनन एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस्लाम असल में कुछ चीज़ों को मानने का नाम है, कुछ चीज़ों से परहेज़ करने का नाम है
1: जी,
2: और कुछ चीज़ों से इनकार का भी नाम है।
1: नाम है
2: मानने की जहाँ तक बात है, जिन चीज़ों को मानना है उनको अकायद कहते हैं। अकायद पर भी तीशाजनी करने की कोशिश की गई थी यजीद के दौर में, इमाम आली मकाम ने अकायद को इस्तेहकाम बख्शा। अच्छा, इस्लाम कुछ चीज़ों को अमलन करने का नाम, फ़राइज़ का अहतमाम जिनमें है
1: जी, जी।
2: यजीद के बारे या उनके जो हवारी हैं उनके ताल्लुक से तारीख़ की शहादत है कि उनकी अमली ज़िंदगी क्या थी, वो हलाल और हराम को किस तरह से ट्रीट करते थे और किस तरह से वो मामलात थे। इसी तरह से कुछ चीज़ों के इनकार का भी नाम है, हक़ को मानना और बातिल अफकार और नज़रियात को बिल्कुल मुस्तरद करना
1: जी,
2: ये भी इस्लाम की एक अहम तालीम है। इमाम आली मकाम या हुसैनियत जिनको आज हम कहेंगे, ये दरअसल अमली पैगाम है, एक अमलन उस मेयार पर उतरना है,
1: करके दिखाना है।
2: जिस तरह इमाम आली मकाम ने जब इस्लाम पर वक्त आया, हर्फ आया, जब शरीयत खतरे से दोचार हुई, जब हलाल और हराम की इम्तियाज़ को खत्म करने की कोशिश की गई, तो इमाम आली मकाम ने अमलन न सिर्फ बजात खुद बल्कि हक़ व सदाकत का जो काफ़िला आपके साथ है, मुख्तसर सी जमात है लेकिन बहरहाल हक पसंदों की जमात हमेशा मुख्तसर रही है, उन्होंने कभी
1: और फातेह भी
2: रहे हैं, वो जंग बद्र इस पर शाहिद है, इसके अलावा वो बेशुमार वाक़यात भी शाहिद हैं। तो इस लिहाज से हुसैनियत दरअसल अमल का नाम है
1: जी।
2: آج ضرور

0: इसका फिजोलॉजिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल वर्ल्ड वो दुनिया होती है। दूसरी एक दुनिया भी होती है, उसको हम कहते हैं नफ्सियाती दुनिया, साइकोलॉजिकल वर्ल्ड अगर हम अंग्रेजी की बात करें। तो दोनों चीज़ें जो है इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमें कहीं म्यादे में दर्द हो, दांत में दर्द हो, सर में दर्द हो, तो वी स्ट्रेट वे गो टू द डॉक्टर फॉर द ट्रीटमेंट। हम जाते हैं तो ट्रीटमेंट लेते हैं, मतलब दांत दर्द, म्यादे का दर्द, नांगों में दर्द है या कहीं और किसी जिस्म के हिस्से में दर्द है, तो अच्छी बात है, हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए
1: जी।
0: लेकिन कहीं ना कहीं हम एक चीज़ खो देते हैं या उसकी तरफ वी टर्न डेफ ईयर टुवर्ड दैट काइंड ऑफ इशू, दैट इज़ अवर साइकोलॉजिकल मेकअप। जो हमारा साइकोलॉजिकल नफ्सियाती मेकअप जो हमारा है, हम कहीं ना कहीं उसको इग्नोर करते हैं। पहले हमें ये पूरी तरह से जानने की ज़रूरत है। जिस तरह आजकल अगर आप पूछेंगे किसी अनपढ़ माँ को, किसी अनपढ़ भाई बहन बच्चे को भी पूछेंगे आप कि म्यादे के दर्द के लिए कौन सी दवाई मैं लूँ, वो तो एकदम बोलेगा
1: आपको पेंटॉप दी,
0: वो तो बिल्कुल चार दवाइयों का नाम लेगा
1: और घर में खजाना भी रखा हुआ होगा।
0: यस ऑफ कोर्स, यस, बड़े बड़े डब्बे पड़े हुए हैं, वो तो दूसरी, चलो वो टॉपिक है,
1: सेल्फ मेडिकेशन का अलग है।
0: या लेकिन जहाँ तक नफ्सियाती, जब हमें नफ्सियाती तौर कोई परेशानी आ जाती है जो हमारा साइकोलॉजिकल मेकअप है, तो हम उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। पहले तो हमें मालूम ही नहीं होता है कि मेरा नफ्सियाती जो मेरी दुनिया है वो क्या है, उसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं कि हम इसको कैसे मेंटेन करें, इस जहनी सेहत को, नफ्सियाती सेहत को हम कैसे मैनेज करें। लेकिन पहले, सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि हमें नफ्सियाती चीज़ें कौन कौन सी है। मैं आपको मैडम यही कहूँ कि जिस तरह बायोलॉजिकल या फिज़िकल हमारी जो बॉडी है उसमें बड़े डिफरेंट ऑर्गन्स है, उसमें डिफरेंट सिस्टम्स है, चाहे ग्लैंडुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, कई तरह के सिस्टम्स और ऑर्गन्स एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। इसी तरह जो नफ्सियाती दुनिया हमारी है उसमें भी डिफरेंट चीज़ें मिलकर काम करती हैं
1: जी।
0: जिस तरह बायोलॉजिकल में हमारा सिस्टम एक बनता है, उसी तरह हमारा नफ्सियाती सिस्टम में भी अलग अलग चीज़ें काम करती हैं। फॉर एग्जांपल, नफ्सियाती, यहाँ पे तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा मोटा मोटा इसको कवर करने की कोशिश करूँगा
1: जो हमारे सामीन तक पहुँचे और उनका कुछ
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल तीन चीज़ें मेन होती है नफ्सियाती दुनिया की। जिस तरह वहाँ ग्लैंडुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर है, पाँव है, ब्रेन है, व्हाटएवर, इसी तरह यहाँ पे तीन चीज़ें होती है। एक चीज़ जो है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट इज अवर कॉग्निशन,
1: ओके,
0: जो रिलेटेड है ब्रेन के। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमें जानने की ज़रूरत है कि ब्रेन से हम कौन कौन सी चीज़ें परफॉर्म करते हैं।
1: ठीक,
0: डॉक्टर वानी जो है अगर नफ्सियाती तौर ये सही है तो मैं सही हूँ, मेरी, मुझे कितना ड्रेस है, मैं कितना खूबसूरत हूँ, मोटा हूँ, लंबा हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, अगली हूँ, उससे कोई मतलब ही नहीं है। मेरा साइकोलॉजिकल मेकअप ही मेरी सक्सेस को डिटरमाइन करता है, इसलिए इसको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि कॉग्निटिव एक होती है हमारे पास नफ्सियाती दुनिया में कॉग्निशन
1: जी,
0: दूसरा होता है हमारे इमोशंस, तीसरा होता है हमारा बिहेवियर। कम अज़ कम आम मतलब फहम अंदाज में ये तीन चीज़ें जो है हमें जानने की, हर एक फर्द को, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, लेडी हो, मेल हो, कोई भी हो, उसको ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मेरा जो कॉग्निशन है वो क्या है, मेरा जो इमोशंस है वो क्या है,
1: वो क्या है,
0: वो मेरा जो बिहेवियर है वो कैसा है। इन तीन चीज़ों को अगर एक बार ही उसने जान लिया तो उसको नफ्सियाती बीमारियां लगना तो बहुत दूर की बात है, वो एक अच्छी लाइफ, हेल्दी लाइफ गुजार सकता है। हम ये कहते हैं कि मेरे म्यादे में कोई परेशानी नहीं है, मैं फिजिकली ठीक हूँ, मैं बहुत ही स्वस्थ हूँ, नो, जब तक हम नफ्सियाती तौर बिल्कुल सस्त सेहतमंद ना हो तब तक हमारा ये सारा अधूरा रहता है, हमारी सक्सेस पे पूरा इफेक्ट इसका, इस चीज़ का पड़ता है। जैसे अगर आप इजाज़त दें तो मैं कंटिन्यू इसी के साथ करूं, तो ये जो कॉग्निशन हमारी है इसमें हम पांच चीज़ें करते हैं मेनली। मैं सामीन से ये गुजारिश करूं कि हम पांच चीज़ें करते हैं। एक चीज़ होती है हमारी थिंकिंग, हम सोचते हैं, कॉग्निशन वो भी एक कॉग्निटिव डोमेन आता है, हम लर्निंग उस चीज़ से करते हैं, इट इज़ ऑल रिलेटेड टू योर ब्रेन और अवर ब्रेन, ओके। तीसरा हम लॉजिक भी इसी के साथ सोचते हैं, ठीक। चौथा हम मेमोराइज भी इसी ब्रेन में करते हैं। पांचवा, हम रीजनिंग भी इसी चीज से करते हैं। ठीक, ये पांच चीजें जो है ये हम

0: हमारी कॉग्निटिव डोमेन में आते हैं कहीं ना कहीं। फॉर एग्जांपल मैं एक थोड़ा सा ड्रिफ्ट ले लूँगा यहाँ पे, थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट, वो ये है कि अगर मैं सोचूँ कभी किसी बंदे के बारे में कोई गलतफहमी मुझे हो जाती है, ठीक, मैं उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता हूँ, उसने मुझे दो बातें सुनाई, मैं तो रात भर दिन भर महीने भर साल भर सोचता रहता हूँ उसने मेरे को उस वक्त इंसल्ट की थी, तो ये मेरी कहीं ना कहीं कॉग्निटिव फॉल्ट एक आता है, थिंकिंग फॉल्ट एक है। तो थिंकिंग फॉल्ट में क्या होता है कि मुझे इसको कैसे करेक्ट करना है, मुझे ये करेक्ट करना है कि कहीं ना कहीं जो मैं सोच रहा हूँ क्या ये सही है, मुझे कुछ क्वेश्चंस खुद को ही पूछने चाहिए, खुद की कॉग्निशन को पूछने चाहिए, खुद के ब्रेन को पूछना चाहिए, क्या मैं ए के बारे में बी के बारे में या फलानी जो मेरा है जिसने मुझे इंसल्ट की है एक बार या मुझे कोई बुरा भला कहा, मैं तो उसके बारे में सोचता रहता हूँ क्या वो हो सकता है उसको कोई मजबूरी हो सकता है कोई उसको उसने मेरे को नहीं कहा हो, ठीक है, इस चीज़ को हम मेटाकॉग्निशन कहते हैं, ठीक है। जो सोच हम सोचते हैं उस चीज़ को अगर एक बारी हम चेक करें उसको बोलते हैं मेटाकॉग्निशन, नफ्सियाती इस ज़बान में नफ्सियाती लैंग्वेज में। तो हमें कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि मैं क्या सोचता हूँ उसके बारे में, ठीक, हो गया ये कॉग्निटिव प्रोसेस। दूसरा हमारे इमोशंस हैं, इमोशंस जो हैं दूसरी जो चीज़ है, मोटा मोटा मैं थोड़ा सा, तो इमोशंस जो हैं, इमोशंस लाइक वर्क लाइक द स्पाइसेस इन एनी रेसिपी, जो हम मसाला मिलाते हैं ना किसी भी पकवान में, इमोशंस वही काम करते हैं। और इमोशनली इंसान को बहुत इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत है, इसकी सक्सेस उस पर डिपेंड करेगी, उसका जो बिहेवियर है इसी चीज़ से बनता है, कॉग्निशन प्लस इमोशंस इज इक्वल टू बिहेवियर, ये एक फॉर्मूला है पूरी, ठीक। तो इमोशंस में क्या होता है, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस, हम लोग खुश भी होते हैं वो भी एक इमोशन, हम लोग गमगीन भी होते हैं हम लोग वो भी एक इमोशन, हम लोग डिसगस्ट होते हैं कभी वो भी एक इमोशन है,
1: एक्साइटेड हो जाते हैं।
0: लेकिन हमें ये जिस तरह वाजवान पकाने वाले को, रेसिपी पकाने वाले हमारी माँ बहन को जो पता होती है कि मैं हल्दी कितनी मिलाऊंगी, इस
1: डिश में क्या पड़ेगा,
0: किस डिश में कौन सी हल्दी, कितनी मिर्ची, कितना मसाला और मिलना चाहिए, इसी तरह हमें मालूम होना चाहिए हर एक बंदे को, छोटे से लेके बड़े तक ये मालूम होना चाहिए कि मैं कितने इमोशंस किस बिहेवियर में मिलाऊं, किस चीज में कितने इमोशंस मिलाऊं। अगर उसने ये कला सीखी, ठीक, तो वो जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाएगा, उसको मेंटल हेल्थ का कभी इशू नहीं रहेगा। तीसरा जो है बिहेवियर, मोटे तौर पे मैं कहता हूँ यहाँ पे, अगर आप इजाजत दें मैं इसको इलाबोरेट भी कर सकता हूँ,
1: बट चाहेंगे कि वो चीजें आप इलाबोरेट करें यहाँ पे, जिससे हमारे सुनने वालों को कोई तो फायदा हो, समझ सके अच्छे से कि हम इन सब चीजों में, डिप्रेशन में या किसी मेंटल स्ट्रेस में अक्सर क्यों आ जाते हैं, इसमें उलझ जाते हैं।
0: राइट राइट मैम, बेसिकली तीसरा जो है, मैं मोटे तौर पे फिलहाल कहूँ फिर मैं इसको इलाबोरेट करूँ, बिहेवियर जो हमारा है यानी हमारी एक्टिविटीज, हमारा चाल चलन जो है उसको हम बिहेवियर कहते हैं। तो बिहेवियर कहीं ना कहीं इन ही दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक हमारी कॉग्निटिव प्रोसेस क्या डिटरमाइन करती है, एक हमारे इमोशंस कितने मिलते हैं उसमें, ठीक। तो वो हमारा चालू चलन बनता है, वो हमारा कैरेक्टर बनता है, वो हमारी रोजमर्रा की एक्टिविटीज बनती है, उसको हम बिहेवियर कहते हैं। तो जहाँ तक पहले, मैं अब थोड़ा पहले इस पे आऊँगा, पहले डोमेन पे, वो है कॉग्निशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि हमें सिट्रस लग जाता है, सिट्रस इज मतलब पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन कब हम सिट्रस कहें
1: जी।
0: कब हम उसको भी अच्छे तरीके से ले सकते हैं। सिट्रस एक अच्छी चीज भी है, एंग्जाइटी बड़ी अच्छी चीज भी है, यस इसमें तो कोई, बिल्कुल। सिट्रस जो है इसकी दो किस्में हैं, एक होता है यू सिट्रस, जो मुझे, जिसने मुझे सुबह कंपेल किया घर से उठने के लिए, मुझे श्रीनगर जाना है, मुझे प्रोग्राम में हिस्सा लेना है, वो तो यू सिट्रस ही मेरा था ना। अगर मुझे यू सिट्रस नहीं होता तो मैं कोई तैयारी नहीं करता, मैं आराम से घर में सो जाता या बैठ जाता किसी बाग में आज, ठीक। या बच्चे को यू सिट्रस होता है, उसको क्या होता है, एग्जाम तैयारी में उसको यू सिट्रस होना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर उसको ईयू सिटर्स नहीं हो जाएगा तो वो तो एग्जाम की तैयारी नहीं करेगा, नीट की तैयारी कर ली, नीट का पेपर हो गया, नीट की तैयारी नहीं करेगा, किसी और एग्जाम की। दुकानदार को, हमारे शॉपकीपर को, हमारे बिजनेसमैन को ईयू सिटर्स जब होगा वो तो नींद से लिहाब से बाहर नहीं निकलने वाला, लेकिन उसको ईयू सिटर्स कहता है नहीं नहीं नहीं नहीं आपको उठना चाहिए, कस्टमर वेट कर रहे होंगे, पैसे तो

0: माने हैं या बिजनेस
1: जी
0: आगे बढ़ाना है, ठीक है। मुलाजिम को इसी तरह नहीं, बॉस मारेगा, बॉस वेट कर रहा होगा 10 बजे 9:30 बजे वट एवर।
1: अक्सर अक्सर ऐसे बच्चों के साथ भी यही होता है जो सुबह उठने में कोताहियां करते हैं,
0: जी जी
1: लेकिन
0: जी
1: जब उनके एग्जाम्स के टाइम आते हैं या कोई खास चीज होती है तो
0: जी
1: वो उस
0: जी
1: टाइम पे भी जाग जाते हैं जिस टाइम पे उनको जगाना बड़ा मुश्किल होता है।
0: बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ये तो यूसिट्रस ही करता है। और अगर यूसिट्रस इंसान के पास नहीं हो तो ये काम बिल्कुल ही नहीं करेगा, नहीं कर सकता, वो तो आलसी बन जाएगा बिल्कुल। अब इसके बाद अगर ये यूसिट्रस कंटिन्यू हो गया, इसकी एक लत पड़ गई, तो उस चीज को हम सिट्रस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, मैं सामाइन को बड़े प्लेन मतलब सादा लफ्जों में समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को एग्जाम है, जून एंडिंग तक बच्चे का एग्जाम खत्म हो रहा है, सारे पेपर्स फर्स्ट से लेके जून एंडिंग तक, ओके 30th जून और वट एवर। तो इसका यूसिट्रस तो है, वो तो जरूरी है, नेचुरल सी बात है, होना चाहिए, ठीक। अगर इस बच्चे ने यूसिट्रस जो है, अगर 1st जुलाई 2nd जुलाई इन द मंथ ऑफ जुलाई भी ये यूसिट्रस कंटिन्यू किया, वो तो दैट टर्न्स इनटू सिट्रस। उस चीज को हम सिट्रस कहते हैं। इसको हम कई तरह से लेते हैं, हर एक बंदा अपने अपने हिसाब से सिट्रस को लेता है, ठीक
1: जी।
0: तो उसको नहीं लेना है ये, उसको अगर उसने तैयारी की है, एग्जाम में बैठ गया है, पेपर दे दिया है, ठीक है, तो उसको अब ऊपर वाले को बस सुपुर्द करना है कि रिजल्ट उसके हाथ में है, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं, मैंने जो
1: तैयारी
0: करना है अपनी तैयारी जो मैंने की, मैंने एग्जाम दे दिया, ओके। अगर इसने कंटिन्यू किया, नहीं पता नहीं अब क्या होगा,
1: ओके
0: रिजल्ट कैसा आएगा, मेरे को फर्स्ट डिवीजन आएगा, मेरी डिस्टिंक्शन आ जाएगी, मेरी कजिन को आ गया तो मुझे नहीं आ गया तो मेरे को गल वाले मारेंगे, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन यही चीजें होती है घरों में, ठीक। तो क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सिट्रस। सिट्रस अगर दूसरी डेफिनेशन के तौर पे हम लें, सिट्रस को हम कहते हैं जब मेरी कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी मेरी डिमांड से कम हो, उस वक्त मैं सिट्रस का शिकार होता हूँ।
1: अच्छा,
0: फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 रुपए हैं, मैं गया बाहर, मैं गया कोई बिस्किट खरीदने, आइसक्रीम खरीदने, चॉकलेट खरीदने, वहाँ पे 125 का ये आता है, तो मेरी कैपेबिलिटी है 100 रुपये खर्च करने की, मेरे जेब में सिर्फ 100 रुपये है, लेकिन 125 में आता है, इसको आम लफ्ज़ों में ये एग्जांपल हम ले सकते हैं, मैं क्या हो जाऊंगा, मैं थोड़ा स्ट्रेस्ड हो जाऊंगा, अब क्या करूं, कैसे, मेरे को तो ज़रूरी चॉकलेट लेना है या ये चीज़ वो चीज़ लेनी है, ठीक है, मेरे पास तो नहीं है, क्या करूं, मैं स्ट्रेस का शिकार हो जाता है, ठीक। इसको डिमांड जब कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी से ज़्यादा हो, स्ट्रेस का शिकार, ओके। अब स्ट्रेस की दो किस्में हैं जो बहुत ज़रूरी है सामाइन को भी जानना, वो क्या है, एक को कहते हैं हम एंटिसिपेटरी स्ट्रेस, दूसरे को हम बोलते हैं रेसिडुअल। एंटिसिपेटरी होता है, यही बच्चे का एग्जाम, बच्चे ने जून तक पेपर खत्म कर दिया तो जुलाई में वो वरीड, ही इज वरीड रिजल्ट कैसा आएगा, क्या आएगा,
1: उस चीज के लिए स्ट्रेस ले रहा है जो उसके हाथ में नहीं है।
0: यस, जो आगे वाले चीज मतलब वक्त के बारे में हम सोचते हैं, रिजल्ट के बारे में हम सोचते हैं, शॉपकीपर बिजनेस के बारे में पता नहीं चलेगा, नहीं
1: जो
0: चलेगा,
1: भी हुआ नहीं
0: हो जाए, यस यस यस, मुलाजिम सोचता है पता नहीं प्रमोशन हो जाएगी अगर मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया, वो आगे वाले जो हालात के बारे में हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं एंटिसिपेटरी सिट्रस, ओके। दूसरे किस्म का सिट्रस जो होता है दैट इज रेसिड्यूअल। रेसिड्यूअल क्या होता है, पिछले हालात, काश मैंने 12th में ये किया होता, काश मैंने ये वाला कपड़ों का बिजनेस नहीं, काश मैंने किरियाने का बिजनेस किया होता, काश मैंने मेहनत की होती, दिल्ली गया होता, कहीं मुंबई गया होता बिजनेस के लिए, है ना, ये काश काश की चीजें जो है, दिस इज नोन एज रेसिड्यूअल। पिछली चीजों से तो हमें सोचना कुछ नहीं। और अब आते हैं इसकी रेमेडी, जो मैंने कॉग्निशन आपसे बहस मतलब मिलाया पहले ही, अब यही कॉग्निशन, कॉग्निटिवली हमें इसको ठीक करना पड़ेगा,
1: ओके
0: यस, मेरी थॉट प्रोसेस जो है अगर मेरी वो सही हो गई, मेरी कॉग्निशन अगर सही हो गई, तो मुझे सिट्रस वगैरह ना एंटिसिपेटरी लगेगा ना रेसिड्यूअल लगेगा, बिल्कुल
1: तो,
0: नहीं।
1: तो इस कॉग्निटिव स्टेप को कैसे हम उठाएंगे और इस कॉग्निशन के अंडर हम अपने आप अपना स्ट्रेस जो है कैसे कंट्रोल करेंगे, इस बारे में मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो चलिए सामीन, पहले एक नवा समाप्त करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं अपने जो हमारा टॉपिक है, समाप्त कीजिए।

0: ये हार्ड स्किल पहले से सिखा
1: ह्यूमन
0: रही
1: चीज़
0: हूँ।
1: इंटरफेस
0: नंबर
1: बैडली रिएक्ट करा।
0: यस, नंबर सेकंड शो सॉफ्ट स्किल, यस मोस्ट इंपॉर्टेंट शो।
2: ठीक।
0: फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट स्किल शो कम्युनिकेशन स्किल, गॉड नीच फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ये नहीं कम्युनिकेशन स्किल सुन ये क्या सो कोता अंग्रेजी बोले, सो कोता कशर बोले, सो कोता उर्दू बोले, संस्कृत बोले, अरबी बोले, नहीं उससे कोई मैं, मगर यस लैंग्वेज है ना ये कित पॉइंट करेक्ट से प्रेजेंट लैंग्वेज आपके पास है, आपको सब आता है अंग्रेजी में, ये पता हो पता, मगर प्रेजेंट करें ये उसको सिखाना है सॉफ्ट स्किल। تمس کت پہ میڈم سات کر
1: پیش یون طریقہ
0: اشفاق صبس سات پہ پیش یون طریقہ کیا مس

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम भी 268.1 मीटर और FM 103.5 MHz पर। हमारा अगला ऐलान सुनिए। इच्छा आकाशवाणी श्रीनगर कह बजित 3 मिनट सबद बोले समय मरसिया बोझू पेश करन जाकिर गुलाम मुस्तफा सोफी दीन सती मजमून छ आबर अहमद।

0: राज्यपाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि नई तकनीक, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और साइबर खतरे तेजी से डिजिटल होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक में मुख्य रूप से गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष की नागरिकों की प्रतिबद्धता से उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला ये समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुंच बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 99% शुल्क तुरंत समाप्त हो जाएंगे और भारत से निर्यात बढ़ेगा। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय कथित शिक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 254 अंक गिरकर 76,840 पर, जबकि निफ्टी 90 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: समुद्र तहसील के नवा भोजन आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ मीडियम भी 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर 12:30 हो रहे हैं। समाप्त कीजिए खबरें पहले और दोस्त के फौरन बाद कश्मीरी में।
1: आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं आबिदा अख्तर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक तेज़ी से उबरती हुई और काबिल भरोसा मईशत बनी है और ये काबिल एतमाद आलमी पावर के तौर पर भी उबर रहा है। नई दिल्ली में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 बरसों के दौरान कई स्कीमें मुल्क की मजमूई तरक्की के लिए शुरू की गई हैं। SKICC श्रीनगर में आज पंचायती राज की मरकजी वजारत की तरफ से सेवा से समृद्धि मौजू के तहत एक इलाकाई वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप का इफ्तिताह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया। देही तरक्की और पंचायती राज के वजीर जावेद अहमद डार के अलावा कई दीगर आला अफसरान भी इस तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। तकरीब से खिताब करते हुए LG ने कहा,
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक पहल पंचायती राज व्यवस्था में भी देश में और जम्मू कश्मीर में हुई है और निजी तौर पर मैं मानता हूं कि शासन में सबसे मुखर आवाज और सबसे बड़ी भागीदारी पंचायती राज संस्थाओं की होनी चाहिए। अगर

0: भारत को विकसित बनाना है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी ग्रामीण इलाके में रहती है, अगर उसकी उपेक्षा हुई तो जो लक्ष्य देश ने तय किया है, मुझे लगता है वो लक्ष्य हम पूरा नहीं कर पाएंगे।
1: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एलजी ने कहा है कि जदीद भारत के मैमार डॉक्टर मुखर्जी ने अपनी पूरी जिंदगी रवादारी को फरोग देने के लिए वक्फ की। उन्होंने कहा कि आंझानी की गैर मामूली खदमात नई नस्ल को तहरीक बख्शती रहेंगी। सदरी जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में एक तकरीब पर 65 शख्सियात को पद्म अवार्ड से नवाजेंगी। इनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। अवार्ड पाने वालों में मारूफ टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा भी शामिल हैं। ये बात काबिल जिक्र है कि इस बरस कुल 131 शख्सियात को पद्म अवार्ड से नवाजा गया। आज मुहर्रमुल हराम की 7 तारीख है। इस सिलसिले में आज वादी बर के इमाम बारगाहों, मसाजिद और खानकाहों में हुसैनी मजालिस का एहतमाम हो रहा है। कई इलाकों में आज़ादारी के जुलूस भी बरामद किए जा रहे हैं। हुसैनी मजालिस में अकीदतमंद मरसेखानी और नोहाखानी करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं।

0: जम्मू कश्मीर स्टेट हज कमेटी ने हज 2027 के लिए आजमीन से दरख्वास्तें तलब की हैं। ख्वाहिशमंद आजमीन अपनी दरख्वास्तें हज कमेटी के वेब पोर्टल hajcommittee.gov.in या मोबाइल ऐप हज सुविधा पर ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। दरख्वास्तें जुलाई की 20 तारीख तक जमा कराई जा सकती हैं। इस दौरान अकलेती उमूर की मरकजी वजारत ने हज पॉलिसी 2027 का ऐलान किया है। हज 2027 से मुतल्लिक मजीद तफसीलात कमेटी की वेबसाइट से हासिल की जा सकती हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा की शुरुआत के मद्देनजर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक जामा ट्रैफिक और ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। श्रद्धालुओं से इस एडवाइजरी पर सख्ती के साथ अमल करने के लिए कहा गया है। एडवाइजरी के मुताबिक यात्रा के दौरान नवयुग टनल से आम ट्रैफिक को मखसूस अवकात पर गुजरने की इजाजत नहीं होगी। श्रीनगर से जम्मू जाने वाली गाड़ियों को सुबह 11:30 बजे से पहले नवयुग टनल क्रॉस करने की इजाजत नहीं होगी, जबकि जम्मू से श्रीनगर की तरफ आने वाली गाड़ियों को दोपहर 3 बजे के बाद इस टनल से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के एडिटोरियल एग्जीक्यूटिव सुहेल अहमद भट्ट के वालिद निस्बती शेख अब्दुल मजीद अब से कुछ देर पहले इंतकाल कर गए। शोबा खबर के सरबरा अशफाक अहमद शाह और दीगर अमले ने सुहेल भट्ट के साथ ताजियत का इजहार करते हुए मरहूम की जन्नत नशीनी के लिए दुआ की है। मकानात व शहरी तरक्की महकमे ने डिजिटल गवर्नेंस के शोबे में कामयाबी के संगमील तय किए हैं, जिसके एवज महकमे को सुकोच अवार्ड्स के गोल्ड और सिल्वर मेडल से नवाजा गया है। ये अवार्ड महकमे को ऑटोमेटेड बिल्डिंग परमिशन सिस्टम और जेएन के गति शक्ति प्रोजेक्टों को कामयाबी के साथ अमलाने के लिए दिया गया है। अकलेती उमूर के मरकजी वजीर ममलिकत जॉर्ज कुड़िया ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा मंजूर किया है। जॉर्ज कुड़िया के पास फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग की वजारतों के कलमदान भी थे। दाखला और इमदादी बाहमी महकमे के वजीर अमित शाह आज नई दिल्ली में भारत की कौमी जरी इमदादी बाहमी मार्केटिंग फेडरेशन नेफिड के नीलामी पोर्टल का आगाज कर रहे हैं। बाद में अमित शाह नेफिड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अरकान के साथ एक मीटिंग की सदारत भी करेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
1: आदाब। यह आकाशवाणी श्रीनगर खुर्शीद अहमद बोजनव खबर। वजीर अजम नरेंद्र मोदी वोनमुत भारत वसान तरक्की करवन तो काबिल भरोस मुल्क बनोमुत यह अके आलमी पावर रंग तत्लान नव दिल्ली अंदर अकिस तकरीब खिताब करान वो तमो पतम बहन वर्यन दौरान मुल्क कुलम तरक्की बापत वारिया स्कीम शुरू कर आमच पंचायती राज मरकजी वजारत तरफ आज एस के आई सी सी श्रीनगर सेवा से समृद्धि मौजूस तहत अलाकई वर्कशाप मुनद सपदान अत तुल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दास यन दी तरक्की तो पंचायती राज वजीर जावेद अहमद डारस सान क्या दुम बहल पाए अफसर तकरीब मं शिरकत करान तकरीब खिताब करान वो लेफ्टिनेंट गवर्नरन
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक पहल पंचायती राज व्यवस्था में भी देश में और जम्मू कश्मीर में हुई है और निजी तौर पर मैं मानता हूं कि शासन में सबसे मुखर आवाज और सबसे बड़ी भागीदारी

وجهن ببوي أسقر.

0: संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राप्त दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है। अयोध्या राम मंदिर में प्राप्त दान के दुरुपयोग के आरोपों के सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने की 13 तारीख को SIT का गठन किया था। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमेरिका ने भारत की M777A2 अल्ट्रालाइट होविट्ज़र तोपों के रखरखाव के लिए 23 करोड़ डॉलर के पैकेज की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी लगातार बढ़ रही है और वो प्रस्तावित बिक्री को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक ने आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की गिरावट आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 525 अंक गिरकर 76,570 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the second Civil Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. The President will confer 65 Padma Awards today. National Security Advisor Ajit Doval today stressed on the need to be cognizant of the new security threats and challenges. Speaking at the 16th BRICS National Security Advisors meeting in New Delhi, Mr. Doval said that non-traditional threats have transcended national borders. He emphasized that innovative disruptive technologies, more camouflaged variants of terrorism and cyber threats are getting increasingly digitized. He said the discussions during the 16th BRICS National

गमत सठा गमगी चान बापत गम सठा गमगी चान बा

0: ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वे 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला ऐलान सुनिए।
1: जब बादबाने कश्ती शाहे उमम गिरा, यानी जमीन पे फौजे खुदा का अलम गिरा, घोड़े से वहाँ बिरादरे आली हिमम गिरा, यहाँ फातिमा के लाल पे कोहे अलम गिरा, सदमा हुआ ये दिल पे इमामे अनाम के, खम हो गए कलेजे को हाथों से थाम के, बजता था वहाँ सिपाह में नक्कारे जफर, मातम था नौजवानी अब्बास का इधर, बैठे थे फर्श खाक पे सुल्तान बहरोबर, अकबर खड़े थे सामने चुपके झुकाए सर, पासे अदब से शाह के कुछ कह न सकते थे, चेहरा था सुर्ख आंखों से आंसू टपकते थे, आधा पुकारते थे कि या शाह दी पनाह, बाकी है और कोई कि बस हो चुकी सिपाह, अब्बास सा तो अब न कोई होगा खैर खा, भेजो किसी को जल्द के हम देखते हैं राह, चुनने दो गुल पे सर को शहादत के बाग से, कब तक बचाइएगा कलेजे को दाग से।
0: एक बजकर 40 मिनट हुए हैं, आइए समाप्त करें चंद उर्दू नुहा।

0: कैसर निजामी की आवाज में आपने ये नौवा सुना।
1: दुनिया से कूच कर गए अब्बास नामदार, अब बेचराग है लहदे शेरे किरदगार। हजरत का सब्र शुक्र है आलम पे आशकार, मिसले खलील कीजिए फर्जंद को निसार। आहे न भरिए पेट के सर को न रोइए, जब जाने हम के खो के पिसर को न रोइए। भाई का दाग और है दागे पिसर है और, बाजू का दर्द और है दर्दे जिगर है और। कुव्वत बदन की और है नूरे नजर है और, सीने का जख्म और है दर्दे कमर है और। गर सब्र है तो गोद के पाले को भेजिए, नेजों में अपने केसों वाले को भेजिए। हजरत ने मुस्कुरा के नजर की सुए पिसर, नालैन अर्श सा पे झुकाया पिसर ने सर। फरमाया क्या इरादा है ऐ गैरते कमर, की अर्ज इज्न दीजिए या शाह बहरो बर। अब्बास के फिराक ने मारा गुलाम को, बस अब नहीं है सब्र का यारा गुलाम को।
0: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, 1:50 हो रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू और अंग्रेजी खबरों का बुलेटिन नश होगा।
2: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में गैर फौजी एजाजात देने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड अता करेंगी। वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि दफा 370 की मंसूखी से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की 16वीं मीटिंग से खिताब करते हुए आबनाए हुरमुज खोले जाने का खैर मकदम किया है और कहा है कि इससे सप्लाई में रुकावटें दूर करने में मदद मिलेगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट असातजा भर्ती के इम्तिहान में मुबैना धांधलियों के मामले के सिलसिले में तमिलनाडु में 18 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दे रहा है। लियोनल मेसी फीफा आलमी कप की तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, वो अर्जेंटीना नॉकआउट मरहले में सबसे आगे हैं। आज लंदन में FIH प्रो लीग हॉकी मुकाबले में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज

0: आज तकसीम करने की तकरीब के दौरान पद्म अवार्ड्स 2026 अदा करेंगी। पद्म अवार्ड्स तीन जुमरों पद्म विभूषण पद्म भूषण और पद्मश्री में अदा किए जाते हैं और मुल्क के आला तरीन शहरी एजाजात में शामिल हैं। आज मुनाकिद होने वाली इस तकरीब में सदर जमहूरिया 65वें पद्म अवार्ड्स अदा करेंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस साल हुकूमत ने कुल 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री अवार्ड शामिल हैं। अवार्ड्स हासिल करने वालों में 19 खवातीन भी शामिल हैं, जबकि 16 अफराद को बाद अज मर्ग ये अवार्ड्स दिए गए हैं। टेनिस के सरकर्दा साबिक खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार मम्मूटी, फिल्मी गुलकारा अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा उन 56 शख्सियात में शामिल हैं जिन्हें सदर जमहूरिया आज पद्म अवार्ड से नवाजेंगी। इन अवार्ड्स की शुरुआत 1954 में की गई थी और हर साल यौम जमहूरिया के मौके पर इनका ऐलान किया जाता है। मस्कूरा अवार्ड्स गैर मामूली खिदमात के तरफ में तफवीज किए जाते हैं और आर्ट, समाजी काम, अवामी उमूर, साइंस, इंजीनियरिंग, तजारत और सनत, अद्वियात, अदब व तालीम, खेल कूद, सिविल सर्विस जैसे मुतअद्दिद शोबों में अदा किए जाते हैं। आकाशवाणी न्यूज़ दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं रजी अहमद।
0: आकाशवाणी का खबरों का शोभा आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म की सीरीज के तहत खुसूसी प्रोग्राम नशर कर रहा है। इस सीरीज के तहत पद्म अवार्ड से याफ्ता शख्सियात की जिंदगी और खिदमात पर मबनी एक बसीरत अफरोज प्रोग्राम पेश किए जाएंगे।
2: नैराब का काम सीखा, अंगूली का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
0: नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत के दिन के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नायब सदर जमहूरिया ने डॉक्टर मुखर्जी को एक नामवर माहिर तालीम, अजीम मुजाहिद आज़ादी और एक दूर अंदेश रहनुमा करार दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी मुमताज मुहिब वतन स्कॉलर और मुदब्बिर डॉक्टर मुखर्जी को खिराज अकीदत पेश करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी जिंदगी मुल्क की तरक्की के लिए वक्फ कर दी थी। मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह ने आज कहा है कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नेफेड मुल्क में तकरीबन 74 लाख किसानों की मदद कर रहा है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली के अटल अक्षय ऊर्जा भवन में नेफेड ऑक्शन पोर्टल nefex.in के लॉन्च के मौके पर कही।
4: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी NCCF और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और NCCF ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे। सिर्फ कृषि उत्पादों की खरीदी तक नाफेड सीमित नहीं रहा है, विगत 3 साल में नाफेड ने बहुत अच्छा काम किया और इसके कारण नाफेड की प्रासंगिकता भी बढ़ी है और मुनाफा भी बढ़ा है।
0: जनाब शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत भी पेश किया। वजीर दाखिला ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तारीफ करते हुए कहा कि वो कौम परस्ती, सकाफती कौम परस्ती और भारतीय सकाफत के हामी थे। उन्होंने कहा कि दफा 370 की मनसूखी से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाले मफाहमत नामे का खैर मकदम किया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों की 16वीं मीटिंग से खिताब करते हुए कौमी सलामती के सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि इस मफाहमत नामे के नतीजे में दुनिया भर में तवानाई की सप्लाई मुस्तहकम होगी। उन्होंने आबनाए हुरमुज खोले जाने का भी खैर मकदम किया और कहा कि इससे सप्लाई में हायल रुकावटें दूर होंगी और कीमियावी अशिया और कीमियावी खाद जैसी चीजों की किल्लत पर

0: काबू पाया जा सकेगा। जनाब डोभाल ने कहा कि खित्ते और खित्ते से बाहर जहाजरानी की ज्यादा पेशरफ से इक्तसादी खुशहाली को फरोग हासिल होगा। जनाब डोभाल ने मजीद कहा कि आज दुनिया अफरा तफरी के दौर से गुजर रही है, जहां फौजी तनाज़ात, जोग्राफियाई, सियासी, गैर यकीनी इक्तसादी मसाइल और ऐसी टेक्नोलॉजी भी सामने आ रही है जो रुकावट डाल सकती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट असातिज़ा की भर्ती के इम्तिहानात के मामले में मुबैना धांधलियों के मामले के सिलसिले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 जगहों पर छापे मार रहा है। डायरेक्टोरेट का कहना है कि मरकजी क्राइम ब्रांच की जानिब से 2017 में दर्ज की गई FIR की बुनियाद पर यह कार्रवाई की जा रही है। उसने ये भी बताया कि पुलिस ने 2021 में इस मामले में फर्दे जुर्म दाखिल की थी। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की रकम में खुर्दबुर्द के इल्जाम की छानबीन करने वाली खसूसी जांच टीम ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी इब्तदाई रिपोर्ट सौंप दी है। लखनऊ डिवीजन के कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने उमूर दाखला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को ये रिपोर्ट दी है। हुकाम का कहना है कि तफ्तीश अभी जारी है और मजीद हकायक जमा किए जा रहे हैं। ज़राअत और किसानों की फलाह बहबूद के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने एल नीनो के मौसम और ज़राअत पर असरात के पेश नज़र आज नई दिल्ली में सूरत हाल का जायजा लिया। इस मीटिंग में कई रियासतों के ज़राअत के वज़ीरों, सेक्रेटरीज, जिला कलेक्टरों और दीगर अहलकारों ने शिरकत की। भारतीय महकमा मौसमियात ने अगले दो दिन के दौरान असम, मेघालय, मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। इसके अलावा बिहार, अरुणाचल प्रदेश, साहेली कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा, तेलंगाना और केरला में भी तेज बारिश होने का इम्कान है। फीफा वर्ल्ड कप में आज सुबह सवेरे फिलाडेल्फिया स्टेडियम में ग्रुप आई के एक मैच में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया। इस तरह फ्रांस ने नॉकआउट मरहले में अपनी जगह बना ली है। एक दूसरे मैच में नॉर्वे ने आज न्यूयॉर्क स्टेडियम में ग्रुप आई के एक मैच में सेनेगल को 2-3 से हरा दिया। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने पहला गोल 38वें मिनट में किया, जबकि दूसरा गोल मैच के आखिरी लम्हात में किया। इस तरह फीफा वर्ल्ड कप में मजमूई तौर पर 18 गोल कर चुके हैं और वो वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। मर्दों के FIH हॉकी प्रो लीग के इफ्तिताही मैच में आज भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ कप्तान से होगा। चीन के हुलनबियर्ग में मुनाकिदा एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ये पहला मुकाबला होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में गैर फौजी एजाजात देने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि दफा 370 की मनसूखी से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की 16वीं मीटिंग से खिताब करते हुए आबनाए हुरमुज खोले जाने का खैर मुकदम किया है और इससे सप्लाई में रुकावटें दूर करने में मदद मिलेगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट असातिज़ा भर्ती के इम्तिहान में मुबैना धांधलियों के मामले के सिलसिले में तमिलनाडु में 18 जगहों पर तलाश की कार्रवाई अंजाम दे रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. President Draupadi Murmu to present Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Home Minister Amit Shah says Shyama Prasad Mukherjee's dream realized with abrogation of Article 370. National Security Advisor Ajit Doval says opening of Strait of Hormuz will strengthen energy security around the world. Enforcement Directorate conduct searches at 18 places in Tamil Nadu in connection with alleged teacher recruitment exam manipulation case. Lionel Messi becomes the highest goal scorer in FIFA World Cup history, leads Argentina into knockout stage. And in hockey, India to face Pakistan in opening match of the FIH Pro League in London today. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories: Padma Vibhushan,

समय मुत्रम तेस मन कबते हो सानी भोजान ईशा आकाशवाणी श्रीनगर जुबजित त्रुख मिनट सबद उलू समय बरसिया बोजू पेश करन जाकिर मोहम्मद अकबर डारते हिंसा थी मजमून छो मरग

شد. صلی علی محمد و آل محمد. شد سمارا

0: اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: يا شيخ.

Yaşa, yelin lahan.

0: kasabı tatlı
1: makarna.

आमद है कर्बला के नेस्ता में शेर की, ड्योढ़ी से चल चुकी है सवारी दलेर की, जासूस कह रहे हैं नहीं राह फेर की, गश आ गया है शाह को ये है वजह देर की, खुशबू है दश्त बादे बहारी करीब है, होशियार गाफिलो कि सवारी करीब है। आता है वो जरी जो हजारों में फर्द है, शेरों का शेर आजम दश्त नबर्द है, दहशत से आफताब का चेहरा भी जर्द है, बढ़कर परे से इसे रोके वो मर्द है, सरबर कोई हुआ नहीं इस खानदान से, सरबर कोई हुआ नहीं इस खानदान से, घर में इन्हीं के उतरी है तेग आसमान से, अल्लाह हरी आमद आमद अब्बास सब शिकन, लर्जा थे को हिलते थे दिल कांपते थे तन, जंगल के शेर बन गए थे खौफ से हिरन, एक शोर था कि आज पड़ेगा गजब करन। ये शेर कम नहीं असद कलगीर से, ये शेर कम नहीं असद कलगीर से, गोया मुकाबला है जनाब अमीर से, हलचल ये थी कि गर्द सवारी आया हुई, गोया चमन में बाद बहारी आया हुई, आमद खुदा के शेर की सारी आया हुई, आप आए क्या कि कुदरत बारी आया हुई, रोशन था शमे तूर से पर तो हुजूर का, खिल्लत मिला जमीन मुकद्दस को नूर का, एक शोर था कि आज जमीन आसमान है, सहराए करबला नहीं दुनिया की जान है, उतरा जमी पे चांद ये खालिक की शान है, रिजवान दी सदा कि खुदा मेहरबान है, पर तो है ये रुखे खल्फ बू तुराब का, देखो देखो उलट गया है वर्क आफताब का, कद कितना खुशनुमा है बदन किस कदर है गोल, कद कितना खुशनुमा है बदन किस कदर है गोल, जौहर शनास है तो इसे मोतियों में तोल, मिफ्ता है फतह है, मिफ्ता है फतह है दर नुसरत को इससे खोल, वो तेग है खिराज सफा हाँ है जिसका मोल, अशराफ का बनाओ रईसों की शान है, शाहों की आबरू है सिपाही की जान है, कहता था शिम्र आके ये हरिक परे के पास, कहता था शिम्र आके ये हरिक परे के पास, हां सफदरान शाम खबरदार बाहवास, मर्दों के मारके में नहीं चाहिए हिरास, मर्दों के मारके में नहीं चाहिए हिरास, बढ़ने न पाए हजरत अब्बास हकशनास, लाखों हो तुम वो एक है प्यासे को टोक लो, जाने लड़ा के शेर के हमले को रोक लो, पहुंची जो गोशे शाह में ये शिम्र की सदा, पहुंची जो गोशे शाह में ये शिम्र की सदा, उठे तड़प के खाक से हजरत बिरहना पा, चिल्लाए

बस हो चुकी वगा, कब तक लड़ोगे फौज से, बस हो चुकी वगा, सूखे हुए लबों पे मेरी जान आई है, सूखे हुए लबों पे मेरी जान आई है, ऐ नूरे चश्मे साकिये कौसर दुहाई है। जल्दी खुदा के वास्ते दरिया पे जाइए, जल्दी खुदा के वास्ते दरिया पे जाइए, कुर्बान जाऊं भर के मेरी मश्क लाइए, फूंकता है सीना आग जिगर की बुझाइए, अच्छे मेरे चचा मुझे पानी पिलाइए, अब रहम कीजिए मेरी दो दिन की प्यास पर, अब रहम कीजिए मेरी दो दिन की प्यास पर, जीती हूं अब तक आपके आने की आस पर। अब्बास ने सुनी जो ये आवाज नागहां, अब्बास ने सुनी जो ये आवाज नागहां, बेख्तियार आंखों से आंसू हुए रवा, कंधे पे रख के शेर ने शमशीर खू चका, रुख जानबे फरात किया फेर के आना, देखी जो नहर। देखी जो नहर, दिल न रहा इख्तियार में, घोड़ा उड़ा के शेर से आए कछार में। गर्मी में थे जो गर्क के अर्क सर सिता बबा, सर्दी से इस तराई की जान आ गई जरा, दरिया से ठंडी ठंडी जो आने लगी हवा। सदमा हुआ कि धूप में है शाहे करबला, दिल हो गया कबाब मुसीबत पे शाह की, दिल हो गया कबाब मुसीबत पे शाह की, अब्बास इनामदार ने एक सरदाह की। दो दिन से बेजबां पे जो था आबोदाना बंद, दो दिन से बेजबां पे जो था आबोदाना बंद, दरिया को हिनहिना के लगा देखने समंद, हर बार कांपता था सिमटता था बंद बंद, चुमकारते थे हजरत अब्बास अर्जमंद, तड़पाता था जिगर को जो शोर आबशार का, तड़पाता था जिगर को जो शोर आबशार का, गर्दन फिरा के देखता था मुख सवार का, दरिया से भर चुका वो भिश्ती जो मश्कियाब, दरिया से भर चुका वो भिश्ती जो मश्कियाब, चिल्लाया फौज को उम्र खानमा खराब, लो मश्क ले चला जिगर जाने बूतुराब, सादात पर बस अब न कभी होंगे फतहयाब, गर मश्क ता खया में शह नेक हो गई, गर मश्क ता खया में शह नेक हो गई, ये जान लो कि जान गई आबरू गई, ये शोर सुन के घाटी पे उमड़ी सिपाहे शाम, पहले से भी ज्यादा हुआ कुछ हुजूम आम, तोले थे पहलवान तबरो खंजरो हुसाम, गुल था कि हां निकलने न पाए ये तिश्नकाम, अब्बास आबरू का है जानों का गम नहीं, अब्बास नामवर नहीं या आज हम नहीं, नजदीक से न करता था हरबा कोई शरीर, पहलू से नैजे चलते थे और सामने से तीर, थे एक जान के लिए दुश्मन जवान पीर, थे एक जान के लिए दुश्मन जवान पीर, बरछे थे गिर्द बीच में था वो मह मुनीर, मंजूर जुल्म सख्त था हर बदखिसाल को, मंजूर जुल्म सख्त था हर बदखिसाल को, पत्थर शकी लगाते थे हैदर किलाल को, बरछी से छिद गया कभी दिल और जिगर कभी, एक शेर से इधर कभी झपटे उधर कभी, छाती तले थी मश्क कभी दोष पर कभी, सीना कभी था मश्क के ऊपर सिपर कभी, रहवार पर संभलते थे जब झूम झूम के, रोते थे बाजुओं को अली चूम चूम के, तकते थे मुस्कुरा के सोए आसमां कभी, होंठों पे फेर लेते थे सूखी जबां कभी, लगता था तन

0: पे तीर कभी और सना कभी, झुकते थे खुद फरस से कभी और निशा कभी, घोड़े को जब बढ़ाते थे रानों में दाब के, घोड़े को जब बढ़ाते थे रानों में दाब के, कदमों से निकले जाते थे हल्के, कदमों से निकले जाते थे हल्के रिकाब के। एक हाथ से संभाले था मश्की जो अलम, बहता था खून जोफ भी बढ़ता था दम बदम। एक हाथ से संभाले था मश्की जो अलम, बहता था खून जोफ भी बढ़ता था दम बदम। घोड़े पे सीधे होते थे गाहे तो गाह खम, फरियाद अल गयास सितम पर हुआ सितम। तेगा किसी का शेर के शाने पे फिर पड़ा, तेगा किसी का शेर के शाने पे फिर पड़ा, वो हाथ भी बदन से जुदा होके गिर पड़ा। ठुकरा के राहवार को बढ़ते थे, ठुकरा के राहवार को बढ़ते थे वहां से जब, छाती पे नैजे रख के उन्हें रोकते थे सब। इस पर भी बढ़ चला था वो बेदस्त तिश्नलब, इस पर भी बढ़ चला था वो बेदस्त तिश्नलब, मारा किसी ने फर्क पर एक गुर्ज हाय गजब। सदमे से जर्द चेहरे पुरनूर हो गया, जरबत लगी कि कासाए सर चूर हो गया। आई सदाए शेर इलाही ये एक बार शब्बीर, आई सदाए शेर इलाही ये एक बार शब्बीर, निसार हुआ तुझ पे जा निसार है ये तेरे लिए मेरी गोद में बेकरार, है ये तेरे लिए मेरी गोद में बेकरार, आशिक को है तेरे आने का इंतजार। होंठों पे दम बदम है सदा या हुसैन की, होंठों पे दम बदम है सदा या हुसैन की, आंखें तेरी तरफ हैं मेरे नूरे आयन की। जिस दम सुना हुसैन ने ये नौहे पिदर, जिस दम सुना हुसैन ने ये नौहे पिदर, पटका अनामय सर अकदस को खाक पर, गिर कर उठे संभल के गिरे शाह बहरुबर, चिल्लाए हाथ अकबर महरू का थाम कर, वाए हसरता जवां बिरादर बिछड़ गया, वाए हसरता जवां बिरादर बिछड़ गया, थामो हमें कि बंद कमर का उखड़ गया। जैनब ने दी सदा कि मैं कुर्बान क्या हुआ, चिल्लाए ऐ बहन मेरा आशिक जुदा हुआ, हाय हाय का शोर अहले हरम में बपा हुआ। जहरा ने दी सदा कि बड़ा हादसा हुआ, घबरा के बिन्त शाह मदीना निकल पड़ी, घबरा के बिन्त शाह मदीना निकल पड़ी, हजरत बढ़े न थे, हजरत बढ़े न थे कि सकीना निकल पड़ी। दरिया पे, दरिया पे सर बिरहना शाह बहरुबर चले, सदमा ये था कि हाथों में थामे कमर चले। अकबर संभाले बाप को बाचश्मे तर चले, ये भी चले उधर शहवारा जिधर चले। सदमा है, सदमा है जरबे गम से दिले पाश पाश पर, रोने को भाई जाता है भाई किलाश पर। अल किस्सा लाए बाप को अकबर तराई में, जख्मी मिला वो शेर दिलावर तराई में, पाई जो बुए खून बिरादर तराई में, लाशे के पास गिर पड़े सरवर तराई में।
1: आप समाप्त कर रहे थे मरसियाई अनीस, पेश कर रहे थे अशफाक अहमद लोन। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, हमारा अगला ऐलान सुनिए।
2: खुशी है बहरहाल खाकसार, तुमसे जो सौ पिसर

आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों के बुलेटिन के साथ मैं संजीव कुमार। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। भारत ने अमेरिका और ईरान के दरमियान हुए मुआहदे का किया खैर मकदम। खाम तेल की आलमी कीमतों में कमी। भारत के काबिल एतमाद आलमी ताकत बनने के पीछे नेशन फर्स्ट का असूल कार फरमा वजीर आजम नरेंद्र मोदी। खारजी उमूर की पार्लिमानी कायमा कमेटी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर, खारजा पॉलिसी से मुतालिक उमूर का ले रही है जायजा। और तालीम के शोबे में मसनूई जहानत और जदीद टेक्नोलॉजी अहमियत के हामिल लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब पेश है खबरों की तफसील। भारत ने अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाई मफाहमती यादाश्त का खैर मकदम किया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स ममालिक के कौमी सलामती के मुशीरों के 16वें इजलास से खिताब करते हुए कौमी सलामती के मशीर अजीत दवाल ने कहा है कि यह पेशरफ्त दुनिया भर में तवानाई के तहफ्फुज को मजबूत बनाने में मददगार साबित होगी। उन्होंने आबनाए हरमुज के खुलने का भी खैर मकदम किया और कहा कि इससे सप्लाई चेन में हायल रुकावटें दूर होंगी। अजीत दवाल ने कहा कि इस वक्त दुनिया एक हंगामा खैज दौर से गुजर रही है, जहां फौजी तनाजात, जगराफियाई सियासी गैर यकीनी सूरत हाल, मुआशी दबाव और नई तखरीबी टेक्नोलॉजियां बड़े चैलेंज बन चुकी हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने सलामती खदशात का जिक्र करते हुए कहा कि गैर रिवायती खतरात कौमी सरहदों से आगे बढ़ चुके हैं और ऐसी सलाहियतें इख्तियार कर चुके हैं जो रिवायती रद्द अमल के लिए चैलेंज बन रही हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में हुए मुजाकरात के बाद खाम तेल की आलमी कीमतों में आज नुमाया कमी देखी गई। रसद में मुमकिन रुकावटों के खदशात कम होने और ईरान से तेल की बरामदात में इजाफे की उम्मीद पैदा होने के बायस खाम तेल की कीमतें 3% तक गिर गई हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक तेजी से उभरती हुई और काबिल भरोसा मईशत बनी है और ये एक काबिल भरोसा आलमी पावर के तौर पर भी उभर रहा है। नई दिल्ली में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों के दौरान मुल्क की मजमूई तरक्की के लिए कई स्कीमें शुरू की गई हैं। वजीर आजम ने कहा कि एक काबिल एतमाद आलमी ताकत बनने के पीछे मुल्क पहले का उसूल

0: को सुबह 9:30 बजे उनके आबाई मकबरे पर अंजाम दी जाएगी। जम्मू कश्मीर स्टेट हज कमेटी की एक इतला के मुताबिक हज 2027 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ख्वाहिशमंद आजमीन 20 जुलाई तक ऑनलाइन दरख्वास्त फार्म जमा कर सकते हैं। ये फार्म www.hajcommittee.gov.in पर दस्तियाब हैं। इसी दौरान अकलीती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कल हज पॉलिसी 2027 का ऐलान किया। आज मुहर्रमुल हराम की 7 तारीख है। इस सिलसिले में आज वादी भर के इमाम बारगाहों, मसाजिद और खानकाहों में हुसैनी मजालिस का एहतमाम हो रहा है। कई इलाकों में आजादारों के जुलूस भी बरामद किए जा रहे हैं। हुसैनी मजालिस में अकीदतमंद मरसिया खानी और नवाखानी करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। इस दौरान कई मकामात पर रजाकारों की जानिब से जहां से राहगीरों को पानी और दीगर मशरूबात पिलाया जा रहा है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात ने इस साल की श्री अमरनाथ जी यात्रा के एहसन और पुर अमन इनकाद के लिए तमाम मुतलिका एजेंसियों को मुतहरिक रहने की हिदायत दी है। डीजीपी ने अफसरों की एक मीटिंग के दौरान श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में किए जा रहे सिक्योरिटी इंतजामात और तैयारियों का तफसीली जायजा लिया। मीटिंग में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और मुख्तलिफ अजला के एसएसपीज ने शिरकत की। एसकेआईसीसी श्रीनगर में पंचायती राज की मरकजी वजारत की तरफ से सेवा से समृद्धि के मौजू के तहत एक इलाकाई वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया। तकरीब पर दीही तरक्की और पंचायती राज के वजीर जावेद अहमद डार के अलावा कई दीगर आला अफसरान भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वे 268.1 मीटर और FM 2 103.5 MHz पर। सफर के 4 बज चुके हैं। पेश आज का पहाड़ी प्रोग्राम।
2: आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर थी आईदा पहाड़ी प्रोग्राम कहन का मैं तुस्ता मेजबान शब्बीर अहमद शमस तुस्ती खिदमत बिच हाजरा और संसारियों को अदब तय ताजिम नाल अस्सलाम वालेकुम अर्ज करदा और उम्मीद है जी तुसी सारे खैर खरीद नाल होसो। सामीन 3 जून को आलमी सतह तय 2 अहम तरीन आलमी त्याड़े मनाए गए। अकवाम मुतहदा दा पब्लिक सर्विस डे ए त्याड़ा सरकारी मुलाजमीन की खिदमत मुआशरे दे ताई उनके किरदार और अवामी शोबे बिच नौजवानों को कैरियर बनाने की तरगीब दिते वास्ते मनाए गए। दुआ बैन अकवामी बेवा गान दा त्याड़ा इस त्याड़े दुनिया भर बिच बेवा को दरपेश मसाइल समाजी इम्तियाज ना इंसाफी और गुरबत के खात्मे वास्ते शऊर जगालना हुंदा है। सामीन असकुबी अवामी खिदमतगारां दे कम दी हौसला अफजाई करना और बेवा दे मसाइल हल करने की कोशिश करनी चाहिए। तसामीन अज मुहर्रम दी 7 तारीख है। आओ पहले सुनदे नूहा पेश करसन सईद आरिफ हुसैन काजमी ते साथी।

0: हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समीन आप हमें DTH के साथ साथ मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर भी समाप्त कर रहे हैं। सपहर के 4:20 हो रहे हैं। अब हमारे यहां से पहाड़ी खबरों का बुलेटिन ब्रॉडकास्ट होगा।
1: आदाब। 4:20 के दिन आकाशवाणी श्रीनगर थी खबरों का बुलेटिन केन्द्र में फिरदौस खान साहब की पहले इस वेले दियां खास खास खबरां। भारत सुन अमरीका ते ईरान के बचकार होए मुआहदे का कीता खैर मुकदम। खाम तेल की आलमी कीमतों में कमी। भारत के काबिल एतमाद आलमी ताकत बनने के पिछे नेशन फर्स्ट का असूल कार्य फरमा वजीर अजम नरेंद्र मोदी। खारजी अमूर के पार्लिमानी कायमा कमेटी जम्मू कश्मीर ते लद्दाख के दौरे उतै। खारजा पॉलिसी थी मुतलक अमूर का केंद्रीय जायजा। ते तालीम के शोबे बिच मसनूई जहानत ते नवी टेक्नोलॉजी मुझ जरूरी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। हुण पेश है इन्हां ते दूई खबरां दी तफसील। भारत सुन अमरीका ते ईरान के बचकार तय होने वाले मुफाहमती यादाश्त का खैर मकदम किया है। नवी दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों के 16वें इजलास नाल खिताब करदिया कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल सुन आख्या जे ये पेशरफ्त पूरी दुनिया में तवानाई के तहफुज को मजबूत बनाने में मददगार साबित हो सी। उन्होंने सुन आबनाई हुरमुज के खुलने का भी खैर मकदम किया ते आख्या जे इस नाल सप्लाई चेन में पियां दियां रुकावटां दूर हो सन। अजीत डोवाल सुन आख्या जे इस वेले दुनिया एक हंगामा खेज दौर थी गुजर रही है जिथे फौजी तनाज़ियां जगराफियाई सियासी गैर यकीनी सूरत हाल माशी दबाव ते नवी तकरीबी टेक्नोलॉजियां बड़े चैलेंज बन गए दिन। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सुन सलामती खदशों का जिक्र करदिया आख्या जे गैर रवायती खतरे कौमी सरहदा थी अगै बद गए दिन ते ऐसी सलाहतें अख्तियार कर गए दिन जिड़े रवायती रद्द अमल वास्ते चैलेंज बन रहे। अमरीका ते ईरान के बचकार स्विट्जरलैंड में हुए मुजाकरात के बाद खाम तेल की आलमी कीमतों में अज नुमाया कमी देखी गई। रसद में मुमकिन रुकावटों के खदशे काट होने ते ईरान थी तेल की बरामदात में वाधे की उम्मीद पैदा होने की वजह नाल खाम तेल की कीमतें 3% तक चाड़ गई हैं। वजीर अजम नरेंद्र मोदी सुन आख्या जे भारत एक तेजी नाल उभरती हुई ते भरोसे के काबिल मईशत बनती है ते ये एक भरोसे दे काबल आलमी पावर दे तौर उते भी उभर रही है। नवी दिल्ली में एक तकरीब नाल खिताब करदिया उन्होंने सुन आख्या जे पिछले 12 साल के दौरान मुल्क में मजमूई तरक्की वास्ते कई स्कीम शुरू की गई। वजीर अजम सुन आख्या जे एक काबिल एतमाद आलमी ताकत बनने के पिछे मुल्क पहले का असूल कार्य फरमाए। ग्रुप सतह मुल्क के खालिया इजलास में अपनी शिरकत का हवाला देद उन्होंने सुन आख्या जे आलमी रहनुमा कौमी फायदों को पहला रखने के भारत के पक्के इरादे को मनते हैं। खारजी अमूर थी मुतलक रुकने पार्लिमानी शशि थरूर की सरबराही वाली पार्लिमानी कमेटी सरहदी सलामती तय खारजा पॉलिसी थी मुतलक आम अमूर का जायजा किन्ने वास्ते जम्मू कश्मीर ते लद्दाख के दौरे उतै। एक कमेटी 5 जून तिकर श्रीनगर जम्मू करगिल ते लद्दाख का दौरा कर सी ताजे इन्होंने खितों में सरहदी इंतजाम ते सलामती सूरत हाल का मौके उतै जायजा केदा गिने। एक कमेटी भारत के दो तरफा तालुकात बिच हालिया पेशरफ्त 47 आबी मुआहदे की मुअतली ते खदे मुतारका समेत बैनुल अक्वामी सरहद के नेड़े सरहद पार थी दहशतगर्दी के खतरे का भी जायजा केंद्रीय है। कमेटी की तवज्जो भारत चीन तालुकात ते मशरकी लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन की सूरत हाल उतै भी रहसी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन आखिर जे तालीम के शोबे में

0: ਨੂੰ ਜ਼ਹਾਨਤ ਹੈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੁੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਸ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਸੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜ਼ਹੀਨ ਤੁਲਬਾ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲ ਜੀ ਸੁਨ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਕੋ ਚੈਲੇਂਜਸ ਕੋ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੋ ਨਵੀਂ ਸਮਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਏ।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक पहल पंचायती राज व्यवस्था में भी देश में और जम्मू कश्मीर में हुई है और निजी तौर पर मैं मानता हूं कि शासन में सबसे मुखर आवाज और सबसे बड़ी भागीदारी पंचायती राज संस्थाओं की होनी चाहिए अगर भारत को विकसित बनाना है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी ग्रामीण इलाके में रहती है, अगर उसकी उपेक्षा हुई तो जो लक्ष्य देश ने तय किया है मुझे लगता है वो लक्ष्य हम पूरा नहीं कर पाएंगे।
0: ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਆਨ AIR ਤੇ DTH ਉਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੇਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਸੁਣ ਖੂਨ ਦੇ ਜਦੀਦ ਤਰੀਨ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਗ ਮੀਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀਮੋਫੈਗੋਸਾਈਟਿਕ ਹੀਮੋਹਿਸਟੋਸਾਈਟੋਸਿਸ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਮਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਮੈਟਿਕ ਪੋਇਟਿਕ ਸਟਿਮ ਸੈੱਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਉਤੇ ਸ਼ੋਬੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਹੈਮੋਟੋਲੋਜੀ ਕੋ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਕਿਮਜ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨਾਈ ਸੁਨ ਅਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂਰੁਲ ਐਨ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ,
2: ਇਹ ਜੋ ਮੈਚਡ ਅਨਰਿਲੇਟਡ ਡੋਨਰ वाला प्रोविजन है, इसमें हमारी सोसाइटी से लोग रजिस्टर करें ताकि अगर दुनिया में कहीं भी ऐसी जरूरत पड़ेगी किसी पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो और हमारा मैरो हमारी स्टेम सेल उसके काम आ जाए, उसकी लाइफ बचाए, तो इससे ज्यादा कोई अचीवमेंट नहीं है। तो हम ये एक इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं। पोलैंड से लेके बंदा यहाँ आया और हमारे एक्सपर्ट टीम ने उसका फायदा उठा के एक बच्चे की जान बचाई और वो भी बहुत कम पैसे से स्किम्स फोरफ्रंट में आना चाहता है और ट्रांसप्लांट का सारा सिस्टम, नॉट ओनली बोन मैरो किडनी, हार्ट, लिवर, लंग और दूसरे ट्रांसप्लांट्स में भी आगे इसको इंशाल्लाह 1-2 साल में हम पूरे इस स्कीम को रोबस्ट बनाएंगे।
0: ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸੁਣ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਤਮਿਨਾਨ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ।
3: मेरा नाम मोहम्मद अशरफ शेख है, आई एम फ्रॉम सफापुरा मोनसबल। मेरा एक बच्चा है जो HLS में मुबतला था। एक्चुअली मेरे पहले इससे पहले एक बेटी थी, वो भी तकरीबन 40 डेज इधर हॉस्पिटल में रही है, उसको भी यही HLS था। उसकी डेथ हो गई है क्योंकि उस टाइम इतना एडवांस ट्रीटमेंट नहीं था इसका। तो जब ये दूसरा बच्चा मेरा आया तो ये तकरीबन 12 मंथ्स ठीक था। 12 मंथ्स के बाद मैंने इसका टेस्ट करवाया तो ये भी HLS निकला। फिर मैं बाहर भी गया, हर जगह गया मैं। उसके बाद मैंने रेशमा मैम का नाम सुना है इधर कि वो इसके लिए बहुत काबिल जानी जाती है, तो फिर मैं इनके पास आया, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया।
0: आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर थी वाबस्ता एडिटोरियल एग्जीक्यूटिव सुहेल अमर भट्ट के वालिद निस्पति यानी सोरे शेख अब्दुल मजीद आज दोपहर इंतकाल कर गए। वह वादी के मारूफ प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर शेख तारक दे पे आसे शोबे खबर के सरबरा अशफाक अहमद शाह की सदारत बिच अज एक ताजियती मीटिंग हुई जिस बिच सुहेल अहमद भट्ट के नाल ताजियत का इजहार करदिया मरहूम की जन्नत नशीबी वास्ते दुआ की गई। वालिया के मुताबिक ताजियत 3 तिहाड़िया यानी 5 जून तिकर उनकी रिहायश गाह वाकई हमजा कॉलोनी लैन नंबर 3 लाल बाजार बिच जारी रह सी। इजतमाही फातह खवानी जुमेरात 5 जून को सुबह 9:30 बजे उनके आबाई मकबरे उतै अंजाम दिते गए सी। जम्मू कश्मीर स्टेट हज कमेटी की एक इतला के मुताबिक हज 2027 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ख्वाहिशमंद आजमीन भी जुलाई तिकर ऑनलाइन दरख्वास्त फार्म जमा कर सकते हैं। ये फार्म www.hajcommittee.gov.in उतै दस्तियाब हैं। इसी दौरान अकलीती अमूर के वजीर किरण रिजिजू सोन कल हज पॉलिसी 2027 का ऐलान किया। अज मुहर्रम उल हराम की 7 तारीख है। इस सिलसिले में अज पूरी वादी ते इमाम बारगाहां मसीतियां ते खानकाहां विच हुसैनी मजलसां दा अहतमाम हो रहा है। कई इलाकों में आजादारा दे जलूस भी कटे जुल रहे हैं। हुसैनी मजलसां विच अकीदतमंद मरसिया खवानी ते नुआ खवानी करके इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ते करबला दे शहीदां को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। इस दौरान कई जाइयां उतै रजाकारा की तरफों सबीलां लाइया गई हैं, जिथे राह उतै टुरने वालों को पानिये ते दोई मशरूब प्याले जुल रहे हैं। ڈائریکٹر جنرل

0: करनी है
1: जी
0: ठीक है। ते ईश्वर चंद विद्या सागर ने
1: जी
0: पहले ओ बंदे सी जिन्हां ने एक विधवा दे नाल ब्याह कीता, होर
1: जी
0: विधवावां दे हकां लई बहुत सारियां लड़ाइयां लड़ियां ने
1: जी
0: ठीक है।
1: उन्होंने आवाज उठाई
0: जी
1: बिल्कुल
0: जी बिल्कुल।
1: जी
0: पति दी मौत तो बाद तुहानू पता ही है कि कई सारी महिलावां नू
1: जी
0: परिवार दी जिम्मेवारी आ जांदी है,
1: आ जाती है बिल्कुल
0: कई बार उन्हां नू परिवारिक भेदभाव
1: जी
0: है ना,
1: जी
0: परिवारिक भेदभाव हो जाता है। पति दी मौत तो बाद महिलावां नू आर्थिक समाजिक तौर ते
1: जी
0: बोझ समझा जाता है।
1: जी
0: अगर उन्हां दी संपत्ति दे पति दी संपत्ति दे उपर भी हक होंदा है, लेकिन सांझे परिवारां दे करके
1: जी
0: उन्हां नू ओ हक भी नहीं
1: नहीं
0: मिलते
1: मिलता है
0: किसे थान
1: बिल्कुल
0: ते।
1: बिल्कुल
0: हर एक परिवार इस तरह नहीं करता है किसे थान ते।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हुण जो अज अज दी साडी थीम है, द थीम ऑफ इंटरनेशनल विडो डे
1: जी
0: 2026 इज जस्टिस डिग्निटी एंड इकोनॉमिक पावर फॉर विडो द अफेरिकन परस्पेक्टिव, जिसनों असी पंजाबी विच इस तरह कहांगे कि विधवावां लई इंसाफ मान सम्मान अते आर्थिक शक्ति अफरीकी दृष्टिकोण देना
1: जी
0: ठीक है।
1: एक होर
0: जी
1: चीज मैनू हुण दिमाग विच आ रही है परमीत के इस दिन दी इस दिवस दी शुरुआत जिहड़ी आ
0: जी
1: ओह लुम्बा फाउंडेशन
0: जी
1: द्वारा 2005 दे विच कीती गई सी।
0: जी जी जी
1: इस दिन 23 जून सी
0: जी
1: ते 23 जून नू ही चुनिया गया है इस लई
0: जी
1: क्योंकि 23 जून 1954 नू फाउंडेशन दे संस्थापक
0: जी जी जी
1: लार्ड लुम्बा दी माता श्रीमती पुष्पावती लुम्बा ने अपने पति दी मौत तो बाद विधवा हुए सन। लुम्बा संघर्ष तो बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने
0: जी
1: 2010 दे विच इस नू अधिकारित तौर ते मानता दित्ती सी
0: जी बहुत ही बढ़िया
1: है ना।
0: जी जी जी
1: ते मौजूदा स्थितियां ते चुनौतियां दी जेकर आपां गल करिए
0: जी
1: कि जिवें हुणी तुसीं कहा कि उन्हूं बहुत सारियां
0: हाँ
1: ऐसियां दुख
0: समस्यावां दा जी
1: तकलीफां ते
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: समस्यावां खड़ियां हो जांदियां ने।
0: बिल्कुल
1: दुनिया भर विच लखां विधवावां अज भी बहुत सारियां मुश्किलां दा सामना
0: सामना
1: कर रहियां ने
0: करदियां ने बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल
1: जिवें कि गरीबी है पहले तो
0: बिल्कुल
1: आमदनी दा कोई स्थाई साधन ना होण करके इन्हां औरतां नू गरीबी दे विच जीवन बतीत करना पैंदा
0: जी जी
1: क्योंकि
0: जी
1: कमाउण वाला शायद जेकर घर दे विच इक्को ही होवे उन्हां दा
0: जी
1: पति ही
0: जी जी
1: ओहदी
0: जी
1: चले जाण तो बाद उस नू बहुत कुछ सोचना पैंदा
0: जी
1: या तां उहनू आप बाहर निकलना पैंदा
0: जी जी
1: फिर
0: जी
1: समाज दियां गल्लां
0: जी बिल्कुल
1: ठीक है ना ते
0: जी
1: बहुत सारे नाम ओहदे नाल जोड़े जांदे ने
0: जी
1: ते
0: बिल्कुल
1: ओहदे करैक्टर ते भी उंगली
0: हाँ
1: उठाई
0: बिल्कुल
1: जांदी है
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ते पर गरीबी नू किदां इहदा ओहदे कोल हल नहीं हुंदा ते उहनू बाहर निकलना ही पैणा क्योंकि किसे आंदे आ कि अपना दुखा चाहे जिहनू मर्जी सुणा लो दुख ते अपना ही रहना
0: बिल्कुल
1: ठीक
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: बिल्कुल
1: समाजिक बेदखली कई
0: जी
1: बार इह भी हुंदा कि कई सभ्याचारां
0: हाँ
1: विच
0: जिस
1: उहनां
0: तरह
1: नू
0: असी गल
1: बिल्कुल
0: करिए फैमिली फंक्शंस दी है ना,
1: बिल्कुल
0: फैमिली फंक्शंस विच विधवा औरतां दे उपर इन्ना ज्यादा ध्यान नहीं दिता जांदा। होर
1: बिल्कुल
0: किसे किसे थां ते जिस थां ते ओ आए हुंदे ने
1: जी
0: उस थां ते उन्हां नू निगलैक्ट कीता
1: कीता
0: जांदा है,
1: जांदा
0: जिवें कि कोई भी रस्म लै लो ते विधवा महिलाओं नू थोड़ा जा दूर ही रखते ने,
1: हाँ
0: कहने
1: बिल्कुल
0: ने कि इस रस्म विच इस दी की जरूरत है ते विधवा है ना बाद विच भी कर लेगी।
1: हाँ वो भी
0: लेकिन
1: है ते दूसरा है जिवें हुण ब्याह शादी दे विच तां
0: जी
1: स्पेशली
0: जी
1: मतलब जिवें जेकर विधवा सामने आ जांदी पहले ते बहुत ज्यादा सी ते
0: जी
1: हुण भी किते ना किते इस नूं सोचिया ते विचारिया जांदा है कि कोई
0: जी
1: रस्म करदे होए
0: जी जी जी जी
1: जिवें किसे ने पानी
0: जी
1: वारना या फिर
0: हाँ जन्मदिन होए
1: किसे
0: किसे दी
1: नूं
0: तारा
1: शगन
0: हाँ
1: पाउणा
0: किसे
1: ते
0: दा
1: ओह कहंदे आ कि इह ते
0: पहली
1: पहले ही विधवा
0: विधवा
1: है ते
0: हाँ
1: पता नहीं
0: बिल्कुल
1: ओहदे उत्ते ओहदा साया ना पै जावे।
0: हाँ
1: इह जिहड़े हैगे आ इह अनपढ़ता कह लो अंधविश्वास कह लो
0: जी
1: कि सिर्फ ओहदी उपज ने
0: जी जी जी जी
1: जेकर ओदां देखिए आपां ते इहदे नाल ते मतलब बंदे दा अपनी किस्मत है
0: जी
1: दूसरी गल है कि ओहदे विच की कसूर है
0: जी
1: औरत इहदे विच किवें कसूरवार
0: जी
1: है
0: जी जी
1: कि
0: जी
1: जेकर कोई
0: किसे
1: एक्सीडेंटली कोई
0: हाँ
1: चीज
0: हाँ
1: किसे
0: बिल्कुल
1: बंदे नाल हो जांदी है ते ओहदे विच कोई कसूर ते नहीं ना
0: नहीं
1: हुंदा
0: नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं
1: बिल्कुल ते उन समाजिक बेदखली जो है ओहनू भुगतनी पैंदी है अलग
0: जी
1: अलग कीता जांदा
0: जी
1: कई
0: जी
1: वार तां ओहनू कलंक भी समझा जांदा
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल जायदाद दे अधिकार दी जिवें तुसीं गल कर रहे
0: हाँ
1: सीगे
0: हाँ
1: बहुत सारे देशां विच विधवा नूं अपने मृतक पति दी जायदाद या विरासत तो बिल्कुल
0: बिल्कुल
1: ही
0: बेदखल
1: अलग
0: कीता
1: ठग या
0: जाता है
1: फिर वांझा रखा जांदा है
0: बिल्कुल
1: ना
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बिल्कुल। ते जिवें हैगा इस दिन दा उद्देश आपां जेकर देखिए
0: जी
1: इस दिवस दा मुख उद्देश यही आ कि समाज दे विच उहनां नूं बराबरी दा दर्जा दवाया जावे
0: जी
1: रोजगार अते सही आमदनी दे मौके प्रदान कीते जाण
0: जी जी सरकार वालों भी
1: जी
0: कई सारी विधवावां नूं ये मौके प्रदान किए गए ने,
1: जी
0: जिवें कि सरकार विधवा महिलावां दे वल अपना समाजिक आर्थिक अते मानसिक सशक्तिकरण भूमिका निभाउंदी है।
1: जी
0: सरकार वालों विधवा पेंशन योजना राही आर्थिक सहायता दी जाती है
1: जी
0: जिस नाल अपनी बुनियादी लोड़ां पूरी

0: पत्र,
1: डेथ सर्टिफिकेट,
0: बिल्कुल
1: आय प्रमाण पत्र,
0: जी,
1: इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, रेजिडेंशियल प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटो।
0: जी, ये चीज़ां उस दे जो सर्टिफिकेट है,
1: जी, जी,
0: फॉर्म जो उन्हें फिल करना
1: जी,
0: है,
1: जी,
0: वो
1: जी,
0: लग दिया है।
1: जी,
0: बिल्कुल। ते जिमें के जरत रुत्ता उदास मौसम, खत मैं की दे नाम लिखा, कीनू लिखा जख्मी सुबह, कीनू मैं टल दी शाम लिखा। बेशक शाम लिखण वाला कोई नहीं बचदा, उसका जीवन साथी नहीं हुंदा,
1: जी
0: मौसम उदास हो जाते ने। बिल्कुल। ते कई जख्मी सुभा हुंदे ने, या फिर जख्मी उसनों फ्यूचर दिखदा है, पर
1: जी
0: फिर भी इंसान दे विच एक ताकत रब ने भरी है कि जेकर कोई एहो जा हादसा या फिर रिपीट या फिर ऐसी दरपेश कोई मुश्किल आ जाती है, इंसान दे विच सवै ताकत है कि
1: बिल्कुल
0: जिस सवै ताकत दे नाल ओ उपर वाला खुद खड़ा है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ते
1: बिल्कुल
0: इस ताकत दे विच उस दी ताकत हुंदी है,
1: जी, रब
0: ते
1: दी
0: ओ
1: ताकत
0: मुड़
1: हुंदी है
0: अपने आप नू जोड़ सकदा है,
1: जी,
0: बिखरे हुए नू संभाल सकदा है, ते
1: बिल्कुल
0: अपनी जिंदगी दे विच अग्गे तुर
1: वधाउण
0: सकदा है,
1: जी, बिल्कुल
0: ते
1: बिल्कुल
0: अपने बच्चियां नू उसे तरह ही पाल सकदा है जिस तरह ओ चाहुंदा सी। पर सिर्फ ते सिर्फ जरूरत हुंदी है उस दे
1: एकदम
0: आत्म विश्वास दी,
1: जी जी
0: ते
1: जी
0: अपने कदमां नू अग्गे वधाउण दी,
1: जी
0: दूसरा अपने दिल दे विचों बाहरी ताकतां दा डर कढ के अग्गे वधण दी।
1: बिल्कुल सही कहा तुसीं।
0: ते बेशक साडे समाज दे विच बहुत तिखियां नूंदरां ते बहुत तिखियां चुंझां हन, पर बेशक इत्थे दे हालात ए ने कि इत्थे पर कुछ नहीं दिसदा अमन दियां घुग्गियां वर्गा, गीतां दे दरख्त नहीं लभदे जिन्हां संग पींगां पा लईए।
1: बिल्कुल
0: बेशक इत्थे ओ दरख्त नहीं लभदे जिथे पींगां पा लईए, ते अमन दियां घुग्गियां वर्गे गीत नहीं हैगे, अमन दियां घुग्गियां भी नहीं हैगियां। बहुत ज्यादा संघर्ष है, बेशक बहुत ज्यादा तकलीफां ते मुश्किलां हन, पर फिर भी इंसान अपनी ताकत नूं पहचाने ते अपनी जिंदगी दे विच अग्गे
1: अगे
0: वधे,
1: बढ़े
0: चाहे ओ औरत है ते
1: चाहे
0: चाहे ओ
1: मर्द,
0: मर्द है।

0: ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਪਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
1: ਜੀ,
0: ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਸ਼ੀਨਮ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।
2: ਸਮੇਂ ਆਪ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਆਜ ਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਮੀਨਾ ਸ਼ਾਹ, ਯਾ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ।
3: ਜਬ ਬਾਦ ਬਾਨੇ ਕਸ਼ਤੀ ਸ਼ਾਹੇ ਉਮਮ ਗਿਰਾ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੇ ਫੌਜੇ ਖੁਦਾ ਕਾ ਅਲਮ ਗਿਰਾ, ਘੋੜੇ ਸੇ ਵਾਂ ਬਿਰਾਦਰੇ ਆਲੀ ਹਿਮਮ ਗਿਰਾ, ਯਾ ਫਾਤਿਮਾ ਕੇ ਲਾਲ ਪੇ ਕੋਹੇ ਅਲਮ ਗਿਰਾ, ਸਦਮਾ ਹੁਆ ਯੇ ਦਿਲ ਪੇ ਇਮਾਮੇ ਅਨਾਮ ਕੇ, ਖਮ ਹੋ ਗਏ ਕਲੇਜੇ ਕੋ ਹਾਥੋਂ ਸੇ ਥਾਮ ਕੇ।
2: हम आकाशवाणी श्रीनगर से बोल रहे हैं, मीडियम के अलावा FM 2 पर। समय ठीक 5 बजे नश होगा आज का गोजरी प्रोग्राम। प्रोग्राम से पहले ये वक्फा।
4: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
5: अस्सलाम वालेकुम मौजूद सामीन, आज को गोजरी प्रोग्राम लेकर था रहा हूँ मेज़बान जाकिर हुसैन, थारी खिदमत माजर है। उम्मीद है तुम सब ठीक ठाक होंगे। आज का प्रोग्राम हम गल करेंगे जदीद गोजरी अदब, कसीदा ते मरसिया, सैरफी
6: और नातिया मुशायरो हमने अपना आर्काइव्स ते कढ़े है। नातिया मुशायरो भी तुम्हारा सुनावांगा। हमारे कुल हमद भी है, निसार हुसैन कटारिया साहब और पेश करेंगे।
5: हुण कुछ गल जदीद गोजरी अदब बारे। जदीद गोजरी अदब की इब्तदा 20वीं सदी के नाल ही होगी थी। इस दौर में सियासी तमाशी ते इल्मी पसमानदगी के नाल नाल सरकारी डाई ना होने की वजह से गोजरी बोलने वाला महजब दुनिया के सामने आन ते गोजरी बोलने ते शर्मावे था। इस तरह कौम की तरक्की के नाल ही ज़बान ना भी बड़ो खसारो देखनो पियो। लिहाजा इस दौर में सब तू अहम ते ज़रूरी अमल यो थो जे इस कौम ना सियासी ते तालीमी बैदारी पैदा की जाए। यह ज़रूरत महसूस करता हुआ मुखलिस गुजर रहनुमा को एक काफिलो बांधा आयो, जिसने समाजी ते तालीमी बैदारी पर जोर दे के बिलवास्ता तौर पर गोजरी ज़बान ते अदब वास्ते राह पैदरी की। इस काफिला में पुंछ का मरहूम चौधरी ग़ुलाम हुसैन लिसानवी, राजौरी का चौधरी दीवान अली, रियासी का हाजी इसराइल खटाना, जम्मू का चौधरी अब्दुल्ला, ब्रिगेडियर खुदा बख्श सरवरी कसाना ते कश्मीर ते मियां निज़ामुद्दीन लारवी रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बानी कदे भी नहीं भुलाई जा सकती। इस तरह 20वीं सदी का आगाज़ तो ही गुजर लिखाड़िया ने उर्दू ते पंजाबी के नाल नाल अपनी माँ बोली गोजरी में भी लिखना शुरू कियो। देहाती पिसया ते इल्मी पसमानदगी की वजह ते मुच शायरा को कलाम या तो लिख ही नहीं हुआ या ज़ाया हो गयो, तो इन्हें बिच अक्सर की तारीख पैदाइश ते वफात ते भी दुनिया नावाकिफ है, तो महज हालात वाकयात की बुनियाद पर अंदाज़ो लायो जा सके। एक अहम गल याद रखने की यह भी है कि कदीम गोजरी अदब की तरह 20वीं सदी का गोजरी अदब को भी तकरीबन सारा को सारो मवाद शायरी की सूरत में है, तो नसर आले पास है बड़ी घट तवज्जो दी गई है। गोजरी नसर गालबन जम्मू कश्मीर अकेडमी में गोजरी शोभा का क्याम तो बाद ही लिखी जान लगी। इस तरह 20वीं सदी का आगाज़ में ही जिन गोजरी शायरों का कलाम लभें, इन में नून पुंछी, अब्दुल पुंछी, साईं कादर बख्श, मियां फतेह मोहम्मद दरालवी, खुदा बख्श जार, अलम दीन बनबासी शामिल हैं। इन शायरों को अक्सर कलाम सैरफी ते बारह माह की सूरत में आए ते तसव्वुफ़ ते इश्क का मजमून नुमाया है, जबकि बनबासी ते मौलाना महरुद्दीन कमर की शायरी में नज़म ते इनकलाबी शायरी भी शामिल है। इनका नाल नाल दूजो काफिलो जुड़ो शामिल हुओ, इस माँ मियाँ निज़ामुद्दीन लारवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोहम्मद इस्माइल ज़बी, डॉक्टर साबर आफाकी, सोज़ हज़ारवी, मौलाना इसराइल महजूर, सरवरी कसाना, शमसुद्दीन महजूर पुंछी, हाजी हसन दीन हसन गोरसी, इसराइल असर ते सईद हाकम शाह कमर, साईं फ़करुद्दीन जया ना आवें। इन तमाम की शायरी माँ भी सैरफी ते बारह माँ नुमाएँ, पर इसे दौर में इनकलाबी नज़म ते नात भी तसव्वुफ़ ते इश्क की कैफियत नाल शामिल होती गई।

अज भी जग जान मान लोक मोमन गावे अखते सच का गीत देखो। जगमा रही मेसा लै शाद कायम सची रब के नाल परीत देखो। जगमा

हर एक चीज है उनकी है यार जो समाय उनको, हर एक चीज है उनकी है यार जो समाय उन

0: हड्डी कान छोड़े ओ मुका मेरा आका मीना भी मदीने बुला मेरा आका।
1: वाह वाह वाह वाह।

0: ये था मोहम्मद अदरीस शाह साहब, जिनते तम उनकी नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहा था कि बंदो ना चीज नसीम पुंछी, एक छोटी जैसी नात अर्ज करे, बड़ी बोधी ते बोधी मेरी टारी या रसूल
1: अल्लाह,
0: बड़ी बोधी ते बोधी मेरी टारी या रसूल अल्लाह, खड़ी गोली अडीके आज भी थारी या रसूल
1: अल्लाह,
0: खड़ी गोली अडीके आज भी थारी
1: या रसूल अल्लाह,
0: या धरती नूर को टोटो बनी थी अरब के नूरों, या धरती नूर को टोटो बनी थी।

0: इसके अलावा ही हमारा प्रोग्राम कोविल मुख्य प्रोग्राम का प्रोड्यूसर वसीम फारूक वानी ते अपना मेजबान नदेव जाज। अच्छा जी, रब राखो।
1: आप समाप्त कर रहे थे आज का गोजरी प्रोग्राम, पेशकश वसीम फारूक।
2: जब वाद बाने कश्ती शाहे उमम गिरा, यानी जमीन पे फौजे खुदा का अलम गिरा, घोड़े से वहां बिरादरे आली हिमम गिरा, यहां फातिमा के लाल पे कोहे अलम गिरा, सदमा हुआ ये दिल पे इमामे अनाम के, खम हो गए कलेजे को हाथों से थाम के, बजता था वहां सिपाह में नक्कारे जफर, मातम था नौजवानी अब्बास का इधर, बैठे थे फर्श खाक पे सुल्ताने बहरोबर, अकबर खड़े थे सामने चुपके झुकाए सर, पासे अदब से शाह के कुछ कह न सकते थे, चेहरा था सुर्ख आंखों से आंसू टपकते थे, आदा पुकारते थे कि या शाह दी पना, बाकी है और कोई कि बस हो चुकी सिपाह, अब्बास सा तो अब न कोई होगा खैर खा, भेजो किसी को जल्द के हम देखते हैं राह, चुनने दो गुल पे सर को शहादत के बाग से, कब तक बचाइएगा कलेजे को दाग से, तन्हा कहाँ

0: प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG कैरियर, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। कतर में हुए धमाके पर श्री जायसवाल ने बताया कि इस घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई।
1: रास लफान परियोजना में जो वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: इस बीच तमिलनाडु सरकार ने कतर में आग की घटना से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ितों के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसिंग मटमुंग और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाव के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए।

0: हूँ द श्रीनगर स्टेशन मीडियम वेव अलाउ एफएम टोस्पेट समीन सैनिस दुईमी सैलानस प्रेरियो
1: आकाशवाणी श्रीनगर अपनी घड़ियां मिलाइए शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे
2: प्रोग्राम शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
3: शहरबीन के समयम को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौजूदात हैं मरकजी पंचायती राज वजारत की तरफ से श्रीनगर में कौमी सतह की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, कश्मीर के नौनिहाल की जान बचाई पोलैंड के रजाकार ने, पूंछ जिले में जल जीवन मिशन की नाकामियां और साधना टनल के लिए अभी तक टेंडरिंग भी शुरू नहीं हो पाई। मौजूदात की तफसील जरा देर बाद।
4: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
5: सुनो ना, सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
6: तो रोका किसने है?
5: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
6: मुझसे?
5: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
6: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
6: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
5: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
6: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
7: 9018074333
8: सेहत तक हर इंसान की पहुंच एक बुनियादी हक है, लेकिन आज भी कई लोगों के लिए ये एक मुश्किल सफर है। दूर दराज इलाकों में हॉस्पिटल, लंबी कतारें और सही जानकारी की कमी, ये सब रुकावटें बनती हैं। इन छोटी छोटी रुकावटों की वजह से जरूरी इलाज भी रह जाता है, लेकिन अब इसका हल है जेके सेहत ऐप। ये है आपका डिजिटल साथी जो आपकी सेहत से जुड़ी हर जरूरत का ख्याल रखता है। अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर खोलिए, सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए जेके सेहत ऐप और इंस्टॉल करके रजिस्टर हो जाइए। ये ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, नजदीकी हॉस्पिटल ढूंढ सकते हैं, ऑनलाइन सलाह और मेडिकल रिपोर्ट्स देख सकते हैं, एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं, दवाइयों की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, ब्लड बैंक इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और सरकारी हेल्थ स्कीम्स के बारे में भी जान सकते हैं। और साथ ही साथ आप प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस भी बुक करवा सकते हैं। इस ऐप में AI सिम्टम चेकर चैटबॉट भी अवेलेबल है। चाहे आप मरीज हो, डॉक्टर, स्टूडेंट या एक आम शहरी, जेके सेहत ऐप सबके लिए है। इट्स सिंपल, सेफ और आपके लिए।
9: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नेशनल हेल्थ मिशन J&K।
10: होली का ना अलग ही मजा है। लोरी ना मिठाई खाओ।
11: वाह, इसका स्वाद तो बड़ा ही अच्छा है।
12: पता नहीं मैं जो मिठाई लेके आई उसमें ऐसा स्वाद क्यों नहीं आ रहा।
13: सावधान रहना रीना, त्योहारों के समय मिठाइयों में मिलावट की संभावना बहुत अधिक होती है, इससे हमारी और हमारी फैमिली की सेहत खराब हो सकती है।
12: अच्छा भाभी,
13: और हाँ, मिठाई खरीदने से पहले ये जरूर जांच ले कि दुकानदार के पास फूड लाइसेंस हो। अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट की शंका हो तो राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त के कार्यालय में शिकायत कर सकती हो। और अधिक जानकारी के लिए www.fssai.gov.in पे लॉगिन कर सकती हो। और हाँ, अगर आप चाहती हो तो वेबसाइट पर खाद्य मिलावट की जांच के आसान से तरीकों की जानकारी भी ले सकती हो।
12: थैंक यू भाभी, आपने तो मेरी आँखें ही खोल दी।
14: याद रहे, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
9: सेहत जो हर एक इंसान सुन बुनियादी हक, मगर आज तो यह सफर वारियन लुकन खतर मुश्किल। दूर दराज इलाकन मज हॉस्पिटल तो सही मालूमात हिंस कमी, यम चीज छ रुकावट बनान तो जरूरी इलाज इथी रोजान। मगर वन छ अत हल JK सेहत ऐप, यह तुहद डिजिटल साथी जो सेहतस मुताबिक कुन तो जरूर तो ख्याल थवान। यह ऐप एंड्रॉइड तो आईफोन दुश्वनी मज दस्तियाब। यथ ऐप मज डॉक्टर सिंस अपॉइंटमेंट बुकिंग, नजदीकी हॉस्पिटल झांडन, ऑनलाइन सलाह तो मेडिकल रिपोर्ट्स हाविन, AI सिम्टम चेकर चैटबॉट, एम्बुलेंस बुक करें, दवाहन इस अवेलेबिलिटी चेक करें, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स चेक करें, ब्लड बैंक की मालूमात, सरकारी हेल्थ

0: की मन है जानकारी बेचे आसित प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस ते अवेलेबल चाहे तु मरीज डॉक्टर स्टूडेंट या अख साध शहरी छो जेके सेहत छो सारनी सिंपल सेफ ते सिर्फ तोहे खतरे
1: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नेशनल हेल्थ मिशन जेएनके।
2: शर्मीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात मुनक्किद कराने की मांग खासे वक्त से हो रही है। लोग चाहते हैं कि जमहूरियत को बुनियादी सतह पर फाल और मजबूत बनाने के संजीदा इकदाम किए जाएं और इस गरज से पंचायती इदारों का कयाम नागुजीर है। तवक्कु की जा रही है कि आइंदा चंद माह के दौरान जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। ये भी तवक्कु है कि पंचायतों को तामीर तरक्की के लिए खफी रुकूमात मैसर कराई जाएंगी ताकि गांव देहात में खुशहाली का एक नया दौर शुरू हो। इसी दौरान आज पंचायती राज की मरकजी वजारत ने SKICC श्रीनगर में सेवा से समृद्धि उन्वान के तहत एक रोजा वर्कशॉप का एहतमाम किया। वर्कशॉप में जम्मू कश्मीर के अलावा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और कर्नाटक से आए नुमाइंदों ने शिरकत की। वर्कशॉप की इफ्तिताही तकरीब में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बतौर मेहमान खसूसी जबकि देही तरक्की के वजीर जावेद अहमद डार मेहमान जीविकार की हैसियत से मौजूद थे। एक रिपोर्ट के साथ इमरान नायकू।
3: वजारत पंचायती राज हुकूमत हिंद की जानिब से आज शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर SKICC श्रीनगर में सेवा से समृद्धि पंचायतों के जरिए अवामी खिदमात की फराहमी के उनवान से एक इलाकाई वर्कशॉप का इनेकाद किया गया जिसका मकसद पंचायतों के जरिए अवामी खिदमात की फराहमी को मजीद मुअस्सर बनाना, दही इलाकों में मयारी जिंदगी को बेहतर बनाना और निचली सतह पर अवाम दोस्त हुकुमरानी को फरोग देना था। इस वर्कशॉप का इनेकाद कॉमन सर्विस सेंटर, स्पेशल पर्पज वहीकल, वजारत इलेक्ट्रॉनिक्स व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और महकमा दही तरक्की व पंचायती राज जम्मू कश्मीर के इश्तराक से किया गया। वर्कशॉप में जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले पंचायती नुमाइंदों, मुंतखब अवामी नुमाइंदों, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स, सरकारी अफसरान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, माहिरीन तालीम और दही तरक्की से वाबस्ता इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। वर्कशॉप का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि पंचायती राज इदारे निचली सतह पर जमहूरियत को मजबूत बनाने, अवामी शमूलियत को फरोग देने और दही तरक्की को नई समत देने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पंचायतों को माली और इंतजामी इख्तियार देने, अवामी नुमाइंदों को बेपा इख्तियार बनाने और शराखती मनसूबा बंदी को फरोग देने से दही तरक्की को नई रफ्तार मिली है। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में डिजिटल गवर्नेंस के मैदान में नुमाया पेशरफ्त हुई है। उन्होंने बताया कि साल 2020 में जहां चंद दर्जन ऑनलाइन अवामी खिदमात दस्तियाब थी वहीं आज इनकी तादाद 1100 से तजावज कर चुकी है जबकि 98% से ज्यादा पंचायतें डिजिटल तौर पर मुंसलिक हो चुकी है। मौसूफ एलजी ने कहा कि बैक टू विलेज और ब्लॉक दिवस जैसे इकदामात से शफाफियत, जवाबदेही और अवामी शिकायत के इजाले के निजाम को मजीद मजबूत बनाया गया है। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मजबूत पंचायती राज इदारे विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदाई ताबीर करने में कलीदी किरदार अदा करेंगे और इसके लिए अवामी शिरकत, जदीद टेक्नोलॉजी और मकामी इख्तियारात को फरोग देना जरूरी है। इस मौके पर दही तरक्की व पंचायती राज के वजीर जावेद अहमद डार ने अपने खिताब में कहा कि जम्मू कश्मीर में डिजिटल गवर्नेंस पंचायतों को बाइख्तियार बनाने और आवाम दोस्त खिदमात की फराहमी के मैदान में नुमाया कामयाबी हासिल की है। उन्होंने वजारत पंचायती राज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस नवीयत की वर्कशॉप तजुर्बात के तबादले और बेहतर हुक्मरानी के फरोग में अहम किरदार अदा करती हैं। उन्होंने कहा कि बाइख्तियार पंचायतें अवामी शमूलियत और मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के दरमियान बेहतर तालमेल, दही तब्दीली और जामे तरक्की के लिए नागुरीज हैं। मौसूफ वजीर ने इस अजम का इरादा किया कि हुकूमत पंचायतों और मुंतखब नुमाइंदों को मजीद मजबूत बनाकर पायदार तरक्की और विकसित भारत के विजन को हकीकत का रूप देने के लिए काम जारी रखेगी। वजारत पंचायती राज के सेक्रेटरी विवेक भरद्वाज ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी निचली सतह पर हुक्मरानी के अंदाज को बदल रही है और पंचायतें अब सिर्फ रिवायती इंतजामी इदारे नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए मुख्तलिफ अवामी खिदमात फराहम करने वाले मुतहरिक इदारों में तब्दील हो रही है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी पर मबनी इकदामात से हुकूमती अमल को आसान, शफाफ और अवामी शराकत पर मबनी बनाया जा रहा है। उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली ग्राम पंचायतों और कॉमन सर्विस सेंटरों की खिदमात को भी सराहा और कहा कि ये इदारे दही इलाकों

0: आम लोगों को अपील की है कि वो मर्ज रजिस्ट्रेशन में अपना नाम रजिस्टर करें ताकि बाकी इस मर्ज के शिकार लोगों को भी जिंदा रहने में आसानी हो सके और हम लोगों को भी दूसरे की मदद करने का मौका मिल सके। उन्होंने कहा कि अनकरीब मर्ज रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक सिक्किम्स वेबसाइट पर दस्तियाब होगी। इस मौके पर क्लिनिकल हीमाटोलॉजी के सरबरा प्रोफेसर सजाद गिलानी ने ट्रांसप्लांट में शामिल मुख्तलिफ शोबों की मुश्तरका कावशों को उजागर करते हुए कहा कि आम लोगों को भी इसके लिए आगे आना चाहिए। प्रोफेसर सजाद गिलानी ने सरकार से गुजारिश की है कि वो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी आयुष्मान के दायरे में रखे ताकि गरीब मरीज भी आसानी के साथ इसका फायदा उठा सके। इस दौरान ट्रांसप्लांट हुए बच्चे के बाप ने सिक्किम इंतजामिया डायरेक्टर और खास तौर पर हीमाटोलॉजी शोबे के सरबरा प्रोफेसर सजाद गिलानी, डॉक्टर आफाक अहमद खान, डॉक्टर रेशमा रोशन और इस शोबे के तमाम डॉक्टर साहिबान और स्टाफ का शुक्रिया अदा किया।
1: पोलैंड के रजाकार ने कश्मीर के 3 साल बच्चे के लिए स्टेम सेल का दिया और बच्चे की जान यूं बच गई। अकरमुल हसन की रिपोर्ट आपने सुनी। जिले कुलगाम में सड़क के 2 अलग-अलग हादसात में 1 शख्स जान बहक जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। पहला हादसा खड़वनी बाईपास पर पेश आया जहां एक टाटा मोबाइल और स्विफ्ट गाड़ी के दरमियान टक्कर हुई। हादसे के नतीजे में स्विफ्ट कार में सवार 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों की शनाख्त सुहैब और इफ्तिखार अहमद साकिनाने लखीमपुर उत्तर प्रदेश के तौर पर की गई है। उधर काजीगुंड के वाईकेपुरा इलाके में कल शाम एक अलमनाक सड़क हादसे में 55 साल शख्स हलाक हो गया। इत्तिलात के मुताबिक गुल मोहम्मद इत्तू वालिद अब्दुल रहीम इत्तू एक गाड़ी की टक्कर से शदीद जख्मी हो गया। उन्हें फौरी तौर पर इमरजेंसी अस्पताल काजीगुंड मुंतकिल किया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। शेरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा।
2: आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दे इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, फोन नंबर 9419000025।
3: मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स।
4: घर का एसी हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
5: अरे ये सेवाराम की दुकान बंद क्यों है?
6: बंद नहीं, मिलावट करता था, किसी ग्राहक ने माल की जांच करवा दी।
7: जी हाँ, नए खाद्य कानून के तहत हर एक को अधिकार है मिलावटी खान पान वस्तुओं की लेबोरेटरी से टेस्ट करवाने का। पकड़े जाने पर मिलावट खोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
8: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.fssai.gov.in पर।
9: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
10: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
11: सेहत चु हर एकिस इंसान सुन बुनियादी हक, मगर आज तो चु सफर वारियन लुकन खतर मुश्किल। दूर दराज इलाकन मज हॉस्पिटल तो सही मालूमातन हिस कमी, यम चीज चु रुकावट बनान तो जरूरी इलाज चु इत्थी रोजान। मगर वन चु अत हल JK सेहत ऐप, यह तुहुंद डिजिटल साथी जो सेहतस मुताबिक कुन तो जरूर तो ख्याल चु थावान। यह ऐप चु एंड्रॉइड तो आईफोन दोशवनी मज दस्तियाब। यात ऐप मज चु डॉक्टर सिंस अपॉइंटमेंट बुकिंग, नजदीकी हॉस्पिटल छांडुन, ऑनलाइन सलाह तो मेडिकल रिपोर्ट्स हाविन, AI सिम्टम चेकर चैटबॉट, एम्बुलेंस बुक करें, दवाहन इस अवेलेबिलिटी चेक करें, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स चेक करें, ब्लड बैंक च मालूमात तो सरकारी हेल्थ स्कीमन हिस जानकारी। बेचे अत सित प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस तो अवेलेबल, चाहे तुम मरीज डॉक्टर स्टूडेंट या अख साध शहरी छो। JK सेहत चु सारनी सूत, सिंपल सेफ तो सिर्फ तुहे खतर।
12: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नेशनल हेल्थ मिशन J&K।
1: जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन, आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। MLA त्राल रफीक अहमद नायक ने आज सोफी गुंड आरिपल और दीगर मुतासरा

हालात का दौरा किया, जहां पिछले दिनों होने वाली शदीद जालबारी के नतीजे में मेवे बागात और धान की पनीरी को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। दौरे के दौरान उन्होंने मुतासर किसानों से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और नुकसान का जायजा लिया। इस मौके पर रफीक अहमद नायक ने कहा कि हालिया जालबारी से किसानों को भारी माली नुकसान झेलना पड़ा है, लिहाजा इस कुदरती आफत को कौमी आफत करार दिया जाना चाहिए ताकि मुतासर किसानों को मुनासिब और खातिरखा मुआवजा फराहम किया जा सके। इधर सिविल सोसाइटी पट्टन की एक अहम मीटिंग सिविल सोसाइटी पट्टन के चेयरमैन सलीम फारूक वानी की सदारत में मुनाकिद हुई, जिसमें पट्टन अस्पताल में नस्बशुदा डायलिसिस यूनिट को एक साल गुजरने के बावजूद फाल न बनाए जाने पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। इजलास

0: से यूनिट को पानी की फराहमी नहीं हो पा रही है, जिसके बायस ये अहम तिब्बी सहूलत अब तक आवाम के लिए दस्तयाब नहीं हो पाई है। सिविल सोसाइटी पटन के अराकीन ने महकमे से मुतालबा किया कि डायलिसिस यूनिट को फौरी तौर पर पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि ये फाल हो सके और गुर्दों के आर्जे में मुबतला मरीजों को इस सहूलत से मुस्तफीद होने का मौका मिल सके। इधर आंगनवाड़ी वर्करों ने अपने देरी ने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए हुकूमत से अपील की है कि उनके मसाइल को मजीद आखिर के बिना हल किया जाए। एहतजाज के दौरान जरा इबलाग से गुफ्तगू करते हुए आंगनवाड़ी वर्कर्स की सदर फहमीदा अख्तर ने कहा कि मुल्क की दीगर रियासतों में आंगनवाड़ी वर्करों को माहाना 10,000 रुपये या इससे ज्यादा का एजाजिया दिया जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर की आंगनवाड़ी वर्करों को इस सहूलत से महरूम रखा गया है, जो कि इम्तियाजी सलूक के मुतरादिफ है। उन्होंने आंगनवाड़ी वर्करों की जेर इल्तवा तनख्वाहों की फौरी अदायगी का मुतालबा करते हुए कहा कि तनख्वाहों में ताखीर के बायस कारकुनान शदीद माली मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और अब रुख करते हैं पुंछ जिले का। समीन, पुंछ जिले के कई देहात में जल जीवन मिशन की अमलावरी सुकमज़दा बताई जाती है। मौसूल इतिलात के मुताबिक जल जीवन मिशन के तहत पुंछ जिले के मुख्तलिफ देहात में दरदस्त लिए गए प्रोजेक्ट या तो सिरे से ही शुरू नहीं हो पाए हैं या फिर तामीर के अलग अलग मरहलों में मौलक हो चुके हैं। नतीजा ये कि मुतल्लिक देहात की आबादी पीने के पानी के हुसूल में गुनागु परेशानियों का सामना कर रही है। एक रिपोर्ट के साथ पुंछ से केडी मैनी।
1: अगरचे जल जीवन मिशन को नाफुल अमल लाए हुए 3 बरस से ऊपर हो गए हैं और लोगों को उम्मीद थी कि पानी की फराहमी को अब यकीनी बना लिया जाएगा और गाँव व कस्बों में पानी की किल्लत पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन जमीनी सतह पर आज भी गाँव में लोगों को पानी की कामयाबी या फिर नायाबी का सामना है। ये भी देखा गया है कि जल जीवन मिशन की उम्मीद में लोगों ने रवायती चश्मों की तरफ ज्यादा तवज्जो न दी और अब उनके छोटे सूख चुके हैं, जिसके बायस लोगों को आबाई इलाकों से दूर नालों और दरियाओं के किनारे मुंतकिल होना पड़ रहा है। ऐसा ही कबायली लोगों का गाँव डिंगला भी है। इस गाँव के लिए 3 बरस कबल जल जीवन मिशन के तहत जनयाद डिंगला स्कीम मंजूर हुई थी, जिस पर काम भी शुरू हुआ, जहां 4 वाटर टैंक बनाने मकसूद थे और इस स्कीम के तहत डिंगला के साथ वाकया जनयाद गांव में भी पानी फराहम करना था। इसी दौरान किसी मसलहत के तहत गांव डिंगला जनयाद के लिए जल जीवन स्कीम से मंजूर शुदा रकम का बेहतर हिस्सा जनयाद में ही खर्च कर दिया गया, जबकि डिंगला गाँव में सिर्फ 1 वाटर टैंक बनाने के बाद काम को अधूरा छोड़ दिया गया। लोग महकमा के एहलकारों से मिलते हैं तो बताया जाता है कि फंड खत्म हो चुके हैं और इंतजार करो। उधर गांव में जो मकानी चश्मे हुआ करते थे वो भी अब बेतवजी का शिकार होकर सूख गए हैं। नतीजा ये हुआ कि डिंगला गांव के 9 वार्डों में से सिर्फ 3 वार्ड जो जमियाड में पड़ते हैं उनको छोड़कर बाकी गाँव में लोगों को पानी तो नहीं मिला, सिर्फ तसलियां मिलती रहती हैं, लेकिन पानी की नायाबी से तंग आकर अब आबादी का बेहतर हिस्सा दरियाए पुंछ के आसपास मुंतकिल हो रहा है। इन हालात में मुतासरा अवाम शहरबीन की विसात से हुक्काम बाला से मुल्तवित हैं कि डिंगला गांव में पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि दरियाए पुंछ के किनारों पर राज करने के बजाय गांव के लोग गांव के मकीन अपने घरों में मुंतकिल हो सके।
0: पुंछ से केडी मैनी की रिपोर्ट आपने सुनी। जिले कुपवाड़ा की द्रंगियाली गजरियाल वाटर सप्लाई स्कीम 8 साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो पाई है, जिसके बायस इलाके की एक बड़ी आबादी पीने के पानी की सहूलत से महरूम है। मकामी आबादी के मुताबिक महकमा हर साल स्कीम की तकमील के दावे करता है, ताहम जमीनी सतह पर पेशरफ्त न होने के बराबर है। सूरत हाल यह है कि गजरियाल के बाज इलाकों को 1 नाले से पीने का पानी फराहम किया जाता था, लेकिन अब वही पानी धान के खेतों की आबपाशी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इलाके के लोगों का कहना है कि गनाई मोहल्ला मुकम्मल तौर पर पानी की फराहमी से महरूम है। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि द्रंगियारी गजरियाल वाटर सप्लाई स्कीम को जल्द फाल बनाने के लिए हंगामी इकदाम किए जाएं। हजरत बाबा जान मोहम्मद नक्शबंदी मुजद्दी रहमतुल्लाह अलैह का 79वां उर्स शरीफ आज 23 जून से शुरू होकर 25 जून को मुकम्मल होगा। उर्स की सबसे बड़ी तकरीब 25 जून को उनके आस्थाने आलिया सतबून दर्दपुरा कुपवाड़ा में मुनाकिद होगी। उर्स के सिलसिले में खत्मात मौजमात जिक्र अजगार और दुरूद सलाम की मजालिस मुनक्किद हो रही हैं। उर्स के दौरान हजरत बाबा जान मोहम्मद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मीर आलम नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की हयात व खिदमात पर मुश्तमिल एक किताब की रस्म रुनमाई भी अंजाम दी जाएगी। इधर खान साहब बड़गाम में हजरत सैयद सोलह खान साहब का 3 रोजा सालाना उर्स आज اختتام کو پہنچا، جس میں وادی کے مختلف علاقوں سے آئے ہزاروں عقیدت مند

0: ने शिरकत की। उर्स के दौरान दुरूद अज़कार और दुआए मजालिस का एहतमाम किया गया। ज़ायरीन ने अमन, खुशहाली और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। इख्तितामी तकरीब में साबिक वजीर और पीडीएफ के सदर हकीम मोहम्मद यासीन और ट्रस्ट के चेयरमैन हकीम मोहम्मद अशरफ ने शिरकत की। उन्होंने उर्स के कामयाब इनाकाद के लिए जिला इंतजामिया, पुलिस और दीगर महकमों का शुक्रिया अदा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक जनरल सेक्रेटरी और साबिक रियासती वजीर गुलाम मोहीउद्दीन शाह की अहलिया इंतकाल कर गई हैं। मरहुमा साबिक एमएलए बटमालू इरफान अहमद शाह की वालिदा थीं। उनकी वफात पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉ फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर और वजीर आला उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दीगर कई लीडरान ने गहरे रंज का इजहार करते हुए सुगवार खानदान से ताजियत की है। इधर आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से वाबस्ता एडिटोरियल एग्जीक्यूटिव सुहेल अहमद भट्ट के वालिद नस्बती शेख अब्दुल मजीद आज दोपहर इंतकाल कर गए। वो वादी के मारूफ प्लास्टिक सर्जन डॉ शेख तारिक के वालिद थे। शोबे खबर के सरबरा इशफाक अहमद शाह की सदारत में आज एक ताजियती मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसमें सुहेल अहमद भट्ट के साथ ताजियत का इजहार किया गया और मरहूम की जन्नत नशीनी के लिए दुआ की गई। वाजिर है कि ताजियत 3 दिन यानी 25 जून तक उनकी रिहायशगाह वाक़ हमजा कॉलोनी लेन नंबर 3 लाल बाजार में जारी रहेगी। इज्तमाई फातिहा खानी जुमेरात 25 जून को सुबह 9:30 बजे उनके आबाई मकबरे पर अंजाम दी जाएगी। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरान समीना शाह को इजाजत दें। खुदा हाफिज।
1: शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताबुन कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट, अपने तामीरात दिल से बनाइए। शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताबुन शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ
2: आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दे इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, फोन नंबर 9419000255।
3: मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग।
4: घर का एसी हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
5: अरे ये सेवाराम की दुकान बंद क्यों है?
6: बंद नहीं, मिलावट करता था, किसी ग्राहक ने माल की जांच करवा दी।
7: जी हाँ, नए खाद्य कानून के तहत हर एक को अधिकार है मिलावटी खान पान वस्तुओं की लेबोरेटरी से टेस्ट करवाने का। पकड़े जाने पर मिलावट खोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
8: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.fssai.gov.in पर।
9: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
10: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
11: सेहत चु हर एक इंसान सुन बुनियादी हक, मगर आज तक यह सफर वारियन लुकन खतर मुश्किल। दूर दराज इलाकन मज हॉस्पिटल तो सही मालूमात हिंस कमी, यम चीज चु रुकावट बनान तो जरूरी इलाज चु इत्थी रोजान। मगर वन चु अत हल JK सेहत ऐप, यह तुहंद डिजिटल साथी जो सेहतस मुताबिक कुन तो जरूरत ख्याल चु थावान। यह ऐप चु एंड्रॉइड तो आईफोन दोशवनी मज दस्तियाब। यात ऐप मज चु डॉक्टर सिंस अपॉइंटमेंट बुकिंग, नजदीकी हॉस्पिटल छांडुन, ऑनलाइन सलाह तो मेडिकल रिपोर्ट्स हाविन, AI सिम्टम चेकर चैटबॉट, एम्बुलेंस बुक करिन, दवाहन हिज अवेलेबिलिटी चेक करिन, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स चेक करिन, ब्लड बैंक च मालूमात तो सरकारी हेल्थ स्कीमन हिज जानकारी। बेचे अत सित प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस तो अवेलेबल, चाहे तुम मरीज, डॉक्टर, स्टूडेंट या अख साध शहरी छु। JK सेहत चु सारनी सूत, सिंपल, सेफ तो सिर्फ तुहे खतर।
12: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नेशनल हेल्थ मिशन JNK।
13: आदाब, یہ چھ آکاش وانی سری نگر خبرن ہند بلٹن ہوں بہ محمد اکبر گڈ اہم خبرن پہ اخ نظر صدر جمہوریہ کر ورث 2017 باپت

0: साथ में संजीव कुमार, पहले अहम खबरों की सुर्खियां। सदर जमहूरिया के हाथों दूसरे मरहले के तहत 2026 के पदम एजाजात तफवीज, अवार्ड याफ्तगान में जम्मू कश्मीर के ब्रिजलाल भट्ट भी शामिल। वजीर आजम ने अफसरों को अपनी ताजा दम सोच और जोश खरोश से विकसित भारत 2047 का ख्वाब पूरा करने में अपना रोल अदा करने की दी सलाह। कौमी ई खिदमत की फराहमी में जम्मू कश्मीर अव्वल नंबर पर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने SKICC में सेवा से समृद्धि वर्कशॉप से किया खिताब। और राबिता प्रोजेक्टों की पूरे मियार के साथ बरवक्त तकमील यकीनी बनाने पर वजीर आला का जोर। अब पेश है खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में दूसरे मरहले के तहत साल 2026 के पदम एजाजात तफवीज किए। आज की तकरीब में मजमू तौर पर 65 पदम एजाजात तकसीम किए गए, जिनमें 2 पदम विभूषण, 7 पदम भूषण और 56 पदमश्री एजाजात शामिल हैं। दूसरे मरहले में ये अवार्ड पाने वालों में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले ब्रिजलाल भट्ट भी शामिल हैं, जिन्हें ये अवार्ड समाजी खिदमत की अंजामदेही के सिले में दिया गया। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने पदम एजाजात हासिल करने वाले सभी मुअज्जज शख्सियात को मुबारकबाद पेश करते हुए उनके तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें अपने अपने शोबों में बेहतर से बेहतर काम जारी रखने की सलाह दी। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके शहीदी दिवस पर खराज अकीदत पेश करते हुए उन्हें एक नामवर माहिर तालीम, मुजाहिद आजादी और दूर अंदेश रहनुमा करार दिया है। PM ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कुर्बानी हमारी इज्तिमाई यादाश्त में महफूज है और हम उनके ख्वाबों का भारत तामीर करने के लिए पुरअज़्म हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने भी डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत अदा करते हुए कहा कि दफा 370 की मनसूखी से उनके नजरिए की तकमील हुई है। नई दिल्ली में अनजानी की बरसी के ताल्लुक से मुनाकिदा एक तकरीब से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुल्क के इतिहाद और सालमियत की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। इधर प्रदेश BJP की तरफ से भी डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की खिदमत को याद करते हुए उन्हें शानदार खराज अकीदत अदा किया गया। इस सिलसिले में टाइगर हॉल श्रीनगर में मुनाकिदा एक तकरीब पर प्रदेश BJP सदर सत शर्मा, कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉ दरकशां अंद्राबी ने अनजानी को शानदार खराज अकीदत अदा किया। अनजानी के बलिदान दिवस के सिलसिले में BJP की तरफ से जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों में कई मकामात पर प्रोग्राम मुनक्कद किए गए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अफसरों पर जोर दिया है कि वो अपनी ताजा दम सोच और जोश खरोश से विकसित भारत 2047 के ख्वाब को पूरा करने में अपना किरदार अदा करें। आज 2024 बैच के 183 जेर तरबियत IAS अफसरों के साथ मुलाकात के दौरान वजीर आजम ने इन अफसरों पर जोर दिया कि वो अपने आप को कौम की तामीर के लिए वक्फ करते हुए इख्तरा और लोगों पर मरकूज गवर्नेंस के हुकूमत के नजरिए को तकवियत बख्शें। हुक्मरानी में डिजिटल गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के रोल को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि गुज़श्ता एक दहाई के दौरान भारत में गवर्नेंस निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियां हुई हैं। इन अफसरों ने फील्ड ट्रेनिंग और मुख्तलिफ वजारतों के साथ मुंसलिक रहने से मुतालिक अपने तजुर्बात बयान किए। भारत ने अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाई मफाहमती यादाश्त का खैर मकदम किया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स ममालिक के कौमी सलामती के मशीरों के 16वें इजलास से खिताब करते हुए कौमी सलामती के मशीर अजीत दवाल ने आबनाए हरमज के खुलने का खैर मकदम करते हुए कहा कि इससे सप्लाई चेन में हायल रुकावटें दूर होंगी।
1: India welcomes the MOU reached between the US and Iran. We have got cautious optimism and we hope that it will work. It will help energy security. Opening of the Strait of Hormuz is a very welcome development. It will remove supply chain bottlenecks and many of the shortages in the field of say, fertilizers and chemicals, etc. will be met with. And the freedom of navigation that will be available to the countries in the region and beyond probably will also greatly improve our economic prosperity.
0: इसी दौरान अमेरिका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में हुए मुजाकरात के बाद खाम तेल की आलमी कीमतों में आज नुमाया कमी देखी गई। रसद में मुमकिन रुकावटों के खदशात कम होने और ईरान से तेल की बरामदात में इजाफे की उम्मीद पैदा होने के बायस खाम तेल की कीमतें 3% तक गिर गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही में जम्मू कश्मीर में गवर्नेंस का निजाम गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान इंकलाबी

0: अकलेती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कल हज पॉलिसी 2027 का ऐलान किया। आज मुहर्रमुल हराम की 7 तारीख है। इस सिलसिले में आज वादी भर के इमाम बारगाहों, मसाजिद और खानकाहों में हुसैनी मजालिस का एहतमाम हो रहा है। कई इलाकों में आजादारी के जुलूस भी बरामद किए जा रहे हैं। हुसैनी मजालिस में अकीदतमंद मरसिया खानी और नवाखानी करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। इस दौरान रियाजत टेंक खानियार में योम आशूरा की मुनासिबत से मुनाकिदा एक पुरवकार तकरीब में आशकान अहल बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। उधर कई मकामात पर रजाकारों की जानिब से सबीलें लगाई गई हैं, जहां से राहगीरों को पानी और दीगर मशरूबात पिलाए जा रहे हैं। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज श्रीनगर ने खून के जदीद तरीन इलाज से मुतालिक एक अहम संग मील हासिल किया है। इदारे में हेमोफैगोसाइटिक लिम्फोहेस्टियोसाइट्स के मोहलिक मर्ज में मुबतला एक हेमटोपोइटिक सिस्टम सेल ट्रांसप्लांटेशन किया गया। इस पेशरफ्त पर शोभा क्लिनिकल हेमाटोलॉजी को मुबारकबाद पेश करते हुए डायरेक्टर सिकिम्स प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई ने हमारे नुमाइंदे एन ए इशरत से बात करते हुए कहा,
1: ये जो मैच्ड अनरिलेटेड डोनर वाला प्रोविजन है, इसमें हमारी सोसाइटी से लोग रजिस्टर करें, ताकि अगर दुनिया में कहीं भी ऐसी जरूरत पड़ेगी किसी पेशेंट को, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो और हमारा मैरो, हमारी सिस्टम सेल उसके काम आ जाए, उसकी लाइफ बचाए, तो इससे ज्यादा कोई अचीवमेंट नहीं है। पोलैंड से लेके बंदा यहाँ आया और हमारे एक्सपर्ट टीम ने उसका फायदा उठा के एक बच्चे की जान बचाई, और वो भी बहुत कम पैसे से स्किम्स फोरफ्रंट में आना चाहता है। और ट्रांसप्लांट का सारा सिस्टम, नॉट ओनली बोन मैरो, किडनी, हार्ट, लिवर, लंग और दूसरे ट्रांसप्लांट्स में भी आगे इसको इंशाल्लाह 1-2 साल में हम पूरे इस स्कीम को रोबस्ट बनाएंगे।
0: मरीज के वालिद ने इस कामयाब ट्रांसप्लांटेशन के बारे में इत्मीनान का इजहार करते हुए अपने जज्बात का इजहार कुछ यूं किया।
2: मेरा नाम मोहम्मद अशरफ शेख है, आई एम फ्रॉम सफापुरा मॉन्सबल। मेरा एक बच्चा है जो HLS में मुबतला था। एक्चुअली मेरे पहले, इससे पहले एक बेटी थी, वो भी तकरीबन 40 डेज इधर हॉस्पिटल में रही है, उसको भी यही HLS था। उसकी डेथ हो गई है, क्योंकि उस टाइम इतना एडवांस ट्रीटमेंट नहीं था इसका। फिर जब ये दूसरा बच्चा मेरा आया तो ये तकरीबन 12 मंथ्स ठीक था। 12 मंथ्स के बाद मैंने इसका टेस्ट करवाया तो ये भी HLS निकला। फिर मैं बाहर भी गया, हर जगह गया मैं। उसके बाद मैंने रेशमा मैम का नाम सुना है इधर, कि वो इसके लिए बहुत काबिल जानी जाती है, तो फिर मैं इनके पास आया। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और जो पोलैंड का जो डोनर है उसका भी मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, आज तो बच्चा ठीक हो गया है।
0: आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से वाबस्ता एडिटोरियल एग्जीक्यूटिव सुहेल अहमद भट्ट के वालिद नस्बती शेख अब्दुल मजीद आज दोपहर इंतकाल कर गए। वो वादी के मारूफ प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर शेख तारिक के वालिद थे। शोबे खबर के सरबराह अशफाक अहमद शाह की सदारत में आज एक ताजियती मीटिंग मुनक्द हुई, जिसमें सुहेल अहमद भट्ट के साथ ताजियत का इजहार करते हुए मरहूम की जन्नत नशीनी के लिए दुआ की गई। लवाकिन के मुताबिक ताजियत 3 दिन यानी 25 जून तक उनकी रिहाइश गाह वाका हमजा कॉलोनी लेन नंबर 3 लाल बाजार श्रीनगर में जारी रहेगी। इज्तिमाई फातह खानी जुमेरात 25 जून को सुबह 9:30 बजे उनके आबाई मकबरे पर अंजाम दी जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर कश्मीर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार आवाम की बेलोस खदमत जारी रखेगी। श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक्दा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की आवाम दोस्त हुक्मरानी से हमारे मुखालफीन बौखलाहट का शिकार हुए हैं। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा ने रवा साल के दौरान एक अहम संग मील तय किया है, जहां 22 जून तक माता के दर्शन पर आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद ने 50 लाख का हिंसा पार कर लिया। इस सिलसिले में वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जानिब से जारी करदा रिलीज के मुताबिक आज तक माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वालों की असल तादाद 50,70,000 तक पहुंच गई है। खान साहब बड़गाम में सैयद सालेह खान साहब रहमतुल्लाह का 3 रोजा उर्स आज इख्ताम पजीर हुआ। उर्स के आखिरी रोज हजारों अकीदतमंदों ने उनकी दरगाह पर हाजिरी देकर दुरूद अजकार और खतमातुल मौजमात की मजालिस में हिस्सा लिया। वुलर कल्चरल फोरम की जानिब से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मधुबन में आज एक महफिल मुशायरा का इनेकाद हुआ। मुशायरे में इलाके के दर्जनों शुरा ने शिरकत करके सामईन को अपने कलाम से महजूज किया। जम्मू कश्मीर को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शदमत से जारी हैं। मनशियात के खिलाफ LG का पैगाम,
3: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड, आधार नंबर اس کے

0: ड्राइवर्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: इस बिदत पर काबू पाने के लिए दरकार इकदाम और लोगों की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से एक सीनियर लेक्चरर गुलजार अहमद राथर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: मैं नौजवानों से मोटिवाना गुजारिश है कि वो इन चीजों का इस्तेमाल ना करें, इन चीजों से आप परहेज करें। साथ में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो भी इंस्टीट्यूशन है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो हमारे जो एंड कश्मीर के पुलिस डिपार्टमेंट है जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनकी पुलिसिंग से और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के इंटरवेंशन से, जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स है मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके इंटरवेंशन से जब हम नहीं करेंगे तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह हम इससे निजात पा ही लेंगे।
1: आखिर पर मौसम, महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 29.5 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 14.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 31 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 5:21 और गुरुब आफ्ताब शाम 7:46 पर होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
3: समईन आदाब, आज का तबसरा लिए मैं शबीर उज़्ज़मा। ईरान और अमेरिका के दरमियान स्विट्जरलैंड में हालिया जंगबंदी के बाद कतर और पाकिस्तान की सालसी में बातचीत का पहला दौर खुश असलूबी से इख्तिताम पजीर हुआ है। भारत समेत आलमी मईशत और आलमी अमन के लिए बातचीत का ये दौर उम्मीद अफजा रहा है। इससे पहले दोनों मुल्कों ने तवील सिफारतकारी के बाद, जिसमें सालसों का कलीदी रोल रहा 107 रोजा जंग के खात्मे के लिए मफाहमत की एक यादाश्त पर पिछले हफ्ते दस्तखत किए थे। मफाहमत की इस यादाश्त में जंग खत्म करने और 60 दिनों में मुजाकरात के जरिए बाहमी मसाइल का सिफारती हल ढूंढने पर इत्तेफाक किया गया था। ये बात सभी जानते हैं कि फरवरी में अमेरिका और इसराइल के ईरान पर फजाई हमले शुरू किए जाने से खित्ते में जबरदस्त जंग छिड़ गई थी और ईरान की जवाबी कार्रवाइयों से इस अहम खित्ते में तश्वीशनाक सूरत हाल पैदा हो गई थी। इसी खित्ते में आबनाए हरमुस से दुनिया के 20% तेल और गैस की नकलो हमल होती है और ये नकलो हमल मजदूद हो जाने से पूरी दुनिया में माशी बुहरान पैदा होने लगा था और रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हो रही थी। इब्तदाई समझौते में हर महाज पर मुकम्मल जंगबंदी, आबनाए हरमुज को बहरी नकल हमल के लिए फौरी तौर पर खोले जाने और ईरान पर अमेरिका की तरफ से आयद बहरी नाकाबंदी फौरी तौर पर खत्म करने की बात कही गई है। साथ ही ये भी तय पाया है कि 60 दिनों के अंदर ईरान के जौहरी प्रोग्राम, ईरान पर आयद इक्तिसादी पाबंदियां हटाने और ईरान के मुंजमिद असासे वागुजार करने जैसे मामलात पर हतमी मुआहिदा करने के लिए बातचीत होगी। फरीकैन में बातचीत के पहले दौर से कबल ही इसराइल की तरफ से जनूबी लिबनान में खून रेज फौजी कार्रवाइयों पर मनाकशा खड़ा हुआ और इस कशीदगी की वजह से स्विट्जरलैंड में बातचीत के इस पहले दौर के निकाद में अड़चने पैदा हो गई थीं। अब जबकि बातचीत का ये दौर न सिर्फ मुनक्कद हुआ है बल्कि मुस्बत अंदाज से आइंदा मुजाकरात के लिए नक्शराह तैयार करके मुकम्मल हुआ है, फरीकैन के दरमियान हतमी मुआहदे की उम्मीद बढ़ गई है। बातचीत के पहले दौर के बाद अब आबनाए हरमुज जहाजरानी के लिए खुल गई है और अमरीका ने ईरान की तेल की बरामदात पर पाबंदियां 60 दिनों के लिए हटाई है। ये दोनों बातें खित्ते और आलमी मईशत के लिए मुस्बत हैं। ताहम मुजाकरात के आगे बढ़ने के ताल्लुक से लिबनान की सूरतहाल पर सबकी नजर रहेगी। देखना ये होगा कि अमरीका इसराइल को लिबनान में फौजी कार्रवाइयां रोकने के सिलसिले में किस कदर मुअसर साबित होता है। दूसरा अहम नुक्ता ईरान के जौहरी प्रोग्राम का मुस्तकबिल है। मुजाकरात के पहले दौर में अमरीकी वफद की कयादत करने वाले नायब सदर जेडी वैंस ने कहा है कि इन मुजाकरात में आइंदा बातचीत के लिए ठोस बुनियाद रखी गई है। एक अहम पेशरफ्त में स्विट्जरलैंड मुजाकरात से पहले ईरानी वफद की वतन वापसी के फौरन बाद ईरान के सदर का आज इस्लामाबाद का दौरा हुआ। यूं सालसी का किरदार अदा करने वाले पाकिस्तान के साथ ईरान की आला सतह पर बातचीत जारी रहेगी। ख्याल किया जाता है कि लिबनान में जंगबंदी और ईरान की तरफ यूरेनियम की अफजूदगी इस बातचीत के भी कलीदी जूज रहेंगे। उम्मीद की जा सकती है कि बातचीत और सिफारतकारी का ये सिलसिला कामयाबी के साथ आगे बढ़ेगा और इसकी बदौलत खित्ते में देरपा अमन और तरक्की की राह हमवार होगी। भारत समेत दुनिया भर के माशी इस्तेहकाम के लिए ऐसा होना बायस इत्मीनान होगा और इससे पूरी दुनिया की आबादी को राहत नसीब होगी। तबसरा खत्म हुआ, शब बखैर।
4: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो

0: तो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: आदाब सामीन, प्रोग्राम वादी की आवाज लेकर हम हाजिर खिदमत है। तमाम तारीफें उस रब कायनात के लिए हैं जो दिलों के हाल जानता है, जो हर शक, जो हर अश्क को देखता है और हर कुर्बानी का सिला देता है। दरूद व सलाम हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें वो दीन दिया जिसकी बुनियाद हक, इंसाफ और सब्र पर है।

आज सात मुहर्रम उल हराम है। आखिर सात मुहर्रम क्या है? सिर्फ एक तारीख नहीं, ये वो दिन है जब करबला की सरजमी पर जुल्म का दायरा और तंग किया गया। वो दिन जब नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके काफ़ले पर पानी बंद कर दिया गया। फुरात जो बहता था सब के लिए, वो अब नवासा रसूल के लिए रोक दिया गया। कैसा अंधेरा था, कैसा जुल्म था कि वो काफ़ला जो मदीने से सिर्फ दीन बचाने निकला था, उसके मासूम बच्चों तक को प्यासा रखा गया। अली असगर जो माँ की गोद में तड़प रहा था, सकीना जो बार बार पानी मांगती, कासिम, मोहम्मद, अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब प्यासे थे, सब बेहाल, और उनके दरमियान हुसैन अलैहिस्सलाम जो अपने रब की रज़ा में राज़ी थे। सामीन, आप तसव्वुर करें, एक खीमा जहां बच्चों की सिसकियां गूंज रही हो और एक माँ अपने लखते जिगर को पानी के कतरे के लिए तरसता हुआ देख रही हो। साथ

मुहर्रम को जब यजीदी फौज ने पानी बंद किया तो सिर्फ प्यास नहीं बंद हुई, इंसानियत का गला घोंटा गया। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, जिन्हें हम आज भी वफा की अलामत के तौर पर याद करते हैं, इसी दिन से फुर्रात के किनारे अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो गए। अब्बास अलैहिस्सलाम वो थे जिन्होंने पानी को देखा, मशकीज़ा भरा मगर खुद नहीं पिया। वो अपने लिए नहीं, बीबी सकीना अलैहिस्सलाम के लिए आए थे। उनके हाथ कट गए, मशकीज़ा टूट गया, मगर वफा सलामत रही। कुर्बानी दी लेकिन गैरत और वादा न तोड़ा। ये था अब्बास अलैहिस्सलाम का किरदार, ये था अहले बैत का मकाम। करबला कोई आम वाक़ नहीं, ये इंसानियत का कड़ा इम्तिहान था। सात मुहर्रम हमें ये सिखाता है कि दीन सिर्फ नमाज, रोज़ा या इबादत का नाम नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है, एक वादा है कि हम जुल्म के आगे झुकेंगे नहीं, चाहे हालात कितने भी सख्त हो जाए। हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने से मक्का और मक्का से करबला तक का सफ़र इसलिए तय नहीं किया कि उन्हें हुकूमत चाहिए थी, वो तो सिर्फ ये चाहते थे कि दीन की हकीकत बाकी रहे, कि हक और बातिल में फ़र्क वाज़ेह हो जाए, कि उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोई हुई है तो उसे जगाया जाए। आज हम करबला के मानने वाले हैं, लेकिन क्या हमारी जिंदगियों में करबला का रंग है? हम रोते तो हैं, सिया लिबास भी पहनते हैं, लेकिन क्या हमने हुसैन अलैहिस्सलाम से कुछ सीखा? क्या हमने अपने आप से पूछा कि अगर हम उस वक्त होते तो कहाँ खड़े होते? करबला हर साल हमें एक सवाल देता है, तुम हुसैनी हो या यजीदी? ये कोई जज्बाती नारा नहीं, ये एक अमली सवाल है। अगर हम सच्चाई से डरते हैं, अगर हम जुल्म देखकर खामोश रहते हैं, अगर हम अपने मफाद के लिए हक को छोड़ देते हैं, तो हम खुद सोच ले कि हमारा किरदार क्या है। सात मुहर्रम हमें ये सिखाता है कि सच के लिए प्यास, तपती रेत, बच्चों की सिसकियां सब बर्दाश्त की जा सकती है, मगर सर नहीं झुकाया जा सकता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें जीना सिखाया, झुककर नहीं बल्कि खड़े होकर जीना सिखाया। बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने हमें बोलना सिखाया, डर के नहीं हक के साथ बोलना। हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम ने हमें जवानी का मतलब सिखाया और अली असगर अलैहिस्सलाम ने हमें बताया कि शहादत की कोई उम्र नहीं होती। क्या आज हम अपनी ज़िंदगियों में इन अजीम हस्तियों की झलक देखते हैं? ज़मीन, आज हमें ये सोचना है कि अगर करबला हमारे दिलों में है तो हमारे एमाल में क्यों नहीं? अगर हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे रहनुमा हैं तो हमने उनकी राह को क्यों छोड़ा हुआ है? हमने सच बोलना कब तर्क किया? हमने हक का साथ देना कब छोड़ा? अगर आज किसी भी मजलूम के आंसू हमें नहीं रुलाते, अगर किसी मासूम की भूख या प्यास हमें हुसैन की याद नहीं दिलाती, तो हमने करबला से क्या सीखा? अगर हम अपने मफाद के लिए असूल कुर्बान कर रहे हैं तो हम यजीद को क्यों कोसते हैं? सामीन, आज सात मुहर्रम का दिन है। आज के दिन पानी बंद हुआ था, मगर साथ ही इंसानियत की आंखें खोलने वाली एक कुर्बानी की बुनियाद रख दी गई। आज हमें अहद करना है कि हम सिर्फ याद नहीं करेंगे बल्कि अमल भी करेंगे। हम अपने बच्चों को सिर्फ मातम करना नहीं सिखाएंगे बल्कि वफादारी, कुर्बानी और सच्चाई के अस्वाक देंगे। हम अपने घरों में सिर्फ नवहे नहीं चलाएंगे बल्कि ऐसे अमाल करेंगे कि हमारे किरदार से पता चले कि हम हुसैनी हैं। ये वो दिन है जब यजीदी फौज ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहल बैत पर पानी बंद कर दिया। फुरात के किनारे प्यास से भिलकते बच्चे, तड़पती हुई ख़वातीन और सब्र रज़ा की तस्वीर बने मर्द सब अपनी आँखों से जुल्म की इंतहा देख रहे थे। कोई शिकवा नहीं, कोई फरियाद नहीं, बस सब्र था, खामोशी थी और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, जिन्हें हम अलमदार करबला के नाम से याद करते हैं, इस दिन भी वफादारी की अजीम मिसाल बनकर सामने आए। वो फुर्रात तक पहुँचे मगर पानी पीने के बजाय मशकीज़े को भरकर वापस लौटे।
بازو

0: ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूडी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
3: अलिनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों

0: इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
1: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज, वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
2: रास लफान परियोजना में जो वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
1: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
2: ब्रिक्स NSA की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे NSA की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
2: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
1: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्से सेक बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट

0: www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात 1.84 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
1: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम वेव 1116 किलोहर्ट्ज़ और FM 103.5 MHz पर रात के ठीक 9 बजे हैं। आइए समाप्त करते हैं चंद नौहा। आगाज में नौहा खानी कर रहे हैं नफीस हिलोरी।

0: سمعین، آخر پر نوحہ خوانی کر رہے ہیں امتیاز احمد.
1: چٹھیاں

0: चंद नौहा आप समाप्त कर रहे थे आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से। रात के 8:15 हो रहे हैं। चंद ही लम्हों में हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली, जहां से आप उर्दू में खबरें समाप्त करेंगे। बस पल दो पल का इंतजार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक को मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी और साइबर सिक्योरिटी जैसे चैलेंजों से निपटने में ब्रिक्स का अहम रोल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने शहरी एजाज से मुतालिक दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड्स अदा किए। सहाफी पी नारायणन, टेनिस के सरकर्दा खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूती और आर माधवन और गुलूकारा अलका याग्निक पद्म अवार्ड हासिल करने वालों में शामिल हैं। हुकूमत ने कहा है कि वो एनिनो की वजह से कमजोर मानसून के असरात के इम्कान से निपटने के लिए किसानों की मदद की खातिर पेशगी तैयारियां कर रही है। इम्तिहानात के इनका से मुतालिक कौमी एजेंसी

0: NTA ने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान के नतीजे का ऐलान कर दिया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और मगरबी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लंदन में FIH प्रो लीग हॉकी के इफ्तिताही मुकाबले में भारत की मर्दों की हॉकी टीम ने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 3-4 से हरा दिया है। और फीफा आलमी कप में हॉस्टन में पुर्तगाल का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होने वाला है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि बदलते हुए आलमी मंजरनामे में सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक को मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी और साइबर सिक्योरिटी से लेकर उभरती हुई टेक्नोलॉजी से लाहक मुश्तरका चैलेंजों के इजाले की खातिर ब्रिक्स का इंतहाई अहम रोल है। वजीर आजम मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों और सिक्योरिटी के सीनियर अहदेदारान से मुलाकात की। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने इस बात को भी उजागर किया कि भारत की ब्रिक्स की सदारत में हकीकी इश्तराक में पेशरफ्त, आलमी खित्ते जनूब की तरजीहात की हिमायत और एक महफूज और ज्यादा शमूलियत वाली दुनिया के सिलसिले में इश्तराक को अहमियत दी जाएगी। वजीर आजम ने मोदी ने नागरिक देवो भव पर जोर दिया है और अफसरान से जोर देकर कहा है कि वो शहरियों को हुक्मरानी में मरकजी अहमियत दें। आज नई दिल्ली में 2024 बैच के IAS के उन 183 तरबियती अफसरान से बातचीत करते हुए जिन्हें मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में बतौर असिस्टेंट सेक्रेटरी मुंसलिक किया गया है, जनाब मोदी ने नौजवान सिविल सर्वेंट से जोर देकर कहा कि वो विकसित भारत @2047 की जानिब भारत के सफर की क्यादत करें। वजीर आजम ने मुल्क की तामीर में खवातीन के बढ़ते हुए रोल को ये कहते हुए उजागर किया कि मौजूदा बैच में 40% से ज्यादा खवातीन अफसर हैं। जनाब मोदी ने नौजवान अफसरों से कहा कि वो मुसलसल मुल्क की तामीर में अपने ताउन का जायजा लेते रहें और अपने ओहदों के बजाय अपनी कारकर्दगी से हासिल होने वाले नतायज से इत्मीनान महसूस करें। उन्होंने इस बात पर एतमाद का इजहार किया कि उनकी तवानाई, सलाहियत और खुद को वक्फ करने का जज्बा भारत को तरक्की की नई बुलंदियों तक ले जाने में एक अहम रोल अदा करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में शहरी एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता किए। मुल्क के आला तरीन शहरी एजाजात में से एक पद्म अवार्ड्स 3 जुमरों, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के तहत दिए जाते हैं। सहाफी पी नारायणन को अदब तालीम के जुमरे में पद्म विभूषण से नवाजा गया है, जबकि साबिक जज KT थॉमस को समाजी काम के लिए पद्म विभूषण से सरफराज किया गया है। पेश एक रिपोर्ट।
1: इस साल हुकूमत ने कुल 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड्स शामिल हैं। साबिक टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूथी और प्लेबैक्स गुलुकारा अलका याग्निक समेत 7 लोगों को पद्म भूषण से नवाजा गया है। सियासतदान शिबु सोरेन को बादअज़मर्ग पद्म भूषण दिया गया है। 57 अफराद को पद्मश्री अवार्ड से सरफराज किया गया है, जिनमें क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा, अदाकार R माधवन और प्रसार भारती के साबिक CEO शशि शेखर वेम्पति शामिल हैं। अदाकार सतीश शाह को बादअज़मर्ग पद्मश्री से सरफराज किया गया है। इस मौके पर नायब सदर CP राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के अलावा दीगर सरकर्दा शख्सियात मौजूद थी। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा है कि हुकूमत नैनो की वजह से कमजोर मानसून के इम्कानी असरात से निपटने की खातिर किसानों की मदद के लिए पेशगी तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि मुल्क में अब तक 43% कम बारिश हुई है और जुलाई में भी मानसून के कमजोर रहने का इम्कान है।
2: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है 2 जुलाई तक के सप्ताह में कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। हम जो प्रभावित जिले कितने हो सकते हैं उसका आकलन भी किया गया है और अब तक जो संभावना है 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहे।

0: की संभावना है।
1: जनाब चौहान ने कहा कि रियासतों को दालों और मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को फरोग देने का मशवरा है जिनमें कम पानी की जरूरत होती है और सख्त मौसम में भी उनकी अच्छी पैदावार हो सकती है। उन्होंने कहा कि रियासतों के साथ तालमेल में साइंसी तरीक़ेकार फसलों की बरवक्त मनसूबाबंदी और जिला सतह की तैयारी को मुस्तहकम किया जा रहा है। नीति आयोग के नायब चेयरपर्सन डॉक्टर अशोक लाहिरी ने आज कहा कि पिछली सिमाही के दौरान भारत की मजमूई तजारत में 5.4% का इजाफा हुआ। डॉक्टर लाहिरी ने यह बात नई दिल्ली में तजारत पर नजर रखने वाली सिमाही रिपोर्ट का ताज़ा एडिशन जारी करते हुए कही। नायब चेयरपर्सन ने मजीद कहा कि पिछली सिमाही के दौरान भारत की बरामदात 1.84 अरब डॉलर तक पहुंच गई जबकि दरामदात में 6.5% का इजाफा दर्ज किया गया। मगरबी एशिया की सूरतहाल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह बहरान आर्जी था। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दुनिया में जल्द ही अमन कायम होगा। आज जारी करदा रिपोर्ट में बुनियादी तौर पर

अरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि दरामदात में 6.5% का इजाफा दर्ज किया गया। मगरबी एशिया की सूरतहाल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह बहरान आर्जी था। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दुनिया में जल्द ही अमन कायम होगा। आज जारी करदा रिपोर्ट में बुनियादी तौर पर अद्वियात की तजारत पर जोर देते हुए आलमी तजारत में भारत के रोल का तजिया पेश किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इम्तिहानात मुनक़िद करने वाली कौमी एजेंसी NTA ने आज अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान CUET 2026 के नतायज का ऐलान कर दिया है। इम्तिहान में शामिल हुए उम्मीदवार अब सरकारी CUET पोर्टल के जरिए अपने स्कोर कार्ड्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं। NTA के मुताबिक इस साल इस इम्तिहान में 11 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट ने आज 1993 के कोलकाता बाबा बाजार बम धमाका केस में उम्र कैद के एक मुजरिम की कबल अज वक्त रिहाई के बारे में दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगा दी। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस संजीव सचदेवा पर मुश्तमिल बेंच ने मगरबी बंगाल हुकूमत की उस दरखास्त पर अबूरी राहत दी जिसमें हाई कोर्ट के 5 जून के उस हुक्म को चैलेंज किया गया था जिसके तहत 77 साल मुजरिम मोहम्मद राशिद खान की फौरी रहाई का हुक्म दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद राशिद खान को भी नोटिस जारी किया। रियासत की जानिब से पेश होते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने दलील दी कि हाई कोर्ट ने इस मामले में इस्लाही नजरिए का गलत इतलाक किया क्योंकि इस धमाके में 70 से ज्यादा अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए थे। मोहम्मद राशिद खान के वकील MR शमशाद ने कहा कि उनके मुवक्किल 33 साल से ज्यादा अरसा जेल में गुजार चुके हैं और एक शरीक मुलजिम को 2014 में इस सिलसिले में रियायत दी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुशाहदा किया कि खान का रोल मुख्तलिफ था और उन्हें धमाकों का मास्टरमाइंड करार दिया। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने आज मंगोलिया के वजीर खारजा बैतमुख और सनत और कानकनी के वजीर के साथ मंगोल रिफाइनरी प्रोजेक्ट के ज़ेर तामीर मकाम का दौरा किया। सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया दोस्ती के तहत जारी प्रोजेक्ट में नुमाया पेशरफ्त हो रही है। उन्होंने इन मंसूबों में शामिल मुख्तलिफ टीमों के साथ जारी काम की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर खारजा ने प्रोजेक्ट के मकाम पर भारत और मंगोलिया के वर्करों के साथ बातचीत की। उन्होंने इन मुश्किल हालात में इस तरह के अहम प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाने में उनकी मेहनत लगन और अज़्म को सराहा। वजारत खारजा ने आज कतर में होने वाले एक धमाके में 12 भारतीय शहरियों के हलाक होने की तस्दीक की। नई दिल्ली में नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि इस हादसे में 66 अफराद जख्मी भी हुए जिनका इलाज अभी चल रहा है। जनाब जायसवाल ने मजीद कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमत नामे पर दस्तखत होने के बाद अब तक भारत से वाबस्ता 11 बहरी जहाज आबनाए हुरमुस से गुजर चुके हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बाकी भारतीय परचमबरदार जहाज भी जल्द ही इस रास्ते से गुजरेंगे। पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर से मुतल बयान पर अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए तर्जुमान ने कहा कि ऐसे बयान पाकिस्तान की अपनी नाकामियों और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की एक लायानी कोशिश है। उन्होंने कहा कि भारत इन मनगढ़ंत दावों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है और इन दावों को बिल्कुल ही अहमियत नहीं देता है। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने आने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के एक हिस्से के तौर पर जम्मू में अमरनाथ बेस कैंप में एक जामे मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। इस मशक के दौरान नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने मुश्तरका तौर पर बेस कैंप के पूरे अहाते में तलाशी और इलाके को महफूज बनाने की कार्रवाई अंजाम दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान ने अपने न्यूक्लियाई बुनियादी ढांचे की तवील मुद्दती और जामे निगरानी पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इसके साथ ही अमरीका अब नाए हुरमुज में पहरी जहाजों की आमदोरफ्त पर आयद पाबंदियों में नरमी करेगा और माली रियायतें फराहम करेगा। ताहम ये सब सख्त अमरीकी निगरानी के तहत होगा। सोशल मीडिया पर जारी एक तफसीली बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की क़यादत ने जारी सिफारती मुज़ाकरात में अहम रियायतें दी हैं जिनका मकसद मगरबी एशिया में तवील कशीदगी के बाद एक जामे अमन फ्रेमवर्क कायम करना है। ताहम व्हाइट हाउस के इस बयान पर ईरान की हुकूमत ने फौरी एतराज़ किया और न्यूक्लियर निगरानी के दायरेकार के बारे में इख्तलाफ जाहिर किया। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने वाज़ किया कि ईरान ने मखसूस न्यूक्लियाई तनसीबात पर

0: में एटमी तवाना एजेंसी की निगरानी कबूल नहीं की। भारतीय महकमे मौसमियात ने कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और मगरबी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंचने का इम्कान है। दिल्ली एनसीआर में मौसम में अचानक शदीद तब्दीली देखी गई, क्योंकि खित्ते में तेज बारिश, धूल भरी आंधी और तेज हवाएं चल रही थीं। आईएमडी के मुताबिक कौमी राजधानी में कम से कम दर्ज हरारत 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 38.4 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब आईएमडी ने कहा कि 2 से 3 दिनों के दौरान बिहार, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ खित्ते में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। लंदन में एफआईएच प्रो लीग हॉकी के इफ्तिताही मैच में मर्दों की भारतीय हॉकी टीम ने रिवायती हरी पाकिस्तान को 3-4 से हरा दिया। भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला ये मुकाबला इस टूर्नामेंट के सबसे अहम मुकाबलों में से एक था। लंदन मरहले के दौरान भारत जुमेरात को इंग्लैंड का सामना करेगा और 26 जून को एक बार फिर पाकिस्तान से खेलेगा। इसके बाद 28 जून को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मुकाबले के साथ अपना दौरा मुकम्मल करेगा। आज फीफा आलमी कप में ग्रुप मरहले के तहत मुख्तलिफ अहम मुकाबले खेले जाएंगे। ग्रुप के में हाउस्टन में रात 10:30 पुर्तगाल का मुकाबला उज़्बेकिस्तान से होगा। वहीं ग्रुप एल के तहत देर रात 1:30 बोस्टन में इंग्लैंड और घाना आमने सामने होंगे। बाद में सुबह सवेरे 4:30 टोरंटो में क्रोएशिया का मुकाबला पनामा से होगा। जर्मनी के शहर सूल में जारी आईएसएसएफ जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारत के लिए आज का दिन भी शानदार रहा और उसने मजीद 3 तमगे हासिल किए, जिनमें चांदी के 2 और कांसे का 1 तमगा शामिल है। शिवा नरवार ने मर्दों के 10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर मुकाबले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए चांदी का तमगा जीता, जबकि युग प्रताप सिंह राठौड़ ने भी इसी मुकाबले में कांसे का तमगा जीता। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म ने मोदी ने कहा है कि सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक को मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी और साइबर सिक्योरिटी जैसे चैलेंजों से निपटने में ब्रिक्स का अहम रोल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने शहरी एजाज से मुतालिक दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता किए। सहाफी पी नारायणन, टेनिस के सरकर्दा खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूती और आर माधवन और गुलूकारा अलका याग्निक पद्म अवार्ड हासिल करने वालों में शामिल हैं। हुकूमत ने कहा है कि वो एल नीनो की वजह से कमजोर मॉनसून के असरात के इम्कान से निमटने के लिए किसानों की मदद की खातिर पेश की तैयारियां कर रही है। इम्तिहानात की निकास से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान के नतायज का ऐलान कर दिया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और मगरबी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है।
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: इचो आकाशवाणी हुंदु श्रीनगर स्टेशन, मीडियम वेव 73.8 मीटर ते एफएम 73.5 मेगाहर्ट्ज बिट। रोज संजे 9:30 सामने मोहतरम मर्सिया करो पेश। یہ چھ مضمون سوداگری پیش کرن علی محمد ڈار سے تھی۔
3: برشان محمد و آل محمد صلوات،
4: اللهم صل علی محمد و آل محمد۔
3: محب و چن مق

Ах, два здоров! Ощущаю!

Tujan kami rangai mihat. Tat hem

श्रीनगर स्टेशन, मीडियम वेव वाला FM2 71.5 मेगाहर्ट्ज़ एंड बिट। अब्दी हयात वोली बोजो यू फीचर सदाकार्च सुजूत सेलानी।

0: शुभो फल्गुन शुभो कुल्हुन करामत बशारत जिंदगी हन नूर चलामत अपुज रोतुल सुबोदम शीन जन जगलान पजर प्रागाश सुबहुक नैन सदाक। अल्लाह अकबर रब सुंद बजर हक तपोज ताकार प्रागाश अजान नारे अल्लाह अकबर मोजिम दीवान बहदत पारे गवही पज गवही अशहद अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह लच बजवरी प्रोन पजर आज तिरोशन आफ्ताब यकीन करमस करामत पजिश परती थोमस
1: पजर पजर नस्का ये परतीत रोज पजर ता
0: मिछुम फी कहनी देश पजरस हरारत मिछुम फी कहनी देश पजरस हरारत ये कई मीक बख्त बैठ कर मस्कर आमत
1: मिछुम यादा बुतु पक्की बक्का सही अवै किन वाव कुब्र कुन्वा सही बवा छुछ आज अजल छुछ लारवुन पाई किम चश्मों में वुच अदवार कम
0: चवाक छुक गौ चासत करबला वुचमुत चासत आग में होने बरमला वुचमुत
1: मैं वुच कर दो बला बिल्कुल अच्छन देश मां ये जन परतीत पजरत रोज सुई मदान छरा ददवन सुस्तहरा रेंग जारा अल्लमा वाव तूफान तुलान गर्दो गुबारा अल्लमा

कुझु तश्न लब्छ मुज़दर वुछ पंजतन हाय हाय ना कई गजा जोगुन नहरे लबन हाय हाय।

0: ज़ुल्फ़िकार हो।
1: हाथफी पारे दीवान मुरान चुगुल, हाथफी पारे दीवान मुरान चुगुल, हुसैनी खून प्योबर जमीन, ददवनन फिल जाम चमनी करबला गोलालजार। पहली पाइक एक इमामन थो हकल जुल आयतन गौ शहीद।
2: शहीद अली असगर शहीद अकलो पंपोश, शहीद सपदेव सुमहाराज कसम इब्न हुसैन, शहादत लब अलमदारन हुसैनी याबदारन, शहीद गई औनो मुहम्मद कुले खंदान तश्वई, शहीद सपदेव अली अकबर सुसरदारे जवाना ने बै, शहीद अक अक गुले मुअत्तर, शहीद मुअम्मर हबीब इब्ने मुजाहिर, शहीद सपदेव हवन हबशी गुलाम शाह सुन, हुर बिन रियाही बुलंद किरदार द्राव चत जामे शहादत, शहीद अल मुख्तसर गौ शाह हुसैन, बहल पायु सैयदे शुहदा।

شو وقت است که نزهج حرارت شهید بلندیت بجر چالامت شهید شهید.

0: ابدی حیات ونی سوتوی سانی لائبریری مز موجود یہ خصوصی فیچر بوزان شریک صداکار سجود سیلانی پیشکش بشیر عارف یہ آکاشوانی سری نگر کی آواز ہے 11 بج رہے ہیں اب آئیے آکاشوانی دلی سے خبریں سماعت کرتے ہیں
1: نمسکار آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں پونم प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील रूस भारत चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और

0: शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: एलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: that the country had so far seen around 43% less rainfall and that the monsoon was expected to remain weak in July too.
1: Overall rainfall has been 43% below normal so far, and according to the weather forecast, conditions are likely to remain weak until the week ending 2nd July. This means that our kharif crops could be affected. We have been preparing for such situations for quite some time. An assessment has also been carried out to determine how many districts may be affected. Based on the current projections, around 315 districts are likely to experience deficient rainfall.
0: Mr. Chauhan said that the states have been advised to promote crops like pulses, coarse grains and oil seeds, which require less water and can still perform well under difficult conditions. The Indian National Center for Ocean Information Services has begun issuing specialized bulletins on the potential impacts of the ongoing El Nino event on maritime sectors. The first bulletin was released by Chevella Member of Parliament Konda Vishweshwar Reddy at an event in Hyderabad. The bulletin states that the El Nino event is steadily developing and is expected to peak during winter between November 2026 and January 2027. Sea surface temperatures in the Indian Ocean are projected to remain above normal till May 2027. The National Testing Agency, that is NTA, today announced the results of Common University Entrance Test, CUET 2026, for undergraduate admissions. Candidates who appeared for the examination can now access their scorecards through the official CUET portal. According to NTA, over 11 lakh candidates appeared for the examination this year. In men's hockey, India registered a thrilling 4-3 victory over arch rivals Pakistan in their opening match of the London leg of the 2025-26 FIH Pro League this evening. India mounted a strong comeback after failing behind in the first quarter with goals from Abhishek Nayan, Neelkant Sharma, Sukhjeet Singh and Rajinder Singh. With this win, India continues its unbeaten record against Pakistan in senior men's hockey, extending back to 2014. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for thunder squall activity with winds speeds likely to reach 60 to 70 kilometers per hour over Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
2: मजलिस को बर्खास्त करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं कल हमारे यहां से नश होने वाले चंद प्रोग्रामों पर। सैन फनकार, ये प्रोग्राम पेश होगा रात 9:30 पर। प्रोग्राम के मेहमान फनकार हैं मशहूर मारूफ आवाज की मालिक जमीला खान। इनसे बात करेंगे गुलाम रसूला खून। हेलो महफिल गजल, फरमाइशी उर्दू गजलों की महफिल आरास्ता होगी शब 10:00। महफिल की मेज़बान हैं फरजाना। समीन, हमारी मामूल की नशरियात का आगाज सुबह 6:28 पर होता है। सुबह का ही मजलिस के आगाज में पेश होगा सुबह 6:35 पर। पयाम सुबह बराए रास्त नश होगा सुबह 7:10 पर। प्रोग्राम सुनिए अपने मेज़बान आमिर अशरफ और साइका सलीम के साथ। जू और तो जहां और ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सुनिए 8:45 पर। पयामसु प्रोग्राम में आज की सुर्खियां सुनिएगा ठीक 9:00। सूफी सदा, ये प्रोग्राम सुबह 10:00 पेश होता है। प्रोग्राम में हजरत बहाउद्दीन गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह से मुतल्लिक बात होगी। ये तहरीर है फयाज अहमद खुशखावा की। समीन, बाहमी गुफ्तगू पर मबनी इंटरैक्टिव लाइव शो नश होगा सुबह 10:30। प्रोग्राम के मेज़बान हैं मार्शल आर्ट्स कोच और पद्मश्री इनाम याफ्ता फैसल अली डार। प्रोग्राम सुनिए साइका सलीम के साथ। हबीबुल्ला डार वुसन और साथियों से आप छकरी और उर्फ सुनेंगे 11:30 पर, दोपहर 2:30 पर और सपहर 4:30 पर। इनसे आप बितरतीब कलाम शमस फ़कीर, कलाम हबीब मागरिया और कलाम सैयद मीरक्षा काशानी रहमतुल्लाह अलैह सुनेंगे। बज़्म निस्वा सजेगी 12:40 पर। प्रोग्राम के मेहमान हैं डॉक्टर शहजादा सलीम और मेज़बान रूबी निसा खान। उमंग,

ये स्पॉन्सर्ड तालीमी प्रोग्राम 1:10 पर पेश होता है। पहाड़ी प्रोग्राम आप सुनते हैं सपहर 4 बजे, गोजरी प्रोग्राम शाम 5 बजे ब्रॉडकास्ट होता है। गमी बाय नहीं खतरे, ये प्रोग्राम पेश होता है शाम 6:05 पर। शहरबीन शाम 7 बजे नश होता है। रात 8 बजे प्रोग्राम वादी की आवाज़ ब्रॉडकास्ट होता है। ज़िला नामा नश होगा रात 8:30 पर, और रात 9 बजे आप चंद उर्दू गज़लें सुन सकते हैं। ये हैं हमारे कल के चंद प्रोग्राम। मीडियम वेव 268.81 मीटर और एफएम 103.5 MHz पर ये आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। 11:13 और 25 सेकंड हुए हैं। इसके साथ ही हमारी आज की मजलिस अब यहीं पे बर्खास्त होती है। मामूल की नशरियात के प्रोग्राम लिए सुबह 6:28 पर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, शब बखैर, जय हिंद।

शमशाद बेगम जी की आवाज में यह नगमा था फिल्म आर पार से, और यह फिल्म आई थी 1954 में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की, और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में गोल्डन एरा के उन रोमांटिक और चुनिंदा नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक और गोल्डन एरा का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं, फिल्म बूट पॉलिश से। यह फिल्म आई थी 1954 में और इसके निर्देशक थे प्रकाश अरोड़ा। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में रतन कुमार, नाज, डेविड, चांद बुरके और राज कपूर वगैरह ने बेहद खूबसूरत अभिनय किया था। इस फिल्म के गीतों की अगर बात करें तो इसके गीतों को लिखा था हसरत जयपुरी साहब और शैलेंद्र साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा था शंकर जयकिशन साहब ने। तो आइए इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपको सुनवाते हैं मन्ना डे साहब और आशा जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये वो नगमा है जो आपके जिंदगी की नुमाइंदगी करता है।

0: में तो बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: रुकना नहीं तुझे झुकना नहीं घबरा न कहीं तेरी है जमी तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: तुझे रुकना नहीं तुझे झुकना

0: हम
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्त के बाद एक बार फिर मैं फेरोज अब तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल गीत मेरे मन मीत की। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 11:32:45 और गीत मेरे मन मीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में गोल्डन एरा के उन रोमांटिक और चुनिंदा नगमों के साथ हम हाजिर हैं और कुछ ऐसे ही बेहद खूबसूरत

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की। और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में चुनिंदा नगमों के साथ हम हाजिर हैं गोल्डन एरा के उन नगमों के साथ जो आपके दिल के बेहद करीब है और उन्हें बार बार हम सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं। तो आइए इस सफर को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपको सुनाते हैं। 1956 की एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म CID से हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस फिल्म का निर्माण किया था गुरुदत्त साहब ने और इसके निर्देशक थे राज खोसला। और इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में देवानंद और शकीला थी और साथ में वहीदा रहमान और साथी कलाकारों में KN सिंह, जॉनी वॉकर, कुमकुम, महमूद, मीनू मुमताज, टुनटुन और जगदीश राज वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था। इस फिल्म के गीतों को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने। इस फिल्म के सारे ही नगमे उन्होंने ही लिखे हैं लेकिन एक गीत आंखों ही आंखों में इशारा हो गया जिसको लिखा था जानिसार अख्तर साहब ने। और इस फिल्म के गीतों को संगीत से संवारा है OP नैयर साहब ने। तो आइए इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपको सुनवाते हैं शमशाद बेगम, आशा भोसले और मोहम्मद रफी साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस दिलकश महफिल में।

खास बात यह है कि इस फिल्म को कई सारे अवार्ड से नवाजा गया था, जिसमें नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया था 1957 में बेस्ट फीचर फिल्म हिंदी के लिए वी शांताराम को ये अवार्ड मिला था, और साथ ही साथ बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सिल्वर बियर अवार्ड से उनको नवाजा गया था, और साथ ही साथ गोल्डन ग्लोब अवार्ड से भी उनको 1959 में नवाजा गया था। वही इसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत गीत हम आपको सुनवाते हैं लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज में, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर, और इसको संगीत से संवारा है वसंत देसाई साहब ने।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत की महफिल सजी है आपके अपने पसंदीदा चैनल पर। और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में सुनहरे दौर के उस बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर हैं जिन्हें आप बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं। उन्हीं नगमों में से अगला नगमा एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म से, और वो ये फिल्म है 1960 में आई जिस देश में गंगा बहती है। राज कपूर साहब के निर्माण और राधु कमलकर के निर्देशन में बनी ये फिल्म, जिसमें मुख्य किरदार निभाया था खुद राज कपूर साहब ने, पद्मनी, प्राण,

और उनके साथ थे चंचल, ललिता पवार, राज मेहरा, रामायण तिवारी, नाना पालेसकर और सुलोचना चटर्जी वगैरह। इस फिल्म के गीतों को लिखा है हसरत जयपुरी साहब ने और साथ ही साथ शैलेंद्र साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। हम आपको सुनवाते हैं लता जी, गीता दत्त और मुकेश साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में, साथ में हैं मन्ना डे साहब।

0: जी नगमे के साथ मुझे यानी फिरोज को आप दीजिए इजाजत। गीत मेरे मनमीत से अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद जयती रहेंगी आपके साथ लेकर अगला प्रोग्राम। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, कल पुनः हमारी और आपकी मुलाकात होगी। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभावों से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे।

0: 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
1: जम्मू कश्मीर में संसद की विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। शशि थरूर की अध्यक्षता वाली समिति ने सीमा प्रबंधन, सुरक्षा तैयारियों और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति में सुधार की जानकारी दी, जबकि मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और जन सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया खाड़ी क्षेत्र के तीन देशों के दौरे के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। श्री रूबिया का ये दौरा अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई हालिया कूटनीतिक वार्ता के बाद हो रहा है। इस दौरान वे संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन के नेताओं से मुलाकात करेंगे। बैठकों में क्षेत्रीय सुरक्षा और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा होने की संभावना है। पुरुष हॉकी में भारत ने एफआईएच प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। पाकिस्तान के अहमद नदीम ने 3 गोल दागे, लेकिन भारतीय टीम ने बढ़त बनाए रखी और मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कल तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली, जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले दो से तीन दिन तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi has said that in a changing global landscape, BRICS has a vital role in deepening security cooperation and addressing shared challenges from terrorism and cybersecurity to emerging technologies. Prime Minister Modi met national security advisors and senior security officials of BRICS countries, that is Brazil, Russia, India, China and South Africa in New Delhi last evening. Prime Minister Narendra Modi received a telephone call from the Amir of the State of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. The Qatar Amir expressed condolences over the loss of lives of Indian nationals in the accident at Ras Laffan Industrial City in Qatar and conveyed his wishes for the speedy recovery of those injured. Mr. Modi thanked the Qatari leader for his words of sympathy for the affected families and appreciated the prompt medical assistance extended to the injured. The two leaders also reaffirmed their commitment to ensuring the well-being and safety of their citizens and reiterated their solidarity and support for each other. The Ministry of External Affairs has confirmed the death of 12 Indian citizens in an explosion in Qatar. Addressing media in New Delhi, Ministry spokesperson Radhir Jaiswal said, a total of 66 people were injured in the incident and are currently receiving medical treatment.
3: We lost 12 of our nationals in the tragedy in Ras Laffan gas field where an explosion happened. Several other people have also been injured. I am told that some 66 people are injured across nationalities. We don't know exactly how many of them are Indian nationals, but all those people who are injured are safe. We are talking to the local authorities for the identification of the mortal remains, as also for the transportation of mortal remains to India. We are also in touch with the family members of those who have died in this very unfortunate accident.
2: Meanwhile, Tamil Nadu government has set up a helpline to assist people affected by the fire tragedy in Qatar. Chief Minister C. Joseph Vijay has announced an ex gratia of 10 lakh rupees each to the families of those who lost their lives in the incident. President Draupadi Murmu presented the Padma Awards at the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan last evening. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amritraj, actors Mammootty and R. Madhavan and singer Alka Yagnik are among the decorated recipients. This year, the government had announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan said, continuous meaningful work is underway on subjects like post-harvest management in agriculture,

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। निशिगंधा में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मेला, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

मैंने तुम्हारे लिए अपने भीतर एक घर बनाया था। दीवारें नहीं, बस भरोसा। उस घर में मैं हर शाम अपनी थकान उतारती थी, जैसे औरतें चूल्हे के पास अपनी चूड़ियां उतारती हैं। तुम कभी पूछ नहीं पाए कि मैं रोज इतनी जल्दी क्यों थक जाती हूं। तुमने बस यह माना कि मैं सब संभाल लूंगी, जैसे हमेशा से संभालती आई हूं। मैंने तुम्हारे सामने कभी जोर से दरवाजा नहीं पटका, बस धीरे धीरे कम बोलने लगी। तुमने इसे मेरी आदत समझ लिया। तुम नहीं जानते कि स्त्रियां जब चुप होती हैं तो वो लड़ नहीं रही होती, वो हिसाब लगा रही होती हैं। कि कितना दिया कितना बचा। मैंने तुम्हारे लिए अपने भीतर एक घर बनाया था। दीवारें नहीं बस भरोसा। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है सौदागर, आवाज है लता मंगेशकर की।

है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है।

बसंत मालती तुम फिर खिलना, बसंत मालती तुम फिर खिलना मेरे दिनों की थकी हुई डालियों पर, जहां प्रतीक्षा ने अब तक केवल धूप गिनी है और छांव को याद किया है। तुम्हारा पीला कोई साधारण रंग नहीं, तुम्हारा पीला कोई साधारण रंग नहीं, ये समय के माथे पर धैर्य का टीका है जो बताता है कि प्रेम हमेशा तात्कालिक नहीं होता, कभी कभी वो मौसमों से धीमा चलता है। बसंत मालती, मैंने तुम्हें हर वर्ष नहीं पुकारा, क्योंकि जानती थी हर पुकार का उत्तर तुरंत नहीं दिया जाता। कुछ उत्तर जड़ों में पकते हैं, मिट्टी से सलाह लेते हैं और फिर फूल बनते हैं। बसंत मालती, तुम्हें पता है प्रतीक्षा कैसी लिखी जाती है? न घड़ियों से, न कैलेंडर से, बल्कि उन सांसों से जो अधूरी रह जाती है और फिर भी टूटती नहीं। जब तुम खिलती हो तो कोई घोषणा नहीं करती, बस हवा का मिजाज बदल जाता है। पत्तियां समझ जाती हैं कि अब प्रेम को अपने प्रमाण दे। मैंने तुम्हारे लिए अपने भीतर बहुत सी अधूरी पंक्तियां संजो रखी हैं, वे पंक्तियां जो जल्दबाजी में नहीं कही गई, वे पंक्तियां जो जल्दबाजी में नहीं कही गई, जो संयम से पली और भरोसे से बड़ी हुई। तुम फिर खिलना बसंत मालती, तुम फिर खिलना, ताकि यह यकीन रहे कि एक बार फिर से जीवित रहे, कि प्रतीक्षा कमजोरी नहीं होती, वो प्रेम की सबसे गहरी तैयारी होती है। बसंत मालती तुम फिर खिलना, बसंत मालती तुम फिर खिलना। अगला गीत कुमार शानू और साधना सरगम की आवाज में, फिल्म का नाम है जुर्म।

रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे आप सुनेंगे एफएम गोल्ड पर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। अभी छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है कर्ज, आवाज है मोहम्मद रफी की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मिलते हैं 1:10 पर गीत सुहाने लेकर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अली थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: रिजर्व बैंक ने ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम TREDS के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए वित्तीय सुविधाओं को आसान बनाना है। TREDS एक ऑनलाइन मंच है जहां छोटे उद्यम अपने बिलों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से नकदी में बदल सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों से कार्बन उत्सर्जन, जल उपयोग और भूमि उपयोग संबंधी जानकारियां सार्वजनिक करने का आह्वान किया है। लंदन क्लाइमेट

क्लाइमेट एक्शन वीक में संबोधित करते हुए श्री गुटेरेस ने एआई पर्यावरणीय पारदर्शिता पहल का प्रस्ताव रखा। उन्होंने वर्ष 2030 तक एआई डेटा केंद्रों को पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित करने की अपील की। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सीबी जॉर्ज ने लग्जमबर्ग के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जॉर्ज ने कहा कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे साझेदारी संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। पुरुष हॉकी में भारत ने एफआईएच प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने की खूबसूरत सी महफिल और आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

धूप के कंधों पर दिन उतरता है, धूप के कंधों पर दिन उतरता है, आसमान में किसी के याद की खुशबू तैरती है। धूप के कंधों पर दिन उतरता है, आसमान में किसी याद की खुशबू तैरती है। पत्तों की सरसराहट में जैसे किसी अधूरे वाक्य की आहट सुनाई देती है। गली के मोड़ पर ठहर गई है हवा, जैसे किसी अनकहे नाम को पुकारना भूल गई हो। फूलों की महक अब केवल महक नहीं, वो किसी बिछड़न का मौन संवाद है। पेड़ों के साए लंबे हुए हैं, समय के पन्नों पर फैले हुए शब्दों की तरह। शाम के माथे पर सिंदूरी आंच है, पर भीतर कोई धूप अब भी ठहरी हुई है। और मैं सोचती हूं, क्या हर बहकी हुई हवा में कभी तुम्हारा नाम भी घुला था, या वह बस ऋतु का छलावा था जो हर मौसम में प्रेम का बहाना बन जाता है, जो हर मौसम में प्रेम का बहाना बन जाता है। धूप के कंधों पर दिन उतरता है, आसमान में किसी याद की खुशबू तैरती है। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है आजाद, आवाज है लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती।

गीत सुहाने में अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है जॉनी मेरा नाम, आवाज है किशोर कुमार और उषा खन्ना की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

मैंने तुम्हारे लिए कोई चमकीली भेंट नहीं चुनी, बस एक साधारण सा दिन तुम्हारे नाम रख दिया था। मैंने तुम्हारे लिए कोई चमकीली भेंट नहीं चुनी, बस एक साधारण सा दिन तुम्हारे नाम रख दिया था। अब जब ऋतुएं बदल चुकी हैं और कई रास्ते अपरिचित हो गए हैं, तब भी वो दिन मेरे भीतर वैसा ही रखा है जैसे किसी पुराने आंगन में बिना देखभाल के भी तुलसी का एक पौधा अपनी हरियाली बचाए रखता है। कुछ लगाव वस्तुओं में नहीं बसते, वे उस अनकहे अंश में रहते हैं जहां दूरी पहुंच जाती है पर मिटा नहीं पाती। कुछ लगाव वस्तुओं में नहीं बसते, वे उस अनकहे अंश में रहते हैं जहां दूरी पहुंच जाती है पर मिटा नहीं पाती। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है चांदनी।

आप सुन रहे हैं रात, आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। अभी आपको जिस गीत के साथ हम छोड़े जा रहे हैं, आवाज है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, फिल्म का नाम है हम दोनों। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मिलते हैं 2:10 पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अली थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी देशों के तीन देशों के दौरे के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। श्री रूबियो का यह दौरा अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई हालिया कूटनीतिक वार्ता के बाद हो रहा है। इस दौरान वे संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन के नेताओं से मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी से कार्बन उत्सर्जन, जल उपयोग और भूमि उपयोग संबंधी जानकारी सार्वजनिक करने का आह्वान किया है। लंदन क्लाइमेट एक्शन वीक में संबोधित करते हुए श्री गुटेरेस ने एआई पर्यावरणीय पारदर्शिता पहल का प्रस्ताव रखा। उन्होंने वर्ष 2030 तक एआई डेटा केंद्रों को पवन और सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित करने की अपील भी की। फीफा विश्व कप 2026 में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने

दो गोल दागकर टीम को जीत हासिल कराई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही रोनाल्डो ने विश्व कप इतिहास में नया कीर्तिमान भी स्थापित किया। वो 6 अलग अलग विश्व कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं ग्रुप एल मुकाबले में इंग्लैंड और घाना के बीच मैच जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कल तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चलीं, जिससे तापमान में गिरावट आई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी, आवाज है किशोर कुमार की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

मन की देहरी कोई आंगन नहीं, मन की देहरी कोई आंगन नहीं, ये चेतना की चौखट है जहां समय रुककर स्वयं को सुनता है। मैं इस चौखट पर वर्षों से बैठी हूं अपने ही शून्य के भीतर, तुम्हारे नाम का दीपक गढ़ते हुए। तुम्हारी आहट यहां हवा नहीं, एक नाद है। तुम्हारी आहट यहां हवा नहीं, एक नाद है, जो भीतर के अंधकार को सत्य की ध्वनि में बदल देता है। प्रिय, तुम आओ ना देह बनकर, न किसी शब्द की तरह, बल्कि उस अलौकिक आलोक की तरह जिसमें प्रतीक्षा खुद दीप बन जाए। जब तुम आओगे तो मैं ये देहरी पार नहीं करूंगी, बल्कि ये देहरी स्वयं भीतर खुल जाएगी और मेरे मौन में एक आकाश प्रज्वलित होगा। मेरे मौन में एक आकाश प्रज्वलित होगा। मन की देहरी कोई आंगन नहीं, ये चेतना की चौखट है जहां समय रुककर स्वयं को सुनता है। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है जॉनी मेरा नाम।

मेरी वीरानियों पर कोई एहसान न भेज, मेरी वीरानियों पर कोई एहसान न भेज, अब किसी राह से बेवजह मेहमान न भेज। मैंने हर चेहरा परखने में जमाने काटे, मैंने हर चेहरा परखने में जमाने काटे, मेरे हिस्से कोई फिर से नई पहचान न भेज। जिसकी नजरों को मेरी रूह तलक जाना न हो, जिसकी नजरों को मेरी रूह तलक जाना न हो, उसके लिए मेरे दिल का कोई अरमान न भेज। मैं भी सुन लूंगी हवाओं में तेरी मर्जी मगर, मैं भी सुन लूंगी हवाओं में तेरी मर्जी मगर, मेरे आंगन में अधूरा कोई फरमान न भेज, मेरे आंगन में अधूरा कोई फरमान न भेज। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है त्रिशूल, आवाज है लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यशोदास की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय

के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, और रात सुरमई में आप और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है धरती, आवाज है मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

लौट कर आके देखा तो फूलों का रंग, लौट कर आके देखा तो फूलों का रंग जो कभी सुर्ख था जर्द ही जर्द है। अपना पहलू टटोला तो ऐसा लगा, अपना पहलू टटोला तो ऐसा लगा, दिल जहां था वहां दर्द ही दर्द है, दिल जहां था वहां दर्द ही दर्द है। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है इंतकाम, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

जिस गीत के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं, फिल्म का नाम है मेरा नाम जोकर, आवाज है मुकेश की। तो फिर मिलने के वादे के साथ आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार।

और अब वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का। तो चलते चलते आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर अर्चना होंगी आपके साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अली थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून से संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट मिशन मोड पर कराया जाए। रिजर्व बैंक ने ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम TREDS के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए वित्तीय सुविधाओं को आसान बनाना है। TREDS एक ऑनलाइन मंच है जहां छोटे उद्यम अपने बिलों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से नकदी में बदल सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी क्षेत्र के तीन देशों के दौरे के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। श्री रूबियो का यह दौरा अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई हालिया कूटनीतिक वार्ता के बाद हो रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कल तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

3:53 हुए हैं। दोस्तों, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कुछ रिश्ते वक्त के साथ खत्म नहीं होते, बल्कि यादों की खुशबू बनकर दिल में बस जाते हैं। और जब मोहब्बत सच्ची हो तो इंतजार भी एक इबादत बन जाता है। ऐसी ही गहरी भावनाओं को अपनी आवाज दी है आशा भोसले और भूपेंद्र ने फिल्म एतबार के इस गीत में। तो आइए सुनते हैं फिल्म एतबार का ये दिल को छू लेने वाला नगमा।

दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जिनका इंतजार बरसों तक दिल करता रहता है, और जब अपनों से या किसी खास शख्स से लंबे अरसे तक मुलाकात नहीं होती है, और जब मुलाकात होती है तो खुशी शब्दों में बयां नहीं हो पाती। इसी खूबसूरत एहसास को सुरों में पिरोया है फिल्म राम लखन के इस मधुर गीत ने, जिसे आवाज दी है मनहर और अनुराग।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों, दिल की कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनने की चाहत हर धड़कन को रहती है। प्यार जब अपने एहसास का इजहार चाहता है तो शब्दों में एक मीठी सी बेचैनी और अपनापन झलकने लगता है। फिल्म तेजाब का यह गीत भी इसी खूबसूरत एहसास को बयां करता है। आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और अमित कुमार की आवाजों में ये खूबसूरत सा गीत।

3:35 और 38 सेकंड हुए हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, और आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। वक्त की रफ्तार चाहे दिनों, महीनों और सालों को गुजार दे, लेकिन सच्चे रिश्तों की गर्माहट और अपनापन कभी कम नहीं होता। दूरियां बढ़ सकती हैं, मगर दिलों के बीच की मोहब्बत हमेशा कायम रहती है। फिल्म अवतार का ये मधुर गीत इसी अटूट साथ और इंतजार से खूबसूरत एहसास को समर्पित करता है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

दोस्तों, कुछ प्रेम कहानियां सिर्फ दिलों में ही नहीं बल्कि यादों और अफसानों में भी जिंदा रहती हैं। मोहब्बत जब सच्ची हो तो उसकी गूंज वक्त की सीमाओं को पार कर जाती है। फिल्म पिघलता आसमां का ये मधुर गीत प्यार के इसी खूबसूरत एहसास को शब्द देता है। आइए सुनते हैं किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में ये खूबसूरत सा गीत।

प्यार जब दिल की गहराइयों से निकलकर दुआ बन जाए तो हर दूरी मिटाने की चाह और भी बढ़ जाती है। मिलन की उम्मीद साथ निभाने का वादा और एक दूसरे में खो जाने का एहसास, यही तो मोहब्बत की सबसे खूबसूरत पहचान है। फिल्म प्रेम गीत का ये मधुर नगमा इन्हीं जज्बातों को बड़ी नजाकत से बयां करता है। आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और सुरेश पाडेकर की आवाजों में ये गीत।

और दोस्तों कार्यक्रम के अंत में आपको जो गीत सुनवा रहे हैं वो है फिल्म एक दूजे के लिए। और बस यही कहेंगे कि जब दो दिल सिर्फ साथ चलने का नहीं बल्कि मिलकर कुछ नया रचने का सपना देखते हैं तब प्यार एक नई कहानी बन जाता है। उम्मीद, विश्वास और सुनहरे भविष्य की यही भावना समेटे हुए है ये मधुर गीत। आवाजें एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की। आप सुनिए ये प्यारा सा गीत और मुझे यानी अर्चना बिसारिया को इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी

0: से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। रिजर्व बैंक ने ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम TREDS के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए वित्तीय सुविधाओं को आसान बनाना है। TREDS एक ऑनलाइन मंच है जहां छोटे उद्यम अपने बिलों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से नकदी में बदल सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी देशों के 3 देशों के दौरे के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। श्री रूबियो का ये दौरा अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई हालिया कूटनीतिक वार्ता के बाद हो रहा है। फीफा विश्व कप 2026 में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम को जीत की अहम भूमिका दिलाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप एल मुकाबले में इंग्लैंड और घाना के बीच मैच जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह के 4:10 और 55 सेकंड हुए हैं। दोस्तों आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम अरुणिमा, और एक बार फिर हूं मैं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। दोस्तों जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि स्वयं पर विजय पाने में है। जब मन मजबूत होता है तो कठिन रास्ते भी आसान लगते हैं। हर दिन हमें ऐसे फैसले लेने होते हैं जहां सही और गलत के बीच चुनाव करना पड़ता है। ऐसे में जरूरत होती है मन की शक्ति की, धैर्य की और अच्छे विचारों की। इसी भावना को बेहद सुंदर शब्दों और मधुर स्वर में पिरोया गया है फिल्म गुड्डी के इस प्रेरणादायक गीत ने। आइए सुनते हैं वाणी जयराम के स्वर में ये गीत।

जीवन की राहों में कभी उजाला होता है तो कभी अंधेरा, लेकिन हर रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। उम्मीद की छोटी सी किरण भी इंसान को आगे बढ़ने का हौसला देती है। बस जरूरत है विश्वास बनाए रखने की और अपने सपनों का दामन थामे रखने की। इन्हीं भावनाओं को बड़े सलीके से सजाता है फिल्म हाउस नंबर 44 का ये खूबसूरत गीत। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों, कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, उनमें अपनापन भी होता है, भरोसा भी, और प्यार की वो सादगी भी जो जिंदगी को खूबसूरत बना देती है। फिल्म दोस्ती का ये मधुर गीत इसी अनमोल एहसास को सुरों में पिरोता है। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म दोस्ती का ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों 4:27 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम अरुणिमा। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। जिंदगी में इंसान का साथ हमेशा रहे ये जरूरी नहीं, लेकिन उसके अच्छे विचार, उसके संस्कार और उसकी दी हुई प्रेरणा हमेशा जिंदा रहती है। समय बदल सकता है, चेहरे बदल सकते हैं, लेकिन प्यार, अच्छाई और यादों की खुशबू कभी नहीं मिटती। इसलिए जीवन में ऐसे निशान छोड़िए जो आपके जाने के बाद भी लोगों के दिलों में मुस्कान बनकर महकते रहें। कुछ इस तरह जैसे ये गीत है फिल्म ममता का, आवाज लता मंगेशकर की।

दोस्तों, जिंदगी हमेशा सीधी और आसान राह नहीं होती। कभी मंजिल बदलती है, कभी रास्ते। लेकिन जो इंसान हालात के साथ खुद को ढालना सीख लेता है, उसके लिए हर मोड़ एक नई शुरुआत बन जाता है। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो निराश होने की जरूरत नहीं, नए रास्तों को पहचानने की जरूरत होती है, क्योंकि जिंदगी ठहरने का नाम नहीं बल्कि आगे चलते रहने का नाम है।

दोस्तों, जिंदगी की राहों में जब भी उम्मीद की खुशबू बिखरती है तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। जैसे रजनीगंधा के फूल अपनी महक से वातावरण को सुंदर बना देते हैं, वैसे ही अच्छे विचार और सकारात्मक सोच जीवन को नई ऊर्जा से भर देती है। मुस्कुराते रहिए, सपनों को संजोए रखिए, क्योंकि खुशियों की सुगंध वही महसूस करता है जो उम्मीदों का दामन कभी नहीं छोड़ता।

0: दोस्तों, फूलों की तरह जीवन भी हमें यही सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, अपनी खुशबू और मुस्कान कभी कम नहीं होने देनी चाहिए। मुश्किलें आएंगी, मौसम बदलेंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर के विश्वास और सकारात्मकता को बनाए रखता है, वही हर दिन को एक नई उम्मीद और नई शुरुआत में बदल देता है। जीवन की खूबसूरती इसी में है कि हम खिलते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने आसपास भी खुशियों की महक बिखेरते रहें।
1: ठीक है ठीक है, चलो माफ किया।
2: थैंक यू, बोलो अंकल को। चलो धीरे धीरे।
1: अगर तुम लोगों को घंटे भर के लिए छत पे खेलने दिया तो शोर तो नहीं मचाओगे?
2: नहीं।

दोस्तों, बहती हुई नदी हमें एक अनमोल संदेश देती है, ये तो सभी जानते हैं। रुकना नहीं, थकना नहीं, जीवन की राह में आंधियां आएंगी, तूफान भी आएंगे, लेकिन जो चलते रहते हैं वही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। समय की धारा बहुत तेज है, जो ठहर गया वो पीछे छूट गया, इसलिए हर नई सुबह के साथ अपने सपनों की ओर एक कदम जरूर बढ़ाइए।

जिंदगी की असली खुशी सिर्फ अपने लिए जीने में नहीं बल्कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में भी है। जब हम किसी का सहारा बनते हैं, किसी के दुख को बांटते हैं और बिना किसी स्वार्थ के खुशियां बांटते हैं, तभी जीवन का असली अर्थ समझ में आता है। दुनिया में सबसे अमीर वही है जिसके पास दुआएं हैं, और सबसे बड़ी सफलता वही है जो किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर चमके।

200 कार्यक्रम के अंत में बस यही कहूंगी कि ये जीवन अनमोल है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। एक दिन हर इंसान इस दुनिया से विदा ले जाएगा, पर उसके कर्म, उसकी अच्छाइयां और लोगों के दिलों में छोड़ी गई यादें अमर हो जाती हैं। इसलिए समय की कीमत को समझिए, हर दिन को पूरे मन से जिए, रिश्तों में प्यार बांटिए और ऐसा काम कीजिए कि आपकी पहचान सिर्फ नाम से नहीं बल्कि आपके नेक कर्मों से बने। आप सुनिए कार्यक्रम का ये अंतिम गीत मुकेश की आवाज में। फिल्म का नाम है धर्म करम और मुझे अब अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का भी समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की।

0: इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायण को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यभर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी देशों के 3 देशों के दौरे के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। श्री रूबियो का ये दौरा अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई हालिया कूटनीतिक वार्ता के बाद हो रहा है। फीफा विश्व कप 2026 में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप ए के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप एल मुकाबले में इंग्लैंड और घाना के बीच मैच जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी 29 जून तक इसी तरह का मौसम रहने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अगले 2 दिन तक बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम भोर सुहानी। एक बार फिर से स्वागत करती हूं मैं आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों कार्यक्रम

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।